आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज है सोमवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 29 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

0: ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी।

0: एससीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी समाचार। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदनवार में पहले सुनिए आज का चिंतन। मधुर सुसंस्कृत और अच्छी तरह से बोली गई वाणी जीवन में हर पक्ष में कल्याणमय होती है। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए झरोखा में आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अभी कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 234। 6:45 पर संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से गायिका विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्रे से बातचीत सुनवाई जाएगी। संगीत सरिता का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। 7:00 गुनगुनाइए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर कार्यक्रम होगा हम है राही प्यार के। 8:00 समाचार और 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे दिन में 2:00। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक आज के फनकार। 9:30 पर आज सुबह ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। इस कार्यक्रम को आप आज रात 9:30 पर पुनः सुन सकते हैं। दस बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम होगा। 12:00 समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। दिन में 1:00 से सुनिए सुरीला सफर। 2:15 पर दोपहर समाचार सुनवाई जाएंगे और 2:30 पर सदाबहार नगमों का आनंद लीजिए।

सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त होगा 3 बजे से 4 बजे पिटारा में सेहतनामा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। 5:30 पर कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने। छह बजकर 35 मिनट पर सुनिए संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म उलझन के गाने सुनवाए जाएंगे। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। लेखक हैं महावीर सिंघल और निर्देशक हैं आनंद किशोर माथुर। 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 8:45 पर समाचार संध्या सुनिएगा। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 से कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात।

हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज 4 बजे पिटारा में सेहतनामा के अंतर्गत डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। ये था आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का झरोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती। कुछ ही देर में कार्यक्रम श्री राम चरितमानस पाठ।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी, सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने

0: संगीत सरिता
1: मित्रों नमस्कार, आइए आज सुनते हैं सुविख्यात गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे से राम सिंह पवार की ये बातचीत। संगीत सरिता में ये बातचीत वर्ष 1989 में पहली बार प्रसारित की गई।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं देश की सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर प्रभा अत्रे, एक सृजनशील गायिका, आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में परंपरा और शास्त्र को परखने वाली एकेडेमिशियन और शिक्षिका। संगीत के विविध क्षेत्रों में प्रभा जी ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। संगीत के साथ साथ आपने उच्च शिक्षण भी पाया है। आप साइंस और लॉ के ग्रेजुएट हैं तथा संगीत में आपने डॉक्टरेट भी की है। प्रभा जी नमस्कार।
3: आपको और हमारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
2: प्रभा जी, पढ़ाई लिखाई और संगीत दोनों एक नदी के दो किनारों के समान हैं। एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ संगीताभ्यास। जैसा कि आप बीएससी लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने संगीत को ही अपने जीवन का माध्यम क्यों चुना? क्या आपके घर में संगीत का माहौल पहले से था?
3: जी नहीं, मेरे परिवार में संगीत किसी ने सुना तक नहीं था। मेरे माताजी और पिताजी दोनों ही शिक्षण के क्षेत्र में थे और उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। ये संजोग की बात है कि माँ की बीमारी के कारण संगीत ने मेरे जीवन में प्रवेश किया
2: जी।
3: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कलाकार बनना कुदरत ने पहले से ही तय किया था और यही कारण है कि मैंने अपने आप को संगीत के प्रति अर्पित किया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं इसकी लायक बनी रहूं।
2: प्रभा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी गायन शैली एक स्वतंत्र है, तो इससे क्या मतलब है, अथवा एक परंपरा का जो निर्वाह करते हैं, इस विषय में कुछ कहेंगे?
3: जी, संगीत में परंपरा और शास्त्र का बहुत महत्व है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन परंपरा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है, अनुकरण।

0: नहीं है। परंपरा स्वयं काल के अनुसार नित्य नवीन रूप लेती है
1: जी।
0: अगर वो कहीं रुक गई तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। आज का निसर्ग बदला हुआ है, आज की जीवन पद्धति बदली है, तो फिर कला को भी कुछ बदलना जरूरी है। परंपरा के नाम से हम कितनी ही अनवांटेड और गलत बातें अपनाते हैं और उन्हें छोड़ते भी नहीं। हर कला को उस काल के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। संगीत के बारे में जो भी विचार मैंने आज तक सामने रखे हैं, उनके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है। ये दृष्टिकोण मुझे साइंस और लॉ ने दिया है।
1: बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। प्रभा जी, कलाकार तो सदैव स्वतंत्र रहना पसंद करता है, यानी उसका संपूर्ण जीवन अथवा समय कला साधना को समर्पित होता है। लेकिन आप अपनी कला साधना के साथ साथ, जैसे कुछ समय आकाशवाणी में प्रोड्यूसर रहीं और आजकल SNDT विद्यापीठ में प्रोफेसर और संगीत विभाग के प्रमुख हैं, और इसके अलावा भी स्वरश्री रिकॉर्डिंग कंपनी में एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं
0: जी।
1: तो ये सब कुछ करते हुए संगीत की साधना में कुछ बाधा नहीं आती?
0: जी नहीं।
1: कैसे निभा पाती?
0: ये सब इस दृष्टि से कि संगीत से जुड़े हर माध्यम का अनुभव संगीत के विकास में सहायक है। कलाकार को जितना अधिक अनुभव होगा उतनी ही उसकी कला परिपूर्ण होगी। सच पूछिए तो संगीत की साधना के लिए 24 घंटे भी पूरे नहीं, लेकिन ये साधना विविधांगी होना जरूरी है। प्रत्यक्ष गाना बजाना तो प्रमुख है ही, लेकिन साथ में अच्छा संगीत सुनना, संगीत ग्रंथ पढ़ना, संगीत के बारे में बोलना, संगीत के ऊपर लिखना, चिंतन करना और पढ़ाना, ये सब बातें क्रिएटिविटी को ताजा रखने के लिए आवश्यक है। जब तक हमारे विचार स्पष्ट नहीं है
1: जी,
0: तब तक हम कुछ नया सोच ही नहीं सकते।
1: अच्छा प्रभा जी, अब आपकी गायन शैली के बारे में कुछ बात करें कि सरगम आपकी गायन शैली का एक सुंदर अंग है।
0: हाँ।
1: और आपके डॉक्टरेट के प्रबंध का विषय भी सरगम रहा है
0: जी।
1: तो सरगम के बारे में आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहेंगी?
0: जरूर। सरगम का अर्थ है स्वरों के नाम, जैसे सारे गमा रे सा, इनको लेके स्वराकृति को पेश करना। भारतीय शास्त्रीय कंठ संगीत को साकार करने में आलाप, तान और बोल यानी शब्दों का प्रयोग होता है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है और कार्य अलग अलग है। आलापों का सौंदर्य तानों में नहीं और बोलों का कार्य आलाप नहीं कर पाते। इसी प्रकार सरगम का अपना अपना सौंदर्य है और अलग कार्य भी है जो आलाप, तान या बोल नहीं कर पाते। और इसीलिए ख्याल से लेकर डिस्को तक सभी संगीत प्रकारों ने आज सरगम को अपनाया है।
1: प्रभा जी, आप तो शास्त्रीय संगीत की कलाकार हैं
0: जी,
1: क्या फिल्म संगीत और गजलें वगैरह भी सुनना या गुनगुनाना पसंद करती हैं?
0: अवश्य। संगीत का कोई भी प्रकार अपने आप में सुंदर ही होता है
1: जी।
0: उसको खराब करता है कलाकार।
1: अच्छा।
0: फिल्म संगीत में देखिए लता जी और आशा जी जैसे कलाकार है, उनके संगीत को खराब कहना या चीप कहना ये कहने वाले की नासमझ ही होगी।
1: बिल्कुल ठीक।
0: मैं खुद ख्याल, ठुमरी, दादरा तो गाती ही हूँ, लेकिन भजन और कभी कभी गजलें भी गाती हूँ। हर संगीत प्रकार की अलग अलग ट्रेनिंग है, साधना है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत सीख लिया तो सब कुछ आ गया।
1: प्रभा जी, शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा आम लोग फिल्म संगीत या गजलों को क्यों अधिक पसंद करते हैं?
0: पहली बात तो ये है कि फिल्म संगीत शब्द प्रधान संगीत है और फिर उसके साथ विजुअल यानी दृश्य भी है। शब्द और दृश्य दोनों अपना अपना योग संगीत को देते हैं
1: जी।
0: और इसीलिए वो समझने में आसान हो जाता है। शास्त्रीय संगीत में शब्दों का होना ना होने के बराबर है, क्योंकि उसमें शब्द एक साधन है, साध्य नहीं
1: जी।
0: और उसमें कोई दृश्य भी नहीं है, खाली सुर और लय की आकृति होती है
1: जी।
0: जो लोग सुर लय की भाषा नहीं समझते उनको शास्त्रीय संगीत कठिन लगना स्वाभाविक ही है। लेकिन संगीत में एक ऐसा गुण है जो मन की गहराइयों को छू लेता है, और इसीलिए संगीत के प्रति अगर प्रेम हो, लगन हो, तो सामान्य श्रोता भी शास्त्रीय संगीत से आनंद प्राप्त कर सकता है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब एक प्रश्न और हम आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड म्यूजिक का अभ्यास करने के लिए, आप भारतीय संगीत सीखने के लिए आपको इंडो अमेरिकन और फुल ब्राइट फेलोशिप

0: प्राप्त हुई थी
1: जी।
0: तो ये वर्ल्ड म्यूजिक अभ्यास की आपको क्यों आवश्यकता पड़ी?
1: विज्ञान ने सारे विश्व के मानव को नजदीक लाया है। आज जागतिक सभ्यता, जागतिक संस्कृति की बातें हम करते हैं, इसलिए एक दूसरे को जानना जरूरी हो गया है और उसके लिए थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता भी हमें महसूस होती है।
0: जी।
1: मैं एक संगीतकार हूँ, इसीलिए पूरे जगत के संगीत को जानना चाहती हूँ, उसका अभ्यास करना चाहती हूँ। प्रत्येक संस्कृति का अपना अपना संगीत है और उसके प्रभाव से अब हम वंचित नहीं हो सकते।
0: ठीक।
1: जागतिक संगीत के संदर्भ में हमारा संगीत क्या है इसकी पहचान जरूरी है। हमारे संगीत के प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोपगेशन के लिए और प्रोग्रेस के लिए अन्य देशों के संगीत का अभ्यास आज जरूरी हो गया है। एक बात और है, एक कलाकार होने के नाते मेरे जीवन में श्रोता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रोता चाहे भारतीय हो या भारत के बाहर का, कलाकार और श्रोता में अगर दूरी रही तो महफिल उखड़ जाती है। अपना समय और पैसा दे के श्रोता महफिल में आता है, उसका आदर करना, उसे संतोष देना, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, ऐसा मैं मानती हूँ।
0: तो प्रभा जी, थोड़े से समय में हमने काफी बातचीत कर ली। हम संगीत श्रोता कार्यक्रम विविध भारती और श्रोताओं की ओर से आपका आभार प्रदर्शित करते हुए आपसे आगे चाहते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्री से राम सिंह पवार की ये बातचीत। उस समय इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। अब सुनते हैं विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्री का गाया राग अहीर भैरव।

डॉक्टर प्रभा अत्रे से राम सिंह पंवार की ये बातचीत अभी आपने सुनी और उन्हीं का गाया राग अहीर भैरव भी। आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का नमस्कार। आइए सुनते हैं बैजू बावरा फिल्म का गाना। उस्ताद आमिर खान के बोल हैं, माफ कीजिएगा, उस्ताद आमिर खान की आवाज में शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद का संगीत।

0: शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बैजू बावरा से, स्वर उस्ताद आमिर खान साहब का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: बोले बिस्तर गीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं गीता दत्त का गाया हुआ फिल्म आर पार का ये गाना। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही पलों में यानी कि 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 7:30 से होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:00 से आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 से होगा कार्यक्रम सुर संगम और 8:30 से आप सुनेंगे विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इस कार्यक्रम में आज बातचीत का विषय होगा उष्णकटिबंधीय का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सुनेंगे श्री अखिल पांडे की वार्ता। विषय होगा डिजिटल युग में बढ़ता डिजिटल अरेस्ट और बचाव के उपाय। साथ ही होगा प्यारा संगीत और स्थानीय खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 9:00 से होगा आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और 9:30 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:00 से 12:30 तक आप जुड़े रहेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के साथ। 12:30 पर आप सुनेंगे अवधि लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोकरंग। 1:00 से होगा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा जो कि आपके फेसबुक कमेंट्स पर आधारित होता है। 2:00 से होगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। 2:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार और 2:30 से होगा आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम अंगना। इस कार्यक्रम में आज बातचीत होगी संघर्षों के बीच मुस्कुराते रहे। जी हाँ, ये विषय होगा आज की चर्चा का। और सुनेंगे गायत्री सिंह की वार्ता। विषय होगा घर को स्वर्ग बनाएं कुशल गृह व्यवस्था। जानेंगे एक स्वादिष्ट सी रेसिपी के बारे में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 3:00 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और 3:30 से शाम 5:00 तक आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारतीय राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों को। शाम 5:00 से एक बार फिर से आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या से। होगा कार्यक्रम युवाणी जिसमें आज चर्चा होगी उष्णकटिबंधीय का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। करियर गाइडेंस में सुनेंगे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य कुसुम लता की वार्ता।

0: विषय होगा पंख पोर्टल और उस पर मिलने वाली सुविधाएं। सुनेंगे रोजगार समाचार, साथ ही होंगे कुछ प्यारे गीत इस कार्यक्रम के अंतर्गत। 5:30 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत और 6 से होंगे समाचार पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी और 6:20 से होंगे संस्कृत समाचार। 6:30 से होगा कार्यक्रम गूंजी स्वर्गाओं की। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत का समय होगा शाम 6:45 से। इसमें चर्चा का विषय होगा स्कूल चलो अभियान। सुनेंगे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर वेद प्रकाश की भेंटवार्ता। विषय होगा खरीफ फसलों हेतु खाद और उनका प्रबंधन। सुनेंगे प्यारा सा लोकगीत, जानेंगे बाजार भाव, लेंगे मौसम की जानकारी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 7:20 से होंगे प्रादेशिक समाचार और 7:30 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों को। 8:15 पर आप पुनः जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या से होगा कार्यक्रम गीत गुंजन। 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और 9:00 से न्यूज एट 9। 9:15 पर होगा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से और 9:30 से आप यहीं से सुनेंगे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:30 से आप पुनः जुड़ जाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से और 11:00 से होंगे समाचार पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
1: अब्दुल कलाम। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही

0: भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां

0: खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की बनी मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में कल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील करके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कल सिद्धार्थनगर में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा और ईवी चार्जिंग सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर NOC की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस जिले में 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस में जल्दी ही प्रोसेसिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ वहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा।
2: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुई। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर दान के मामले में कल पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी करके तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के परिजनों से पूछताछ भी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। कल से प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। कल पहले दिन बूथ दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई गई। वहीं आज से 3 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर

दवा पिलाएंगी। अभियान के पहले दिन कल विभिन्न जिलों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो से बचाव का संदेश दिया। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने जिला महिला अस्पताल से बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों पहले पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके वायरस अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा अवश्य पिलाएं। इस मौके पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने गोरखपुर के नवाचार मेटर्नल इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर टाइमली रेफरल एंड इंटेंसिव सर्विसेज मातृ सेवा का भी शुभारंभ किया। इस नवाचार के जरिए मातृ मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य है। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस भरी गर्मी के बीच आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह हल्की हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 101.9 एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
4: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
4: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
3: चले आए आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: धूप में निकलान करो रूप की रानी।
7: उफ, तपती दोपहर और झुलसाती गर्मी, ऊपर से हर साल बढ़ती हीट वेव का खतरा।
8: सावधान, लू जानलेवा हो सकती है, मगर थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है।
9: दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, पानी खूब पिएं, खुद को हाइड्रेट रखें, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहने, धूप में छतरी टोपी या गमछा जरूर लें, साथ ही जरूरतमंदों और पशु पक्षियों को भी पानी दें।

0: हीट वेव से डरे नहीं, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।
1: लू से बचे, जीवन बचाए।
2: धूप में निकलान करो रूप की रानी।
3: की बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303211 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
6: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
8: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
7: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
8: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
7: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है ना कि हम खुद से भी दूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम ईश्वर का नाम लेते हैं, अपने प्रभु का नाम लेते हैं, तो सब कुछ थम सा जाता है और मन को एक अलग सी शांति मिलती है। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम अमृत कलश जो कि रोज होता है आपके लिए प्रसारित, उसे ही लेकर मैं हाजिर हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। आज के सफर में मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी दोस्त नेहा। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार से सफर को जो कि देगा आपके मन को शांति। कार्यक्रम का जो पहला भजन हमने लिया है वो लिया है अनुराधा पौडवाल के स्वर में। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा भजन।

क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने हमें जीवन दिया, हर सांस दी, वो हर पल हमारे साथ है, बस हमें एहसास करने की देर है। तो आज बस इतना सा करिए कि सुबह उठकर एक बार सच्चे दिल से अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कह लीजिए, और जो नहीं मिला है उसे भी उनकी इच्छा मानकर स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो अधूरी चीजें भी पूरी लगने लगती हैं और मुश्किल रास्ते भी स्वयं आसान हो जाते हैं।

0: बढ़ती की इस रफ्तार को देते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधा।

0: सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में, जिसमें हम भर कर लाए हैं गागर भक्ति रस से। और ये गागर जो है वो सीधे आपके घर, आपके द्वार छलक रही है कार्यक्रम अमृत कलश के माध्यम से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

दरअसल जब मन में श्रद्धा होती है तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है, और जब दिल में ईश्वर बसते हैं तो डर अपने आप ही दूर हो जाता है। जिसने प्रभु को अपना मान लिया उसकी हर राह खुद प्रभु आसान बना देते हैं।

0: दोस्तों, इसी भक्ति गीत के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, आपका मन सदा शांत रहे और जीवन सुख समृद्धि से भरता रहे।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता

0: यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार की कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है।

0: ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
1: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
2: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश धोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो

0: अच्छे खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्ता ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात। 101.9 FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना सरिये माना। आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
6: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
8: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
7: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: सुर संगम सुनने वाले सभी श्रोताओं को निहत तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कैलाश खेर के आवाज में गए इस प्यारे से गीत के साथ।

और इसी प्यारे से गीत के साथ दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति, पर कहीं मत जाएगा कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर हो रहे हैं विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

अभी आप सुन रहे थे विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं। माफ कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम और आइए अब सुनते हैं विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: आपके संदेश
2: संदेश से आते हैं,
1: आपके गीत
2: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर। क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
3: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
4: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
6: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी।

0: मार्ग अयोध्या, फोन 9267988901।
1: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।

नमस्कार श्रोताओं, सुन रहे हैं आप अपना FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या और मैं हूं आपकी दोस्त नेहा। तो आइए आज के इस नो टेंशन ओनली पॉजिटिव वाइब्स के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसे देखने का नजरिया थोड़ा हल्का और थोड़ा सा सुकून भरा होना चाहिए। हर बात पर उलझना जरूरी नहीं है, कुछ बातों को मुस्कुरा कर जाने देना भी समझदारी होती है। तो खुद के साथ सुकून में रहिए, बेवजह की चिंताओं को धीरे से किनारे रख दीजिए और हर दिन में एक छोटी सी खुशी जरूर ढूंढ लीजिए, क्योंकि हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता और कुछ पल सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, जैसे कि सुबह की शांति और अपनों का साथ और साथ ही साथ दिल की सच्ची खुशी। तो याद रखिए कि खुश रहने के लिए वजह तलाशने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि खुद किसी की खुशी की वजह बन जाए। तो आइए आज का ये जो दिन है वो थोड़ा हल्का, थोड़ा खुश और पूरे दिल के साथ जीते हैं, क्योंकि यही वो पल है, ये जो हमारी असली ऑन AIR जिंदगी है। और दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी को इतना सुकून और सकारात्मकता से जीने की बात करते हैं तो एक जिम्मेदारी भी अपने आप जुड़ जाती है, खुद को सुरक्षित और जागरूक रखने की। तो खुद को सुरक्षित और जागरूक रखिए और इसी प्यारी सी सोच के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आरंभ करते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप उठे और देखें कि पेड़ों पर फल नहीं है, खेतों में हरियाली नहीं है, पक्षियों की चहचहाट नहीं सुनाई दे रही है और बारिश भी अपने समय पर नहीं हो रही है। सोचकर ही अजीब लगता है ना। दरअसल हमारी धरती की हरियाली, मौसम का संतुलन और जीव जंतुओं की विविधता भी काफी हद तक उन क्षेत्रों पर निर्भर करती है जिन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इन्हीं क्षेत्रों के महत्व को समझाने के लिए हर साल 29 जून यानी कि आज के दिन उष्णकटिबंधीय दिवस का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आखिर होते क्या हैं? तो सीधी भाषा में कहें तो पृथ्वी का वो हिस्सा जहां खूब धूप पड़ती है, गर्मी रहती है और अच्छी बारिश होती है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। भारत का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में आता है, इसलिए यह विषय सिर्फ किताबों का नहीं है बल्कि हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे घर की थाली में आने वाला आम, केला, नारियल, चावल और कई तरह की सब्जियां, इनमें से बहुत सी चीजें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ही देन है। दुनिया के सबसे घने जंगल, अनगिनत पशु पक्षी और लाखों प्रकार के पेड़ पौधे भी यहीं पाए जाते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज के ये क्षेत्र कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। जंगल तेजी से कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज जो है वो थोड़ा बदल रहा है। कभी बहुत ज्यादा बारिश तो कभी सूखा तो कभी ढेर सारी भीषण गर्मी, ये सब उसी बदलते पर्यावरण के संकेत हैं। प्रकृति हमें किसी शिकायत के बावजूद बहुत कुछ देती है। प्रकृति कभी हमसे शिकायत नहीं करती है, वो हमें देती है स्वच्छ हवा, पानी, भोजन और जीवन। लेकिन अब समय आ गया है कि हम भी प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक पेड़ लगाना, पानी की बचत करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना, ये ऐसे छोटे छोटे से कदम हैं जो बड़ा

बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें यही संदेश देता है कि प्रकृति का सम्मान न केवल पर्यावरण की रक्षा है बल्कि हमें अपने भविष्य को भी सुरक्षित करना है। अंत में महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की भावना को याद करते हुए बस इतना ही कहूंगी कि जब प्रकृति मुस्कुराती है तभी मानव जीवन भी खुशहाल बनता है। तो आइए हम सब इस धरती की इस हरित संपदा को बचाने का संकल्प लें।

0: और दोस्तों, आज के इस सकारात्मक विचार को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय की। विषय है डिजिटल युग में बढ़ता डिजिटल अरेस्ट और उससे बचाओ। क्योंकि जैसे हम अपने मन को बेवजह की उलझनों से बचाते हैं, वैसे ही हमें अपनी डिजिटल दुनिया को भी सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। तो आइए सुनते हैं ये आवश्यक जानकारी। डिजिटल युग में बढ़ता डिजिटल अरेस्ट और उससे बचाओ, हमारे वार्ताकार हैं अखिल पांडे। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: आज के समय में तकनीक हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आज डिजिटल केवल एक शब्द ही नहीं, बल्कि इस पर हमारी पूरी दिनचर्या निर्भर है। सुबह की पहली अलार्म से लेकर रात को सोने के आखिरी मैसेज तक हम पूरी तरह से डिजिटल ताने बाने में बुने हुए हैं। इसे देखकर लगता है जैसे हमारे जीवन का अस्तित्व ही डिजिटल के बिना संभव नहीं है। डिजिटल युग वर्तमान समय का वह दौर है जहां इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और डिजिटल तकनीकें जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। इसे कंप्यूटर युग या सूचना का युग कहना अतिशयोक्त नहीं होगा, जहां पर जानकारी का आदान प्रदान बहुत ही तेज गति से होता है। सूचना का यह युग अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति और सामाजिक संबंधों को नया रूप दे रहा है। इससे लोगों को आसानी से सूचना प्राप्त हो जा रही है और उनके द्वारा उसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। यह तकनीकी प्रगति का वह दौर है जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया ने संवाद, शिक्षा और अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया है। इससे सूचनाओं में तेजी आती है और लोगों को तक आसानी से पहुंचती है। डिजिटल युग ने मानव जीवन के हर पहलू को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। लोगों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी है जो उनके बीच की भौगोलिक दूरी को मिटा देती है। वीडियो कॉल और सोशल मीडिया ने इस दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इनके माध्यम से हम आप अपने किसी भी सगे संबंधी से किसी भी समय और किसी भी स्थान पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया, जहां पर अब ई बुक्स और वर्चुअल कक्षाएं सामान्य सी बात हो गई हैं। भारत जैसे विकासशील देश में तकनीक के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं कमजोर वर्गों तक पहुंची हैं। साथ ही रोजगार और विकास के अलावा सहयोग भी बढ़ा है, जहां समूह में बातचीत के जरिए योजनाएं बनाकर उसको लागू किया जा रहा है। डिजिटल युग ने जहां मानव जीवन को आसान बनाया है, वहीं इसने लोगों के सामने कई चुनौतियां और समस्याओं को भी बढ़ावा दिया है। इस डिजिटल युग में लोगों के सामने सबसे प्रमुख संकट गोपनीयता का है। आज जब सारे काम डिजिटल या ऑनलाइन के माध्यम से हो रहे हैं, तो इन सबके बीच डेटा साझा करना बेहद आसान हो गया है। इसी डेटा को चुराकर साइबर अपराधी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। आजकल साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया तरीका अपनाया है, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। डिजिटल अरेस्ट के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग और महिलाएं हो रही हैं, क्योंकि डिजिटल विभाजन से इन लोगों में अकेलापन बढ़ा है और इसी का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का साइबर स्कैम है, जिसमें साइबर ठगी करने वाले खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या आयकर अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल या मैसेज के जरिए डराते और धमकाते हैं। वे लोगों के ऊपर गैर कानूनी गतिविधियों का आरोप लगाते हैं, जिससे वो डर जाएं और उनकी कही हुई बातों में आसानी से फंस जाएं। ऐसा होने पर साइबर अपराधी उन लोगों को पैसा ट्रांसफर करने या अपनी संवेदनशील जानकारियां देने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार के अरेस्ट को ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है, जो आज के डिजिटल युग की सबसे खतरनाक धोखाधड़ी है और सूचना युग का सबसे स्याह पक्ष भी। आजकल डिजिटल अरेस्ट के लिए

साइबर अपराधी AI वायरस और नकली वीडियो तक का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे वह उन लोगों का भरोसा जीत सकें जिसके साथ वे धोखाधड़ी करने वाले हैं। इसके लिए वह पहले मैसेज या कॉल से आपके अंदर डर पैदा करते हैं और बार बार आपसे कहेंगे कि आपका नाम डार्क वेब पर है या आपका पार्सल जब्त हुआ है, और फिर आपके ऊपर भावनात्मक दबाव बनाएंगे। डिजिटल अरेस्ट के दौरान आपको गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है। ऐसा करके साइबर अपराधी लोगों को घरों या होटल में ही कैद कर लेते हैं। अपराधी बार बार आपके बैंक अकाउंट को सीज करने की धमकी देते हैं और गिरफ्तार होने का डर दिखाते हैं। वीडियो कॉल कर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं, जिससे आप डर जाएं और उनकी बातों में आ जाएं। डमी या नकली अकाउंट बनाकर उसमें पैसों का ट्रांजेक्शन कराया जाता है। साथ ही साथ डिजिटली अरेस्ट लोगों से एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर उनसे फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट की एक ऐसी ही घटना पटना में डॉक्टर दंपत्ति के साथ घटित हुई, जहां पर अपराधियों ने उन्हें लगातार 14 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उनसे करीब 1,95,00,000 रुपए ट्रांसफर भी करवा लिए। अपराधियों ने पहले उन्हें CBI वकील और जज बनकर डराया और धमकाया, फिर परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। इससे डॉक्टर दंपत्ति इतना भयभीत हुए कि उन्होंने खुद बैंक जाकर 6 बार में RTGS के जरिए रुपए ट्रांसफर किए। ऐसे ही एक अन्य मामले में पंजाब के पूर्व IG डिजिटल अरेस्ट का शिकार बन चुके हैं और अपनी एक बड़ी जमा पूंजी साइबर अपराधियों को दे चुके हैं। ऐसे न जाने कितने मामले पूरे भारत में हैं, जहां पर साइबर ठगों ने ऑनलाइन और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाकर मोटी रकम वसूल की है। आज डिजिटल इंडिया के कारण 90 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी से इसका शिकार भी आसानी से हो जा रहे हैं। साल 2021 में जहां साइबर अपराधों की संख्या 1,35,000 थी, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 11 लाख तक पहुंच गई। इससे तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्ष 2025 में साइबर फ्रॉड से कुल 19,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें एक बड़ा हिस्सा डिजिटल अरेस्ट से होने वाले नुकसान का है। जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको देखकर तो ऐसा लगता है डिजिटल अरेस्ट का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन साइबर अपराधियों के लिए सबसे आसान शिकार वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, स्टूडेंट्स, व्यापारी और मध्यमवर्गीय परिवार होते हैं, जिन्हें विदेश यात्रा और जॉब स्कैम से जुड़े लालच, टैक्स से जुड़ाने वाले कॉल्स या खाता सस्पेंड करने के झूठे आरोपों से डराया जाता है। इन समूहों में भय, जानकारी की कमी और सामाजिक कलंक का डर प्रमुख होता है। साइबर अपराधी डेटा लीक या सोशल मीडिया से नंबर चुनते हैं, जहां पर तकनीकी संवेदनशीलता बेहद कम पाई जाती है। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करती और ना ही व्हाट्सएप पर पुलिस वारंट की कॉपी भेजती है। इसके अतिरिक्त पुलिस ना तो कभी आपसे फोन पर पैसे की डिमांड करती है और ना ही आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगती है। कॉल के दौरान वह आपको अन्य लोगों से बातचीत करने के लिए मना भी नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा करने के लिए कह रहा है, तो आप समझ जाइए कि वह एक साइबर अपराधी है। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आप कभी भी किसी अनजान कॉल पर कोई संवेदनशील जानकारी शेयर न करें। फोन उठाने से पहले यह चेक कर लें कहीं वह नंबर 9 डिजिट का तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उस कॉल को कभी रिसीव न करें, क्योंकि साइबर अपराधी कंप्यूटर कॉल करते हैं जो 9 डिजिट का ही होता है। इस तरह का कॉल आने पर परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दें। यदि आपको किसी प्रकार का संदेह होता है तो तुरंत फोन को काट दें। इसके अलावा कभी भी अनजान नंबर पर किसी भी प्रकार से पैसों का लेन देन न करें। आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। डिजिटल दुनिया में आप अपनी निजी जानकारी को सोच समझ कर ही साझा करें। अगर आपको कोई डराने की कोशिश करें तो डरे नहीं, बल्कि कानून की मदद लें। सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। सरकार ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए अभी तक 11 लाख से अधिक सिम कार्ड और लगभग 3 लाख EMI नंबर ब्लॉक किए हैं। साथ ही साथ लगभग 32 लाख फर्जी बैंक खातों को बंद भी किया गया है। सरकार ने टेलीकॉम विभाग के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो उन विदेशी कॉल को ब्लॉक करता है जो भारतीय नंबर के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा करने के बाद साइबर अपराधों में कमी आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा सरकार ने आम नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, भारत में डिजिटल अरेस्ट कानून

0: कानूनी रूप से मान्य नहीं है। भारत का कानून किसी को भी वीडियो कॉल पर गिरफ्तार होने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में अगर हम डिजिटल रूप से साक्षर हो जाते हैं तो डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से स्वयं की रक्षा आसानी से कर पाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे अखिल पांडे की वार्ता, विषय था डिजिटल युग में बढ़ता डिजिटल अरेस्ट और बचाव के उपाय। श्रोता रुकते हैं छोटे से विराम के लिए, वापस आते हैं बस कुछ ही पलों में।
2: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में। दोस्तों, अक्सर लोग हमारी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन सच क्या है? वही लोग एक दिन आपकी मेहनत और आपके हौसले को सलाम करते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद पर भरोसा करना पड़ता है, खामोशी से मेहनत करनी पड़ती है और वक्त को जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि आज जो आपको कम समझते हैं कल वही आपकी कामयाबी पर ताली भी बजाएंगे। तो इसी जज्बे और इसी आत्मविश्वास को आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और श्रोताओं, इसे प्यारे से गीत के बाद अब चलते चलते एक नजर समाचार पत्रों पर से स्थानीय खबरों पर। पहली बार पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर भी चलेंगी 3 सिटी बसें। 12 किलोमीटर लंबे परिपथ पर 12 स्टॉपेज किए गए तय। ₹25 होगा अधिकतम व ₹10 होगा न्यूनतम किराया। हनुमान गुफा के पास श्रद्धालुओं को जानकारी देने के लिए स्थापित किया जाएगा बूथ। बच्चों को फोन व सोशल मीडिया से रखें दूर। अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव में राज्यपाल का माताओं से आग्रह।

आईटीआई बेनीगंज में रोजगार मेला 30 को और गांव में ही बनेंगे आय जाति निवास प्रमाण पत्र। यह व्यवस्था 1 जुलाई से शुरू होगी।

दोस्तों, जिंदगी में अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो बिना कहे भी सब समझ लेता है, जो खुद खामोश रहकर भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करता है, तो वो है पिता। वो अक्सर अपने जज्बात जाहिर नहीं करते, लेकिन उनकी हर मेहनत में, हर चिंता में सिर्फ हमारा ही नाम होता है। पिता वो छाया है जो खुद धूप सह लेते हैं, लेकिन हमें कभी तपने नहीं देते। तो ये गीत उन सभी पिताओं के नाम जो हमारे लिए हर दिन कुछ ना कुछ त्याग करते हैं बिना किसी उम्मीद के।

0: और इस गीत के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या यहीं संपन्न होता है।
1: क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अबनियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना
2: डॉलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
4: प्रणाम अयोध्या।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। आइए सुनते हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
8: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
7: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नेहा। और आपके ढेर सारे संदेश जो हैं वो हमें मिल चुके हैं और आइए शुरू करते हैं उन्हें पढ़ने का सिलसिला। पहला संदेश हमारे पास जो आया है वो कृष्णा पार्क दिल्ली से आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म मेरा गांव मेरा देश से ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश आपके गीत और अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जगदीश धाकड़ नायमार श्रीमती रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ आप सभी ने सुनना चाहा है ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज में

0: सफर को देते हैं एक छोटा सा विराम, वापस आते हैं बस कुछ ही पलों में, कहीं मत जाइएगा।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
6: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
7: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
5: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
6: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं,
8: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
5: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
9: हेलो
10: हेलो, सुनो टेलीफोन नंबर।
11: माय नंबर इज
5: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में, और आप हैं अपनी दोस्त नेहा के साथ। अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो जसपुर उत्तराखंड से आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेग सिद्दीकी, रियाज रिफकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। आप सभी ने सुना चाहा है ये प्यारा सा गीत रफी आशा और शैलेंद्र सिंह की आवाज में।

कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश आपके गीत और अगला संदेश हमारे पास आया है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सौदागर से कविता कृष्णमूर्ति और मनहर की आवाज में ये गीत

0: कार्यक्रम चल रहा है, आपके संदेश, आपके गीत, और अगली जो फरमाइश हमारे पास आई है वो ग्राम बहरामपुर टैमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन, बेबी आरोही, यशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दे धनादन से ये प्यारा सा गीत।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा।

और इसी प्यारे से गीत के साथ दीजिए इस कार्यक्रम से अपने दोस्त नेहा को विदा, पर कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर होते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
0: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
2: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
0: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
2: और साथ में अपना नाम, पता
0: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
2: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
3: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 से 2 तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
6: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
7: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
6: अब ECHS से इम्पैनल। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
7: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
6: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
8: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
8: दिन में 3 से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या से, और मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा, और हाजिर हूँ लेकर आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जहाँ बात होगी, गाने होंगे और वो भी आपकी फरमाइश पर। तो देर मत कीजिए, मिलाइए नंबर 7376 8090 और जुड़ जाइए इस खूबसूरत से कार्यक्रम में। और आइए देखते हैं कि कौन से वो श्रोता हैं जो बन गए हैं आज के इस कार्यक्रम के पहले कॉलर।

0: Hello? Hello? Hello? जी आपकी कॉल आकाशवाणी में लग चुकी है. हेलो लगता है आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों की वजह से, पर डायल करते रहिए आप 73 76 80 40 90 ये नंबर और बन जाइए इस खूबसूरत से सफर के साथ ही. हेलो
1: नमस्ते मैम.
0: जी गुड मॉर्निंग. क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं आपसे बात कर रही हूँ स्वाति सिंह, अंबरपुर मनकापुर जिला गोंडा से.
0: जी स्वाति कैसी हैं आप?
1: जी मैम बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसी हैं?
0: एकदम बढ़िया. और अब तो मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, बारिश होने लगी है. अब
1: मौसम बहुत अच्छा हो गया, सुहाना हो गया मौसम अब तो.
0: जी आज कैसा मौसम है आपके यहाँ का? आज का मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
1: मैम बहुत अच्छा मौसम है, रात की बारिश हुआ, रात में क्या सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच बारिश हुआ है, बहुत बढ़िया.
0: जी तो आज के इस कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना चाहेंगी आप?
1: मैम गीत का नाम रहेगा प्रेम प्रतिज्ञा, जाने की बहना शीशे की उम्र प्यार की आखिर बात क्या.
0: प्रेम प्रतिज्ञा.
1: जी मैम.
0: तो स्वाति जी कुछ पकौड़े वकौड़े बनाए सुबह से आपने कि नहीं?
1: जी मैम.
0: अरे आज बारिश हो रही है और बारिश में पकौड़े खाने का जो एक वो होता है, मतलब एक पसंद होती है लोगों की कि बारिश के मौसम में लोगों को पकौड़े बड़े पसंद आते हैं, तो वही आपने आज पकौड़े बनाए कि नहीं बनाए?
1: हम पकौड़े नहीं बनाए हैं क्योंकि अब हम और पापा के लोग हैं घर पे, भैया और सब लोग कहीं गए हैं, तो हम नहीं बनाए, बस चना और चाय का नाश्ता किए.
0: चलिए बहुत अच्छा नाश्ता आपने, बहुत हेल्दी सा नाश्ता किया. स्वाति जी आपसे एक गुजारिश है कि प्रेम प्रतिज्ञा जो फिल्म है वो हमारी लाइब्रेरी में नहीं है, तो आप कोई और अगर गीत के लिए फरमाइश कर सके तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आसानी हो जाएगी.
1: तो मैम इसका सुनवा दीजिए, रुकिए बता रहे हैं, प्रेम प्रतिज्ञा का सुना दीजिए.
0: आपने प्रेम प्रतिज्ञा ही तो बोली थी अभी.
1: अच्छा मैम इसका सुना दीजिए, नफरत सॉरी हाथी मेरे साथी का सुनवा दीजिए, सुन जाए ठंडी हवा.
0: हाथी मेरे साथी का सुन जा ए ठंडी हवा.
1: जी मैम. और मैम मैं आज सुबह आपको रेडियो पे सुनी 5:55 पे, तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज हम यहाँ मैम से बात करके ही रहेंगे क्योंकि पिछले शो में भी आपसे बात नहीं हो पाई थी मेरी.
0: और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल आज के इस कार्यक्रम में लग गई है.
1: जी मैम आज तीसरी बार मेरी आपसे बात हो रही है और मैम हम आपको तो इतने आवाज से इतने अच्छे से पहचानते हैं, आप चाहे नाम बताए रेडियो पे या ना बताए फिर भी हम पहचान जाते हैं कि नेहा मैम की ड्यूटी है आज.
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति आपके इस ढेर सारे प्यार के लिए. और आइए आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत आपकी पसंद पर. आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और आप 7376 80 40 90 इस नंबर को डायल करके जुड़ सकते हैं इस खूबसूरत से सफर में और हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह जी, तो कैसा मौसम है इस समय आपके यहाँ का?
1: जी मौसम बिल्कुल सुहाना हो चुका है, बरसात हो रही है रुक रुक कर। यहाँ पर
0: अच्छा लगता है आपको ये मौसम?
1: जी बिल्कुल, बरसात का मौसम काफी पसंद है हमें।
0: चलिए, तो कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में?
1: गुरु फिल्म का सुनवा दीजिएगा, बरसोरे मेघा मेघा।
0: बरसोरे मेघा मेघा,
1: हाँ जी, बरस रहे तो और बरसाएंगे इनको।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको
1: और एक बात बताए आपको?
0: जी
1: जी, मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैं और खेती किसानी का काम करता हूँ और साथ में एक भजन गायक भी हूँ।
0: क्या बात है, आपकी आवाज इतनी खूबसूरत सी है कि मैं बोलने ही वाली थी कि आपकी आवाज बड़ी ही प्यारी है और आपने बता भी दिया कि आप भजन गाते हैं।
1: जी हाँ, हमारा 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है।
0: जी
1: उसमें हम 4 गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं, 1 ढोलक और 1 तबला बजाते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैंने आपकी पसंद का गीत क्यों कर लिया है, आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत। आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और 7376-8090 ये वो नंबर है, ये वो जादुई नंबर है जिसको डायल करके आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ। और आपके साथ हूँ मैं, आपको बता दूँ आपके दोस्त नेहा, और हमारे कोई श्रोता जुड़ चुके हैं इस प्यारे से कार्यक्रम के साथ। जी, इस खूबसूरत सफर में आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।

0: शिमला से, बड़ी ठंडी ठंडी सी जगह से बात कर रहे हैं आप।
1: जी,
0: तो अब आपसे तो पूछने वाला है नहीं कि वहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि वहाँ का मौसम तो हमेशा ही खुशनुमा होता है।
1: जी, तो अभी तो है, बारिश हो रही है जी हमारे इधर।
0: जी, तो राकेश जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में?
1: आज मुझे गाना सुनना है दिल तेरा आशिक मूवी का।
0: दिल तेरा आशिक
1: जी, उसका टाइटल सॉन्ग
0: दिल तेरा आशिक। ये मूवी तो नहीं है यहाँ पे, आप कोई और गीत बोल सकते हैं?
1: कोई नहीं, कोई नहीं, मैं आपको मैं दूसरा मूवी बोलता हूँ। मैं साजन का घर है
0: जी, साजन का घर
1: जी,
0: इसका कौन सा गीत?
1: उसने एक गाना है, अपनी भी जिंदगी में खुशी का पल आएगा।
0: जी, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत आपने पसंद किया है। और क्या करते हैं आप राकेश जी?
1: हम तो सेब की बागवानी करते हैं।
0: खेती बागवानी करते हैं, क्या है इस समय आपके बागों में?
1: सेब
0: लगे हुए हैं।
1: जी, सेब लगे हैं, तो हम उसकी बागवानी करते हैं। और हमारे जो सेब जो है ना, पूरे भारत में जाते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी
1: और
0: बात है।
1: आप तक भी पहुंचे होंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पहुंचते हैं यहाँ तक। और बस वो वाला टेस्ट नहीं होता ना, जैसे आप लोग पेड़ों से तोड़ते हैं और खाते हैं, बिल्कुल रसीले रसीले से सेब, हम लोगों तक आते आते थोड़ा सा, एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन तो पुराना हो ही जाता है।
1: क्योंकि वो जो उसकी पैकिंग होती तो उसमें तो फिर वो पक जाता है, तो फिर दिक्कत पड़ जाती है। क्योंकि जो ताजे सेब तो पेड़ में मिलते हैं खाने के लिए।
0: दूरियों की सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है कि आते आते कुछ दिन तो लग ही जाते हैं, है ना राकेश जी?
1: पर लग जाते हैं, बिल्कुल
0: जी। तो आपकी पसंद का जो प्यारा सा गीत है वो मैंने क्यों कर लिया है, लीजिए सुनिए, एंजॉय करिए अपनी पूरी फैमिली के साथ ये प्यारा सा गीत। आपने कॉल किया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और आप हैं अपने दोस्त नेहा के साथ और कार्यक्रम में हमारे एक श्रोता भी अब हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हाँ मैडम नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं बस वही आपका बहुत पुराना श्रोता।

0: अर्जुन कुमार सोनकर छोटा रमना।
1: जी अर्जुन जी, कैसे हैं?
0: जी मैडम,
1: कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत अच्छा है। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो गई।
1: जी बिल्कुल, हम यही उम्मीद करेंगे कि आप हमेशा हमेशा अच्छे रहें और ऐसे ही हम लोगों के पास कॉल करते रहें। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? जी
0: जी,
1: कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
0: फिल्म है मैडम गौतम गोविंदा, इसमें एक गाना है दरोगा जी चोरी हो गई।
1: गौतम गोविंदा
0: जी, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर।
1: माफ कीजिएगा, ये फिल्म नहीं है हमारे यहाँ की लाइब्रेरी में।
0: नहीं है
1: जी? नहीं है। आप कोई और गीत के लिए फरमाइश कर सकते हैं?
0: तो पुरानी पिक्चर आप सुनाइए, आप सुना दीजिए हमको। हीर रांझा का।
1: हीर रांझा का कौन सा गीत सुनना चाहिए?
0: रांझा का कोई भी गाना सुना दीजिए, पुरानी
1: पुरानी वाली हीर रांझा का कोई भी गीत,
0: कोई भी गाना सुना दीजिए, सब बहुत अच्छे हैं।
1: जी आप क्या करते हैं अर्जुन जी?
0: जी मैडम मेरी दुकान है, दुकान पे बैठा हूँ, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
1: चलिए, तो यानी कि काम भी होता रहता है और
0: जी जी जी रेडियो आपका सुबह चलता है, दुकान पे बैठे हैं, दुकान पे सुनता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ रात में 8 बजे, फिर सुनता हूँ आपका प्रोग्राम।
1: चलिए, यानी कि अभी तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने जो साथी है उनके साथ आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और घर पे फैमिली के साथ आनंद लेते हैं।
0: जी, घर पे भी रेडियो चलता है मैडम आपका प्रोग्राम।
1: चलिए, आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो से।
0: जी जी जी, धन्यवाद।

0: जी हाँ, मिलते तो हम भी हैं आपसे और इन फोन कॉल्स के माध्यम से ही हम मिलते हैं, और आप भी 73-76-80-40-90 इस नंबर को डायल करके इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और अपनी पसंद का गीत भी सुन सकते हैं। तो हमारे कोई श्रोता जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम से, देखिए देखते हैं कौन से हैं वो हमारे प्यारे से श्रोता। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है, कहाँ से बोल रही हैं?
1: बबली गुप्ता बोल रही हूँ
0: जी।
1: मैं बबली गुप्ता,
0: बबली गुप्ता
1: अयोध्या से
0: जी।
1: मैं अयोध्या से बबली गुप्ता बोल रही हूँ सब्जी मंडी से
0: जी। बबली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो बबली जी, कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपको?
1: मैम, मैं तो सुबह उठ के ये गुड मॉर्निंग अयोध्या सारे प्रोग्राम सुबह उठ के मेरा काम है, रेडियो ऑन कर देना और सारे काम भी होते रहते हैं। मैं रेडियो भी
0: तो आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: गीत मैम,
0: क्या कुछ सोचा नहीं आपने?
1: तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं,
0: तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। किस मूवी का गीत है ये?
1: आवाज में रंग, रंग फिल्म का,
0: रंग फिल्म का गाना है
1: जी।
0: पसंद है आपको ये गीत?
1: जी

0: अच्छा, क्या करती हैं आप बबली जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: हाउसवाइफ हैं, मगर आपकी आवाज से ना जैसे लग रहा है कि आप बिल्कुल बच्ची हो, अभी टीनेज।
1: बच्ची नहीं मैम, मेरे दो बच्चे हैं, एक 18 ईयर का है, एक
0: हाँ, बट आपकी आपकी वॉइस बहुत ही प्यारी है। और बबली जी, आपकी पसंद का जो गीत है वो हमने क्यों कर लिया है, और आज के इस खूबसूरत से मौसम के साथ लीजिए, इस खूबसूरत से गीत को भी आप एंजॉय करिए। कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और आपके साथ है आपकी दोस्त नेहा और हमारे साथ है एक श्रोता भी। हेलो हेलो हेलो, लगता है किन्हीं तकनीकी खराबियों के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामानंद अयोध्या से बोल रहे हैं मैम।
0: जी बहुत जल्दी से बता दीजिए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: जो आपकी इच्छा हो सुना दीजिए।
0: अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा गीत सुना रही हूँ अरिजीत सिंह की आवाज में। कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी जी

0: अभी आपने सुना सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम बता दें कि आज आप 12:30 पर सुनेंगे अवधी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कुछ तुमने कहा जो आपकी पसंद के कार्यक्रम होते हैं वो होंगे दिन में 1 बजे और 2 बजे गीत गजलों का आनंद आप लेंगे। 2:30 का समय हमारी बहनों का होगा कार्यक्रम अंगना में। इसमें आज चर्चा होगी संघर्षों के बीच भी मुस्कुराते रहें और वार्ता सुनेंगे घर को स्वर्ग बनाए कुशल गृह व्यवस्था। वार्ताकार हैं गायत्री सिंह। तो दोस्तों हमारे कार्यक्रमों से आप जुड़े रहें और सुनते रहें आकाशवाणी अयोध्या को कहीं भी कभी भी। और अगर आप हमको सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून कीजिए 101.9 मेगाहर्ट्ज और आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। सुबह के 10:02 हुए हैं तो चलिए जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से।
1: वो श्याम बाबू का निकला क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत की खोज में। उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसा मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया। उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था। तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं। अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ,
1: वो तो किसी भी विषय का जिक्र करें
2: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा।
2: करेक्ट,
1: वैसे जिसे आज हम क्लिक

0: थे ना,
1: हाँ वैसे वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं.
0: Yes.
1: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है. तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया. पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए. तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो.
0: एक व्यापक दृष्टिकोण,
1: व्यापक दृष्टिकोण है, ऑफ कोर्स. और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है. तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूं और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूं. और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी, जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे.
0: बिल्कुल.
1: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे. तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ऐसा मैं कहूंगी. जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मैच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था. और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का.

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारत एक खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है। पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं, जो

0: आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी वो।
1: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले हाँ, को दौड़ जाती है हाँ, मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
0: और वो पूरे
1: साढ़े तीन दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
0: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
0: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार इस तरह से था। और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं, वहां पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? क्या कुछ है? 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजु में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनबुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है।
1: अरे।
0: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी,
0: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह।
0: फिर एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे, घर जाएंगे। इस तरह से नहीं, बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था। हाँ। वहां पर तारा पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं नहीं, रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं।
0: हाँ,
1: और रातों
0: हाँ।
1: रात बंदा स्टार बन जाता है और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका हो चुका है।
0: वाह। उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था। हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो
1: इतने फोन आ रहे हैं,
0: इतने फोन आने लगे।

0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, छह छह सात सात महीना एक एक साल फोन आने में लग जाता था, पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है
0: एक्चुअली। तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज्ड टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली।
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, मैनेजमेंट कैसी करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडरवैल्यू कर रखा है।
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार,
0: बहुत बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला।

0: उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं,
1: तब उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो।
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर।
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है।
0: 2003-04 की बात कह,
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या

0: समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं,
1: तब उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो,
1: सोलो था,
0: सोलो था, और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर।
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है,
0: 2003-04 की बात कह रही।
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: को दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले, और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है, ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी, इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: समझदार थी। क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी, वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स 3-3, 4-4 साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी।
1: अच्छा, तो उससे अंदर
0: शायद पापा आजकल में आने वाले।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस। और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली। तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे अच्छा। ये फिल्में देखनी है, और वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ड्राइंग और फोटोग्राफी

0: का क्या मामला था?
1: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी।
0: ओके।
1: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमराज होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमराज होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
0: वा,
1: में
0: वा।
1: जहां पर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है, जो पापा ने बनाया हुआ है, उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है।
0: वाह।
1: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें है, उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना, तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल औसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे। तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुंदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूँ मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल औसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे।
0: वाह वाह।
1: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। बस ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे। तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं। बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी, टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में एक छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे। और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
0: वाँ वाँ
1: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा। सबको खिलाते थे।
0: हाँ।
1: और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दोस्त बॉम्बई में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
0: वाह वाह वाह।
1: हाँ, तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
0: हमेशा कोई ना कोई,
1: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
0: क्या बात है। इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
1: श्योर।
0: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई

0: उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवचट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निळू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
1: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
0: काफी सारी तस्वीरें,
1: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
0: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निळू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था
1: नाटक करके, जो नाटक जिसका जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
0: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
1: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा
0: ही, ज्यादा ही। तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और निळू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब,
1: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
0: हाँ हाँ, डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड, तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए, और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स डॉक्टर लागू, निळू फुले, पापा, तनुजा,
1: कमर्शियल सिनेमा की कमर्शियल, एग्जैक्टली,
0: हाँ हाँ, ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे।
1: वाओ,
0: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए, वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
1: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
0: बहुत ही
1: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने
0: तो,
1: के हिसाब से।
0: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां है, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की, इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड, और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं। तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भागदौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था

0: वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था। और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था। बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे। तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया।
1: गजब।
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो। तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे। तो पापा ने कहा ठीक है। उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी। उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूँ, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम। और ये बहुत बड़ी बात है और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो, ठीक है क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो CM साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात ये लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए। इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात।
1: वाह वाह।
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी। जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य, जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी, वो बिल्कुल एक जैसी थी। और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में मैं
1: बिल्कुल। चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है।
0: करेक्ट।
1: वो बताएं।
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं। मैंने कहा क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है। ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो। मम्मी कहा अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी। तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में। दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था। इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहाँ पर बम्बई में बिकॉज

0: हम बंबई है तो यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती. पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे. तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था. तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर. और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं. पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था. तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे. और मीडिया से कॉल आया बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है. बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली. तो पापा ने कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूँ मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है. और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया. तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है. वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है. तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से. उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का. उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है, पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया. और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे. तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था वो किस्सा. इस तरह से कुछ हुआ
1: और
0: था.
1: किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहाँ नजर आता है.
0: हाँ, और क्योंकि मेरे दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी. पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे. इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे. तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको पता था,
0: बहुत करीब से देखी हुई थी. तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था.
1: बिल्कुल. यहाँ एक गाना सुनते हैं, दो आंखें बारह हाथ का. हाँ. ए मालिक तेरे बंदे हम.
0: ऑफ कोर्स.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शंकर महादेवन की आवाज में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को आप सुन रहे थे अदिति सिंह शर्मा और दिव्य कुमार की आवाजों में। सूफी जॉय एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से गजल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानोलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे। जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में तुम बिन टू फिल्म से इसे हमने लिया, अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

शरत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे कतील शिफाई का ये कलाम, और तलत अजीज ने ही संगीत से सजाए गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एंड गजल्स इस एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

निदा फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS वीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा

0: विश्वकप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आरोप फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल सपन जगमोहन के संगीत के साथ, अभी तो जी ले। इस फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी तो जीले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, इंदिवर के बोल सपन जगमोहन का संगीत। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें।

0: 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन। और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म से एक गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आप सबकी फरमाइश पर अवधिक लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें शामिल होंगी आपकी फरमाइशें।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोकगीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG।

0: स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

माटी की सौंधी खुशबू, सुरु की मधुर उमंग अपनी संस्कृति की पहचान है। लोक गीतों के रंग इन्हीं रंगों, इन्हीं सुरों और अपनी समृद्ध लोक परंपरा की मधुर छटा को समर्पित है हमारा ये कार्यक्रम लोक रंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकगीत केवल गीत नहीं होते। हमारी मिट्टी की महक, हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार, हमारी खुशियां और हमारी भावनाओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। तो हम आज का अपना लोक रंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसमें है आपकी पसंद के गीत जो आपने पसंद किए हैं। हमारे श्रोताओं के प्यार हम तक पहुंचते हैं संदेशों द्वारा और उनकी फरमाइश हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है आरती पांडे जी की आवाज में। पसंद करने वाले श्रोता है दिनेश यादव, बलरामपुर तुलसीपुर। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है उत्तम कुमार भगत, पाकुड़ झारखंड से।

सरगुजा मेनपाट से विनोद थापा, पूजा रानी, राधिका थापा, छत्तीसगढ़ से जानवी डूमिन, यामिनी नरेंद्र डूम, डॉडी लोहरा से फर्जी हरिशंकर बेलदार, फर्जू प्रभा रानी बेलदार, जेल रोड रायगढ़ से उमा राज, जगदीश राज, आप सभी ने लोक गीतों की फरमाइश की है। अगली फरमाइश हमारे जलंधर से मीना कौर और संदीप कौर की, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, कुमकुम मिश्रा, छत्तीसगढ़ रायपुर से साजिद खान और आफताब खान से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये लोकगीत।

कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग, अगर आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें संदेश भेजें और हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाएं। कार्यक्रम का अगला लोकगीत सासू पनिया कैसे जाऊं, इस लोकगीत को गाया है प्रतिमा यादव ने और पसंद करने वाले श्रोता है आप सभी डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, श्रीमती विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, इन्होंने इस गीत को पसंद किया है। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास है। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है। कुमार कृपा सिंह परिहार गुलाबा लोध से,

विजय यादव, इन्होंने जौनपुर से हमें संदेश भेजा है। लोक रंग कार्यक्रम में कैलाश यादव और इनके समस्त परिवार वाले, तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत।

जी लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अगली फरमाइश हमारी है मालिनी अवस्थी के गीत के लिए।

एक गाढ़ी हाँ को धीरे से पसंद करने वाले हमारे श्रोता है ग्राम अरायन जिला श्री गंगानगर से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल विमला सोनू ममता दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल पूनम चलिया इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा सतीश अनेजा चंडीगढ़ से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार इसी गीत की फरमाइश हमारे पास है बीके धाकर उन्नैल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वक्तरिया धाकर भोला वाक्तरिया प्रवीण वाक्तरिया रियाज वाक्तरिया महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये लोकगीत

कार्यक्रम में अगली फरमाइश नक्ता के लिए है और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं पुराना तालाब डुमराव से वसीउल्ला अंसारी, अशमानाज अंसारी और शबनम बानो जेल रोड बक्सर से आर राज एस डी अजनबी, फातिमा राज डोंडी लोहरा बालौद छत्तीसगढ़ से दया शंकर जयपुरिया, प्रभा देवी जयपुरिया, रियासत हुसैन सिद्दकी, नाजमा बेगम सिद्दकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, महिरा नूर, इन सभी ने हमें संदेश भेजा है जसपुर उत्तराखंड से। अल्ताफ जी ने हमें संदेश भेजा है उत्तरा दिवाकर पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर, बाबा कुटीर रायगढ़ से, शिवकुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान तायडे, नारायण इंगले, आशीष मुहर्रेकर, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ने हमें संदेश भेजा है लदावली जिला मुरादाबाद से। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है निसार सलमानी जी ने धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, धीरज गुप्ता बदायूं से, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डीके और इनके परिवार के सभी सदस्य, सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, माखनलाल सिंह, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये नट्टा गीत, आवाज अंजू भारती की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपकी अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
3: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
2: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
3: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
2: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
4: मन का रेडियो बजने दे जरा।
5: जी बिल्कुल, आज का हमारा सफर यहीं तक, दीजिए इस कार्यक्रम लोक रंग से इजाजत। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, दिन के ठीक 1 बजे है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन
3: जग घूमे थर जैसा न कोई
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान
2: तो देर क्यों जनाब किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com पर
0: AYODHYA AKASHVANI@gmail.com
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
2: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
2: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।

शब्द जब दिल से निकलते हैं तो गीत बन जाते हैं, और जब गीत किसी अपने की फरमाइश पर गूंजते हैं तो यादगार बन जाते हैं। अब समय है कि हमारे विशेष प्रस्तुति कुछ तुमने कहा, जहां आपकी पसंद और आपकी भावनाएं सुरों के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, वे गीतों की धुन में महसूस होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना गीतों भरा सफर, कुछ तुमने कहा, एक ऐसा सिलसिला जहां हर फरमाइश अपने साथ एक एहसास लेकर आती है। तो शुरू करते हैं आज का ये गीतों भरा सफर, कुछ तुमने कहा का, जिसमें फरमाइशें हैं आपकी और गीत सुनवाएंगे हम। जो पहली फरमाइश हमारे पास है, फिल्म बरसात के लिए है, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर की। लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुर श्रीगंगानगर से अनिल घोड़के, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी अरुण कुमार मालवीय, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से बी आई धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से पटेल नगर मालूट से रमेश कुमार, सतीश अनेजा, इन्होंने हमें भेजा है चंडीगढ़ से, नानालाम से मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, रज्जाक खान ढानकी रोड उमर खेड़ा से। इसी गीत की फरमाइश है कल्याण सेन नटरेन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से, रविंद्र सिंह छाबड़ा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, गजानन गेले सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया। आप सभी ने इसी गीत की फरमाइश हमसे की है। बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, ओम प्रकाश राय कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराव पंजाब से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी। बरसात की ही फिल्म की गीत की फरमाइश हमसे की है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से पिंकल डिंपल ने, अल्ताफ हुजरे सांगली जिले के जत शहर से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से। ये हमारे पास एक संदेश, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालोद तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से विक्रम मालवीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेश के लिए, और हम आपकी पसंद का गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से, आफ्ताब अंसारी गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, रवि कुमार

और राहुल कस्बा बाड़ा जिला अंबाला से, निसार सलमानी धनौरे तेलीवाला उत्तराखंड से, उत्तरा दिवाकर पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से, सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, मसरूर हुसैन ग्राम कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, प्रवीर सैनी कुंवर कॉलोनी बंडवाह से, रामगढ़ कैंट झारखंड से कमल साहनी, फागुराम यादव संबलपुर कांकोर से, मोहम्मद यासिन अंजान दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये प्यारा सा गीत फिल्म बरसात से।

जी बिल्कुल, हमें पता है कि आपको अगले गीत की फरमाइश पता करनी है और सुनना है अगला गीत। आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है अगले गीत का, तो बिल्कुल हम आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं फिल्म जानवर से। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आप सभी, मोहम्मद अकरम अंसारी नगरिया काला से, धीरज गुप्ता कस्बा बदायूं से, नीलू मेघ, नरेश मल्होत्रा निट्टू खैल बाजार पानीपत से, शिव चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ से, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, मां बलेश्वरी धाम साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, जगमोहन सिंह प्रजापति लौडडा जिला बागपत से, रज्जाक मोहम्मद हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, जूही त्रिवेदी सोहावल जिला अयोध्या से, राजू मेघलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, मोहम्मद इंतजार भोजपुर तगा सहारनपुर से, मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला चौकंटी बुलंदशहर से। जी बिल्कुल, आप लोगों की फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं तो यकीन मानिए हमें बेहद खुशी होती है उसे अपने इस कार्यक्रम में शामिल करने में। राजकुमार दौदी, इन्होंने हमें ग्राम फरासी जिला हिसार से भेजा है संदेश। शास्त्री नगर बीच शहर से किसान सपकाल, उत्तम कुमार भगत पाकुड़ झारखंड से, बूढ़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हमें ये संदेश भेजा है मुन्ना भगत ने, कुंवर कृपाल सिंह परिहार गुलबा लोद से, ओम बगाड़िया ग्राम बांडीवाला फजलिका से, नाभा जिला पटियाल पंजाब से सोमदत्त, मोहम्मद अफजल ताज कोल सिटी बरकाना से। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास है राजेश वर्मा लाल कुर्ती रुड़की कैंट से, श्रवण गिल ग्राम लोहगढ़ा ठाकुरवाला से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से, विनायक बींडे आकोट से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म जानवर से।

बन लहरियां गूंज रही हैं और आपके दिलों तक पहुंच रही हैं। आकाशवाणी अयोध्या से तो जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रमों के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत हम दिल दे चुके सनम से, बोधराज खोरवाल, इन्होंने हमें संदेश भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से और ये पसंद इन्हीं की है। कैरम ज्योति जिला पटियाला पंजाब से, शाहिम सुल्तान ओल सिटी बरकाना से, लाल कुर्ती रुड़की कैंप से राजेश वर्मा। ग्राम लोहगढ़ा ठाकुरवाला से राजदीप सिंह, इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है। सीताराम कांगरा एकता कॉलोनी रोहतक से, देखिए इतने दूर दूर से श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। रोहतक से हमारे पास ये संदेश आया। गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा इस गीत की फरमाइश कर रहे हैं। सुरेश राठौर गांधीनगर गुजरात से, अर्जुन कुमार सिंह हमें संदेश भेजते हैं जिला उज्जैन।

गोविंद वैष्णव ग्राम नसूदिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म साजन के गीत के लिए पसंद करने वाले श्रोता है आप सभी खिल्लू परवेज हरदोई रोड उत्तर प्रदेश से प्रवीण हांगोने कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से तुलसी मास्किन गोवर्धन बिहार कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी दास मास्किन पंचकुला चंडीगढ़ से बिट्टू भाटिया झज्जर हरियाणा से मोहम्मद कलीम अंसारी गंज डुंडवारा से हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे ब्रजेंद्र भागवत हजारीबाग झारखंड से नानक खन्ना सफीदो सिटी हरियाणा से। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास है पुखराज बड़गुजर ज्योति नगर नोखा राजस्थान से सुभाष गोदरा गांव हीरावली फजलिका पंजाब से तिलक राज अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से राम शरण इन्होंने हमें संदेश भेजा है अस्पताल रोड मध्य प्रदेश से गुरमीत सिंह मीठा साउथ दिल्ली से। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास है मुकेश शर्मा भिलाई से राम कुमार रेवार सादुल शहर राजस्थान से रावर करनाल करनाल क्षेत्र से संतोष खेत से यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। पेश है आप सबकी पसंद पे फिल्म साजन का ये गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश। जी बिल्कुल, आपको इंतजार है अगली फरमाइश का। और अगली फरमाइश अनुराधा पौडवाल कुमार सानू की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत तो फिल्म आशिकी से। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है देवेंद्र कुमार गुप्ता कस्बा उभरती बदायूं से, पुखराज बड़गोजर ज्योति नगर नोखा राजस्थान से, सुभाष गोदरा ग्राम हेरावली फजलिका पंजाब से, टिक्का राज अरोरा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, राम शरण ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, चंद्रेश गौहर सागर मध्य प्रदेश से, रामचंद्र मखेजा बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से इसे गीत की फरमाइश हमें भेजी है। रवि कुमार राहुल कस्बा बाड़ा अंबाला हरियाणा से, प्रमोद कुमार साहू बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से, दिलसाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से, सुरेश गगनी बिचा जलालाबाद वेस्ट से, निसार सलमानी धनौरी तेलीवाला से, विनोद वंडलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से इसी गीत की फरमाइश हमारे पास है। सुभाष चंद्र बजाज कालका से, बालकृष्ण नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, जीवन विश्वकर्मा गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म आशिकी से।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म जांबाज के गीत के लिए पसंद करने वाले श्रोता है बाल करण वर्मा ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। इस गीत की फरमाइश है अजीत कसाना लदावली मुरादाबाद से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ से, विनोद बारासा खोखरवली श्रीगंगानगर से, रिजवान खान अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, सुखविंदर सिंह जोड़ा कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुरेश जायसवाल जमनिया जिला गाजीपुर से, नावी हुसैन आपने भी इसी गीत की फरमाइश हमसे की है किदवई नगर सिद्धपुर टाउन से, बी कमल मजनू का टिल्ला से, राघव बघेल लघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, आजाद नगर लक्षर हरिद्वार उत्तराखंड से, तेज अंसारी रश्मि पांड्या इन्होंने हमें भेजा है राजकोट गुजरात से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे।

राखी अदा के गीत के लिए पसंद करने वाले श्रोता है ब्रजेंद्र भगत। सालार पहलगाम से पीरजदा मेहरुद्दीन। अनिल वर्मा सरदर बाजार कुरावली से उत्तम कुमार। पाकुड़ झारखंड से सुदर्शन साह। पद्मा टॉकी से ब्रजेंद्र कुमार। भोला कॉलोनी जिला करनौल से प्रवीण शुक्ला। चिन्मय माथी जमशेदपुर से बालू अप्पा घड़बले। उमरी नादेड़ महाराष्ट्र से अनवर अंसारी। अहमदनगर मंडी पंजाब से राजकुमार रिवार्ड। सादुल शहर से बबराव। बड़ौदे पूरे से हीरमन शिंदे। किशोर नगर अमरावती से प्रवीण शर्मीली। कंवर कॉलोनी बड़वा से हिमकेश्वर साहू। भाटपारा छत्तीसगढ़ से धीरज गुप्ता। बदायूं से राजकुमार डुंडी। फरासी जिला हिसार से। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी की। मोहम्मद अफजल ताज स्कूल सिटी बरका काना से सोमदत्त नोभा जिला पटियाला पंजाब से। और अजान कुमार सिंह काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से। और विनोद मुन्नत आप सभी की पसंद के ये गीत अनोखी अदा से।

बिल्कुल अनोखी अदा, ये अदा भी हमारे कार्यक्रमों की थी जो आपने पसंद किए थे। गीत उनको सजाया था हमने रंगोली की तरह, और देश क्या उम्मीद है कि आप सभी को अपना ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब इसी गीत के साथ दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम कुछ तुमने कहा से। कल फिर इसी समय आपकी पसंद के गीतों को लेकर हम हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम में इसी समय पर, तो बिल्कुल भी सुनना मत भूलिएगा हमारे कार्यक्रमों को। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, दिन के ठीक 2 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, AYODHYAAKASHVANI@gmail.com।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि में आपका बहुत बहुत स्वागत करती है आपके रेडियो दोस्त प्रतिभा सिंह। दोपहर के इस खुशनुमा पल में हम लेकर आए हैं गीतांजलि, एक ऐसी महफिल जहां अल्फाज एहसास बनते हैं, गजलें दिल की आवाज बनती है। तो इस सुरमई सफर की शुरुआत हम करेंगे। दर्द की पहचान भी तजुर्बों से हुआ करती है, दर्द की पहचान भी तजुर्बों से हुआ करती है, यूं ही कोई किसी के जख्म नहीं पड़ता।

मोहब्बत भी इल्जाम भी इनायत से कम नहीं होते। मोहब्बत में इल्जाम भी इनायत से कम नहीं होते। जो दीवाना कह दे वही अपना सा लगता है। इन्हें दिलकश एहसासों को अल्फाजों में समेटे पेश है हमारी अगली गजल, मुझे तुम भी दीवाना कह के बुलाओ।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई

0: असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का

0: उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओ एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनॉग्रेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स है वो सभी में बीएलओज अपॉइंटेड है, तो सभी बीएलओज को उनके इनॉग्रेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर अवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी।

0: ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्थान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नवयौवन दर्शन

0: सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सोना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव यौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। दिन के 2:30 हो गए हैं। हमारी बहनों को इंतजार है अपने कार्यक्रम अंगना का। पेश है कार्यक्रम अंगना।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा हो वाला है का खास।
4: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकते हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकते हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अगला पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: मुझे नौ लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
7: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा।
6: नहीं मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
7: अच्छा वेरी स्मार्ट।
8: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाए वहाँ से सामान।
7: हाँ हाँ क्यों नहीं।
8: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से
0: या हमें ईमेल करें अयोध्या आकाशवाणी एट द रेट

0: aol@gmail.com पर।
1: aodhyaakashvani@gmail.com।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी, अयोध्या।

राजधानी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

0: अगला कार्यक्रम सुनाने ली सभी सखियन का लता सखी के प्यार भरा नमस्कार। और बताओ सखी का हाल चाल है, सब ठीक है ना? हम समझी थे कि इस समय तो आप सभी द्वारे वाली बगिया में ना खटिया पर बैठी हुई हैं सखियन के बीच में और साथ ही साथ मधुर मधुर सुगंध अमरैया के लेत हुई है। हाँ सखी हम सही बुझन और देखो कोयल केर बोली सुनत हुई है। देखा सखी अपने पर परिवार में कितना खटपट हो जाए लेकिन खेते खलिहाने या फिर बाग बगीचा में चला जाए तो ना तनिक भाई मनवा एकदम खुशहाल हो जाते है और ढेर शांति मिलत है। अपने जीवन में जैसे कितना संघर्ष हो जाए वही तरह से कि पड़े हंसी खुशी से रह के चाहिए, कितनों दिक्कत हो जाए हमेशा खुश रह के चाहिए, मुस्कुरात रहे जैसे तमाम मेर मेर के शरीर में शांति मिलत है। मुश्किल में भी मुस्कुरात रहे से सबसे बड़ी ताकत है। यह ना केवल आप सबके अपने सबके सकारात्मक ऊर्जा देते हैं बल्कि चुनौती से लड़े बदे साहस और तेज देते हैं। देखो अपने संघर्ष के बीच में मुस्कुरात रहा केवल एक दिखावा नहीं बल्कि विपरीत परिस्थिति में भी आप सभी आंतरिक शक्ति और मानसिक लचीलापन दिखावे का सबसे बढ़िया तरीका है। हम तो कहे थे बहनी अपने सखियन का चाहिए कितनों दिक्कत हो जाए लेकिन अपने घर परिवार में हमेशा खुश रहें चाहे लड़का बच्चा हो या बड़ा। आप सभी के आत्मविश्वास का बढ़ावत है और तो और सखी समाधान के उन्मुख रहे बदे बहुत मदद करत है। मुस्कान के शारीरिक लाभ भी तमाम होते हैं। हल्की सी मुस्कान मस्तिष्क का संकेत देते है कि सब ठीक है। जैसे तनाव पैदा करे वाले हार्मोन जो होते ना उनका कम करत है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होते है। देखो सखी लोग कभो कभो ये देखे जाते हैं कि जौन समय बीत गवाना मन का भारी होए से बचावत है और आपका चुनौती का डट के सामना करे के बदले ऊर्जा देते है। देखो सखी लोग कठिन समय में भी हंसत मुस्कुरात रहे के चाहिए एक शक्तिशाली गुण है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर बनावट है, कठिन चुनौती के सामना करे के ऊर्जा देते है और सकारात्मक दृष्टिकोण का बनाए रखे में मदद भी करते है। और सखी लोग ये समझो कि मुस्कुराहट हमेशा रहे से तनाव कम होते और विपरीत परिस्थिति से निपटे के बदे नवा रास्ता खुलत है। हमारे कहे के मतलब ये है कि कितनो बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए संघर्ष हो जाए घर में कुछ हो जाए लेकिन जीवन में अपने हिम्मत का कभी हारे करना चाहिए अपन काम हमेशा अपने हंसत खेलत निपटावे के चाहिए। देखा सखी लोग कितनों अपने ऊपर गम या फिर कोनो तरह से परेशानी रहे सब निपटावत भय हमेशा खुश और मुस्कुरात रहे। अपने बहन का अपने घर परिवार में अपन स्वास्थ्य या फिर अपने बच्चन के प्रति हमेशा सचेत रह के चाहिए और अपने बच्चन के बदे तमाम तरह तरह की योजना जो चली है अपन सरकार चलाए है जैसन की ओकरे प्रति हमेशा सजग रह के चाहिए। आज कुछ ऐसा ही हम एक बात कही लेके आए हैं अपने नैया एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य एवं सेवाएं। वार्ताकार हैं दिनेश कुमार जी और भेंट करता है उष्मा वर्मा बहनी। तो चलो इन्हीं से अच्छे तरीके से सुना जाए।
1: श्रोता बहनों समाज में हर आयु वर्ग के कल्याण के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारी योजनाएं प्रायोजित की जाती हैं। इसी में से

0: योजना है एकीकृत बाल विकास योजना। यह योजना किसके लिए है, कैसे संचालित होती है, इससे कौन कौन लाभ उठाता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मया क्षेत्र में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी आदरणीय दिनेश कुमार जी को। दिनेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो हमारी बहनें सुन रही हैं, उनको ये बताएं कि ये एकीकृत बाल विकास योजना है क्या?
1: जी, ये 2 अक्टूबर 1975 को ICDS, जिसको आप एकीकृत बाल विकास योजना कह रही हैं, इसकी स्थापना की गई थी और इसका मूल उद्देश्य उस समय रखा गया था कि बच्चों के कुपोषण दर में कमी लाना
0: जी
1: और समाप्त करना, इस तरह का उद्देश्य रखा गया था इसमें।
0: जी, ये सिर्फ बच्चों के लिए है या?
1: जी, बच्चों के लिए। ये प्रारंभ में कुपोषण को दूर करने के लिए बच्चों के लिए ही किया गया था, लेकिन जब कुपोषण चक्र को देखा गया कि भाई बच्चे आते कहाँ से हैं, तो ये हुआ कि बच्चे तो गर्भवती महिला के, गर्भवती बनती कौन है तो किशोरी बनती है, किशोरी कौन बनती है तो बच्चे बनते हैं, तो फिर ये चक्र देख करके उसमें सारे लोगों को शामिल कर लिया गया। हमारे जो लाभार्थी होते हैं ICDS के, वो गर्भवती, धात्री और 0 से 6 वर्ष के बच्चों की 3 कैटेगरियां कर दी गई हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे कि 0 से 6 माह के बच्चे जो बाहर की कोई भी चीज नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं।
0: जी।
1: 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो बाहर की चीज खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन घर में ही उनकी देखरेख की जाती है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जिनकी देखरेख के लिए, जिनको कुछ लर्निंग के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई और उस आंगनबाड़ी केंद्र पर ये बच्चे 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे के समय में रहते हैं।
0: जी, जी।
1: और वहाँ हमारी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है, एक सहायिका होती है,
0: जी।
1: तो वो लोग बच्चों को अच्छे से मतलब कुछ सिखाते पढ़ाते हैं, कुछ अपना खिलाते हैं, खेल खेल में सब चीजें इनको समाज के बारे में और पढ़ाई लिखाई के बारे में और इस तरह की मतलब जो लर्निंग में जो माता पिता घर पर सिखाते हैं वो उनको सिखाने का काम।
0: हम कह सकते हैं कि वो पोषण के साथ साथ उनकी शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हैं।
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है।
1: अब इसमें जैसे कि जो आप बता रही है कि जब इसकी स्थापना की गई तो इसके 5 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उसमें चर्चा करना चाहूंगा कि पहला उद्देश्य उनका ये था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना और मृत्यु दर कम करना, इन्हीं बच्चों के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास की नींव डालना
0: जी,
1: और फिर स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, जो साला पूर्व शिक्षा
0: जो पहले जो बच्चे कहे जाते हैं तो वो स्कूल छोड़कर ना जाएं।
1: साला पूर्व शिक्षा मतलब स्कूल जाने से पहले का जो पहले की जो शिक्षा है, जो उनको थोड़ा सा भय होता है लोगों के सामने आने जाने का, तो उस भय को दूर करने का स्कूल रेडीनेस बोला जाता है, स्कूल से पहले की तैयारी करना। और फिर तीसरा हो जाता है कि इन बच्चों के हित लाभ के लिए, मतलब जो भी इनकी समस्याएं हैं, इनके परिवार की समस्या, इनकी समस्या है, उसके लिए अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करना। जैसे कोई परिवार है तो उसको वो कुपोषण के कई कारण हो जाते हैं, पता लगा कि उसके घर में शौचालय नहीं बना है, बाहर कहीं आना जाना पड़ रहा है तो वो इन्फेक्शन होता है, तमाम तरह की समस्याएं होती है, तो पंचायत विभाग का सहयोग लिया जाता है। उसके पास घर नहीं है, ग्राम विकास का सहयोग लिया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तो इन सब विभागों का एक समन्वय स्थापित करके कि भाई आपके यहाँ ये योजना चल रही तो हमारे बच्चों को दीजिए, हमारे बच्चे के परिवार इस योजना से लाभान्वित नहीं तो आप ये करिए, तो ये करिए, तो इस तरह से मतलब अंतर विभागीय समन्वय स्थापित किया जाता है। और जो 6वीं चीज है कि बच्चों की देखभाल के लिए बच्चों की माताओं स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से बच्चों को बेहतर देखभाल की क्षमता में वृद्धि करना।
0: बिल्कुल जी, यानी बच्चे कैसे पले,
1: कैसे पले,
0: कैसे उन्हें पालना है, इसकी शिक्षा दी जाती है। एक तरह से ट्रेन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा परिवार ऐसा है मुझे लगता है कि जो उनके पास व्यवस्था रहती है बस उन्हें टेक्निक्स नहीं आती,
1: टेक्निक नहीं पता होता।
0: एक चीज और से मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कोई योजना आई आपके विभाग में, तो उस योजना को आप कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, क्या माध्यम है, क्या कुछ प्रयास?
1: आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है, जो 400 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है, और उसमें एक कार्यकर्त्री होती है और एक सहायिका होती है। सहायिका का मतलब ये होता है कि वो कार्यकर्त्री की सहायता करती है, बच्चों को बुलाना, ले आना, ले जाना, और जो उस सर्वे क्षेत्र में 400 से 800 की आबादी होती है वहाँ के परिवारों को वो जा करके वो दोनों लोग बताती है कि भाई हमारे यहाँ ये योजना चल रही है, आपको इस तरह का राशन मिलता है, आपको इस तरह से खाना चाहिए, आपको इस तरह से ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या आपको टीका कब लगवाना है, कैसे लगवाना है, कहाँ लगता है, कौन लगाता है, आपके एनएम कौन है, ये सारी जानकारी देने के लिए इन लोगों का काम होता है। क्योंकि दायरा भी उसी गांव की, जो कार्यकर्त्री होती है वो उसी गांव की होगी, तभी उसका चयन

0: किया जाएगा तभी उसकी नियुक्ति की जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो वो उस गांव के सारे परिवारों को पहले से भी जान रही होती है
1: जी।
0: और यह भी जान रही होती है कि किस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, किसको हमें कैसे सलाह देना है और किसकी क्या जरूरत हो सकती है, तो उस हिसाब से वो अपना
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: और इसीलिए मुझे लगता है उसे बहुत सहूलियत होती
0: जी बहुत सहूलियत होती जी
1: उन तक पहुंचने
0: हाँ,
1: में।
0: हाँ.
1: एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब आप इतनी बड़ी योजना को संचालित करते हैं
0: जी
1: तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको जरूर आती होंगी
0: जी।
1: वो दिक्कतें कौन सी हैं ताकि हमारी जो श्रोता बहनें सुन रही हैं अगर उनकी तरफ से दिक्कत हो ना तो उसको थोड़ा हल कर पाएं।
0: उसमें दिक्कतें ये आती हैं कि लोग अवेयर बहुत देर में होते हैं
1: जी।
0: जैसे कोई योजना की बताई जाती है कि भाई इससे लाभान्वित हुई है, जैसे हम लोगों के यहाँ है गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए बच्चों के लिए अनुपूरक पोषाहार मिलता है पुष्टाहार, तो उसमें ये होता है कि अनुपूरक पुष्टाहार में कि किसी बच्चे के परिवार में उसकी आमदनी कुछ भी जैसे कम ज्यादा है कुछ भी है तो ये होता है कि भाई इसको जितना आहार मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ये अनुपूरक आहार देती है। अच्छा अब उसमें ये है कि अनुपूरक आहार उनको मिला तो वो पता लगा कि बच्चे के नाम से मिल रहा है, बच्चे की मात्रा में है वो क्वांटिटी में है, उसको परिवार वालों ने थोड़ा सा यूज कर लिया या बड़े बच्चों ने यूज कर लिया या ये कर लिया, तो ये सब को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए होता है कि भाई देखिए ये बच्चों के लिए दिया जा रहा है, ये गर्भवती महिला के लिए जो नीडी है उसके लिए दिया जा रहा है और वो स्वस्थ रहेगा, तो ऐसी चीजें होती हैं। और फिर कई बार ये होता है कि भाई गांव के लोग कारकत्री को कुछ कम महत्व देते हैं तो उसमें उनसे ऊपर का भी स्टाफ, जैसे हमारे यहाँ कारकत्री के ऊपर का स्टाफ होता है लेडी सुपरवाइजर मुख्य सेविका होती है, तो उन लोगों को भी विजिट पर लगाया जाता है। हम लोग बाल विकास परियोजना अधिकारी हम लोग भी विजिट पे जाते हैं, गांव में चौपाल लगाते हैं, गांव वालों को जागरूक करते हैं कि भाई जो आपकी कार्यकर्त्री आपके गांव की हैं इनको हम लोग ही ऐसा करने के लिए कहते हैं, कृपया करके इनकी बातों को सुन लिया करिए और उससे लाभान्वित होइए, उनको बताया जाता है कि भाई ये योजना आ रही है इसमें आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, आपके ही गाँव घर की महिलाएं हैं आपके लिए अच्छा ही कुछ कर रही है, तो ये कभी कभी लेकिन अब ये दिक्कतें हम लोग हैंडल कर ले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं रहती है
1: जी। तो हमारी श्रोता बहनें जो ये कार्यक्रम सुन रही हैं, बहनों देखिए कि कोई भी योजना जो है वो जो भी भारत सरकार चलाती है वो हम सभी के आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए और उनकी सहायतार्थ ये चलाई जाती है, तो भाई आप लोग भी थोड़ा अवेयर हों और जो बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं आप उन बातों को ध्यान से सुने और उस योजना का लाभ उठाएं। तो दिनेश जी हमारे बीच में बैठे हैं और हम चलते चलते इनसे ये आग्रह करेंगे एकीकृत जो बाल विकास योजना है इसके बारे में हमारी जो श्रोता बहने हैं इनसे आप और क्या कहना चाहते हैं?
0: हम इनसे यही कहना चाहते हैं कि भाई आप लोगों के लिए योजनाएं सरकार जो संचालित कर रही है थोड़ी सी जागरूकता आप लोगों को भी दिखानी चाहिए, जो भी कार्यकर्त्री कहती है कि भाई इस योजना का आप ले लीजिए लाभ और ये योजना इस तरह से आप लाभान्वित हो सकती हैं, तो वो रिक्वायरमेंट थोड़ा पूरा करके तो उसका सहयोग करना चाहिए। जैसे इस समय मातृत्व प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चल रही है, इसमें पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 और दूसरे बच्चे के बेटी होने पर 6,000 रुपए मिलता है, और वो मतलब कि ये होता है कि गर्भावस्था से लेकर के 570 दिन के बीच में आपको आवेदन करना होता है, तो उसमें कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं, बताते हुए भी जानते हुए भी, तो कोई मायके चला गया तो कोई कहीं चला गया और फॉर्म भरने में देर कर जाते, फिर कहते साहब अब कैसे क्या होगा, तो ये सब थोड़ी जबकि इतना लॉन्ग पीरियड सरकार ने दे रखा है योजना से लाभान्वित होने के लिए कि आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो वो सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: जी जी
1: श्रोता बहनों निश्चित तौर पर आपने जो बाद में दिनेश कुमार जी ने आपको सलाह दी ये बहुत ध्यान देने की बात है और आप इस कार्यक्रम को जो है अगर ध्यान से सुन रही हैं तो आप सजग हो अपने अधिकारों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति तभी आपको किसी भी योजना का लाभ मिल पाएगा। सर आप हमारे स्टूडियो में आए आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी इसके लिए हम अपनी तरफ से और आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखिए बनी दिनेश कुमार जी कितनी बढ़िया से ज्ञानवर्धक जानकारी दी, हमें आशा है कि सखियन के जरूर पसंद आवा हुए और जो भी योजना हुए सब सखिये बढ़ चढ़ के जरूर हिस्सा ली है, लेकिन बहनी भाई बात बात कहे तो आगे चलबे करे एक अंतराल के बाद
3: कीमती है उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़। आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
2: देखिए सखी बात मत कही कि बात बारी आ जाता है कुछ इस संगीत के अपने सखियन के

भगवानी कितनी बढ़िया मनोहारी गौनाई रही, सब सखी एकदम प्रसन्न चित हो गई। लेकिन बनी देखो अपन जो बनी लोग है ना, अब बैठी यहाँ नैया माँ कार्यक्रम सुनती यहाँ, वह कुछ बढ़िया से जानकारी चाहती। तो देखो बनी आज है सोमवार और चला जाए रसोइया के बाहर, अब कुछ बढ़िया से पकवान बनावा जाए। देखो सखी लोग आज सभी सखी जो नहीं ना, हमेशा अपने घर घर ये माँ या बहरे आलू मटर चाट पानी पूरी के चटपटा चाट खाए हुई हैं, लेकिन मेरी आज हम उनके बजे कुछ और लेके आए हैं। अब आप सब ये कहिए कि कहाँ लेके आए हैं लता बहनी, मखाना के चटपटा चाट।

तो बहन लोग जल्दी से एकर सामग्री नोट कर ली। एक कप दही, एक चौथाई चम्मच भुना जीरा, एक चौथाई चम्मच कश्मीरी मिर्च, एक चौथाई चम्मच सादा नमक, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला और एक चौथाई चम्मच पिसी चीनी, या थोड़ा सा और मीठा चाहते हो तो एक चम्मच डाल दें। एक गुच्छी धनिया हरी, एक गुच्छी पुदीना। एकर विधि है, सबसे पहले मखाना का बिना तेल के भून लें और फिर एक कटोरा दही मां का अच्छे से फेंट लें। उमा एक चौथाई चम्मच सफेद नमक, एक चौथाई चम्मच काला नमक और एक चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, दो से तीन कटा हुए हरी मिर्च बढ़िया से महीन महीन काट लें, एक चौथाई चम्मच भुना जीरा, चाट मसाला एक चौथाई चम्मच, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच पिसी चीनी, बारीक कटा हरा धनिया, सब डाल के अच्छे से मिला लें और मखाना वही दही में डाल के 10 से 15 मिनट के लिए रख दें और ऊपर से हरी चटनी और इमली की चटनी सजाए के परोसें। खुद खाएं और अपने मेहमान का भी खिलावें। और देखो बनी, यह चाट खाए से बहुत फायदेमंद है, इसमें कैल्शियम से भरपूर मखाना चाट है। लेकिन मैं देखो सब बहन का देखा थे, बहन के मुँह में खट्टी चटनी और इमली की चटनी के नाम रहे से मुँह में पानी आएगा। लेकिन मैंने देखो अपन अंगने बहनी बैठी है ना, तो कुछ गीत भी सुना चाहती, तो सुने हम गीत लेके आए हैं। बोल है रघुवर के नैना और स्वर है सहगान है, मतलब ही तो सुने हमारे बहने।

देखा सकल गौने कितनी मनोहारी रही, ऐसा लाग ना कि जैसे लागत है राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न के एकदम गौने के माध्यम से सामने खड़ी है। लेकिन मैंने देखो अपने

पहन के जौन है ना गर्मी के मौसम चलते है, तो ये गर्मी के मौसम आपने सबका विशेष ध्यान देवे के चाहिए, और खास करके जो ननवाल लड़के हैं ना उनके ज्यादातर ख्याल रखे के चाहिए। काहे से वे छोट होते हैं, तनिक देर में उनकी बीमारी हो जाते हैं, अनबोलता है वे, उनके ध्यान विशेष रखे चाहिए अपने बहन का। और देखो बहनी जौन भी बहनी लोग अच्छे से स्वास्थ्य के अपने स्वास्थ्य के और लड़कन के स्वास्थ्य का ध्यान रखा थी ना, वह बहनी लोग हमेशा घर में चुस्त और दुरुस्त रहा थी। और जो हमारी सखियां चुस्त और दुरुस्त रही है ना तो अपने घर परिवार के अच्छे से देखभाल कर पाई हैं, और अब खुद ही बीमार रही हैं तो लड़का बच्चे घर परिवार के कैसे देखभाल कर पाई हैं। तो हमारे कहे के मतलब ये है कि गर्मी के मौसम में अपन बहन लोग बाहर जाती काम काज करे तो काम काज करे जाए, लेकिन उन पर भाई ध्यान रखें, काहे जो सूती गमछा होते हो कल ले रहा है अपने अपन जो धूप से बचाव रखे, कहा खास करके खाए के मतलब हमारी है। अब ये है ना पानी भरपूर पिए, अगर पानी भरपूर पियत रही है ना तो जो उनके चेहरे के चमक है वो बरकरार रहे, और जो हमारे बहन लोग खुश रही हैं और चेहरे के चमक बरकरार रहे ना तो घर अंगनैया में चार चांद लग जाते हैं। तो लेकिन मैं जो घड़ी है ना कुछ ऐसा इशारा कर रहे थे कि अपने सबके चले के बेरिया हो गए है, तो अगले कार्यक्रम में निक निक बात बत कही गीत संगीत के साथ मुलाकात तो हो भी करे, लेकिन चलत चलावत अपने बहन लोगों का पता बताए दे। तो पता है अंगना कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अयोध्या, पिन कोड है 224001। अब बने देखो अगले कार्यक्रम में निक निक बात बत कही गीत संगीत के साथ फिर हुए मुलाकात, तब तक के लता सखी का दे अनमत नमस्कार।

अभी हमारी बहनों ने सुना अपना कार्यक्रम अंगना। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के ठीक 3 बजे हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का आज का भाग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई। इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसो

0: जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधना, ले आया लकड़ी। इतनी सी चुप्पा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से, इतना

0: बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का, तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
2: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है, हाँ नहीं तो। अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
2: अच्छा
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े बखत के लिए, वो समझता तो है ना। हाँ
2: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, ना लकड़ी की कमी ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात तो बुधनी, ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
2: अरे, अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
0: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक
2: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो तो ना?
2: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
2: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
0: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा की।
1: जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी कर दी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे, कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी
1: चिल्लाया। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ। सोचा शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा, जा, सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: साड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है।
1: वो
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो, अभी
1: चलो
2: चलो।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। साड़ी लूंगी गहना गरिया लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी बढ़िया खाना खाऊंगी मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे तेरी इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत ये कुल्हाड़ी है ना वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
0: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा।
0: क्यों बुधवा ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
0: हर साल फल देता है इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है जामुन कहाँ से खाऊंगी?
0: तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे क्या बात करती हो वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है। ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन नहीं मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है। तो अम्मा ऐसा करते हैं वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़। अरे उन्हें रहने दो।
0: ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
0: है भी काफी पुराना फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटने हैं तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है। कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है इसे कौन काटे।
0: चलो आगे देखते हैं कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा ऐसा क्या है।
2: चलो
0: चलो आगे चलकर देखते हैं।
2: ये देखो ये
0: देख लो अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़ और वही बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
1: चलो
0: इधर से निकल कर आओ। अच्छा
2: आई
0: क्या हुआ चुप्पा?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया।
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो हमें मत काटो।
0: बापू इन्हें मत काटना देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे।
0: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो ये चीड़ देवदार ओक खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार इन्हें काटने से क्या फायदा
0: और नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है बरखा होती है बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें कोई और पेड़ ढूंढो।
1: ये कौन सा पेड़ है ना फूल ना फल?
2: क्या पता मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों? देखो ना माँ ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है उन्हें दूध पिला रहा है और वो वाला उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं ना फल है ना फूल है कुछ भी नहीं है उसमें और ना ही उससे कोई लाभ है उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा

0: पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। इसमें हंसने की क्या बात है? चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: समझ गई ना?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
1: बता।
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। अरे मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है।

0: लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थी, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम

0: अपना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का आज का भाग। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है।

0: कर 30 मिनट होने को है, आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: नुकसान पहुंचाता है
2: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है, तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है, धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है। जैसे कि आपने कहा, स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार हो तो तनाव पैदा हो जाते हैं, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की,
0: हाँ।
1: तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर
0: हाँ।
1: ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते
0: जी।
1: लेकिन हमारे जो युवा युवतियां वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो
0: जी।
1: लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए।
0: हाँ।
1: और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो

0: ऐसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है। कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ है, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है। ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है, उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही है जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं। तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे। तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं करे, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और नेहा, जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी मेरे को लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
2: बिल्कुल। तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों, बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी कि संगीत के साथ आप कर सकते हैं या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे साथ लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन छोड़े रहना छोड़ना मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है। चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुनाई दी है,
2: तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन
0: भाई,
1: की बात बताता ये गीत कितना अच्छा मंजे जी.
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है. इस गीत से भी संदेश मिलता है. और देखो जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है. अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है. ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आत्य और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं. और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है. जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है. बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए.
1: वाकई मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें. हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए. कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी वो आदतें हैं. एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो वही अच्छा है. और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में. रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले. यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है. यानी कि विवाह को कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी जहां दोनों का

0: मान सम्मान सम्मान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का हर नजरिए को देखना जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है। और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजो और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं, पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती, बल्कि एक बंधन समझती है। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं, लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: तो घबराहट,
1: एक घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नहीं, रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए। नेहा,

0: तो
1: ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
0: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है उसे तहे दिल से निभा पाती, पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया।
1: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता ये बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र है
1: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह। जिसमें
0: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन

0: तो बनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए.
1: चलो फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी. इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे. और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से. और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए. और तलने के लिए तेल और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए. और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए. एक पैन में तेल गर्म करिए, इसमें हींग जीरा सौंफ धनिया और बेसन डालकर भूनिए. इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च लाल मिर्च गरम मसाला अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए. और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए है ना. और जब ये अच्छे से भुन जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए है ना. और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ.
0: हम रेसिपी बताएंगे पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए. अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको IBP हो से आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से.
1: हाँ, लेकिन जिसको फीकी लगेगी वो ये क्या बना दिया.
0: तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं. टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं. और नमक आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे. सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा. हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए. तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग जीरा सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए और इसमें कटी हुई हरी मिर्च अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए. और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है. फिर हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे. फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए. अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं. हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है. कचौड़ियां तो बन ही चुकी हैं.
1: बिल्कुल,
0: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए. और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप

0: समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए.
1: बिल्कुल
0: जी.
1: तो अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा. तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार.

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रो इंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट, अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है।

0: सकती है, फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है. तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द. एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए.
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है. और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं. घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था. आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं. क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारा वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज निकलती है. स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है. कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है. तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ईएनटी को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है. ईएनटी जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है. तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा के गले में कुछ अटका हुआ है. तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स.
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें. और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए.
1: सुनते हैं.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर की हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाइयां नहीं होती थी तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करते हैं, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट इन मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
0: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये

0: फ्लोरा क्या होता है?
1: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है. जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं. तो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया. जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है. गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है. तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं. जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं. लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है. तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई है, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को. एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी. बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया.
0: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना.
1: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है. बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली.
0: जी, बहुत बढ़िया. यहाँ पर एक गाना सुनते हैं. डॉक्टर साहब बताइए कौन सा गाना सुनवाया.
1: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्स का, दर्दे दिल दर्दे जिगर. ये गाना
0: क्या बात है, आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना.

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी,
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन MRI, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन

0: प्रक्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है
0: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के लिए? क्योंकि हर कोई कहता है मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसका भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाए, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
1: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए, अपने प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
0: जी,
1: और काफी सुना है हमने
0: जी।

0: डॉक्टर साहब बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स can lead to cancers in the food pipe.
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: दीजिए। हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम नहीं है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH मैनोम pH probe बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। There are many other ways to detect the esophagus.
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है, अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।

0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए. एज ग्रोइंग अप एज अ किड, हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट. आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है. ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं. कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए. सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए. सेकंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन. आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन. कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए. तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है. तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया. ये क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है. बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं. तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है. तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला. ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है.
0: जी, जी.
1: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो.
0: Okay.
1: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स. माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी. अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स. इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है.
0: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
1: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स.
0: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है. तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं. बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी. तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है, तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ.
0: जी जी जी. और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी

0: वजह है फैटी लिवर की?
1: बिल्कुल
0: तो,
1: बिल्कुल
0: या फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है तो? हाँ,
1: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। तो ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तब उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
0: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
1: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा देखते हैं, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता है, ये कॉमन है, वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज है वो काफी रेयर होती है। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां है, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
0: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
1: बिल्कुल हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
0: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
1: नहीं, जरा भी नहीं है। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
0: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या? ये
1: बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर

0: हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं. तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले. अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ. एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है. तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी. दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत.
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी? हाँ, या तो कुछ नहीं?
0: नहीं नहीं, खा ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि यू कीप वेल हाइड्रेटेड. बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में. कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए. पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो, ताकि यू वेल हाइड्रेटेड.
1: और क्या उसमें आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग. अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो, तो सारा नॉर्मल होता है. इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये.
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को. बताइए कौन सा गाना सुनवाए.
0: चले चलो ये गाना सुना है, चले चलो.
1: चले चलो लगान का,
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो.

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहा ये तेल अच्छा है, ये ले ले इसे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है,

0: वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है. और वी नो के ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है. वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है. खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड. अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाईज है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासिटामोल है, 500 ml पैरासिटामोल है. जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है.
1: और स्टेरॉइड्स
0: भी आता है. और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता. मेडिसिन में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड. मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है. इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस. एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है. तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है. और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या होगे. तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट. इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम. अगर अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व.
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा. आपका तहे दिल से शुक्रिया. विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार.
0: थैंक यू. नमस्कार.
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग. रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल. संपादन सहयोग रीमा जोशी का था. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान. अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है.

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे।

0: वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हुए हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युव वाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज है मैग्निफिशेंट मंडे और मैं आपकी दोस्त मंजुल सिंह लेकर आ चुकी हूँ आपका पसंदीदा युवाणी कार्यक्रम। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के कार्यक्रम में हमारे पास क्या कुछ है खास। आज चर्चा होगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। फिर करियर गाइडेंस में है पंख पोर्टल और उस पर मिलने वाली सुविधाओं की करेंगे बात। और वार्ताकार जिसमें होंगी कुसुम लता जी। उसके बाद होंगे रोजगार समाचार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी चर्चा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी पृथ्वी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पर हरियाली, धूप, रंग बिरंगे जीवों का एक अद्भुत संसार बसता है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज है 29 जून और आज हम सब मिलकर मना रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। अब आप सोचेंगे ये सब तो ज्योग्राफी की क्लास जैसा सुनने में लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी धरती के उस खूबसूरत और रंगीन से हिस्से की जहाँ जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से धड़कती है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहाँ घने जंगल हैं, अतरंगी जीव जंतु हैं और इंसानी संस्कृतियों का एक ऐसा मेल है जो आपको दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। तो आखिर इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स शुरू कैसे हुआ, इसकी कहानी जान लेते हैं। तो तारीख थी 29 जून 2014 की। दुनिया भर के 12 बड़े बड़े और नामी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें जिसका नाम जो रखा गया था वो था स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट। जब ये रिपोर्ट दुनिया के सामने आई तब दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसमें दिखाया गया कि हमारी धरती का ये हिस्सा यानी ट्रॉपिक्स वाला हिस्सा कितना जरूरी है हमारे लिए और इस पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट के ठीक 2 साल बाद यानी 14 जून 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने एक ऑफिशियल प्रस्ताव पास किया कि अब से हर साल 29 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाएगा ताकि दुनिया का हर इंसान ये समझ सके कि ये प्रकृति कितनी जरूरी है हमारे लिए। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिक क्षेत्र है ये आखिर कहाँ से

कहां तक है। तो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, उसके ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, इनके बीच का जो भी इलाका है इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी सीधे सीधे बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का पूरा हिस्सा हमारा ट्रॉपिक्स है। और आपको पता है ये क्षेत्र हमारी धरती का लगभग 40% हिस्सा कवर करता है। लेकिन अब असली बात सुनिए, दुनिया भर की 80% जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और 99% मैनग्रोव जंगल इसी इलाके में पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी यहीं रहती है। दोस्तों, जहां इस क्षेत्र में इतनी विविधता है वहीं यहां चुनौतियां भी काफी हैं। अंधाधुंध जंगलों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कंक्रीट के जंगलों को बनाने के लिए असली जंगलों को साफ किया जा रहा है, अमेज़न के जो जंगल हैं जिनको हम धरती का फेफड़ा कहते हैं लेकिन आज वो फेफड़े ही खतरे में पड़ गए हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, कहीं भयंकर सूखा है तो कहीं बेहिसाब बाढ़। इसके अलावा इस क्षेत्र में गरीबी, कुपोषण और साफ पानी की किल्लत जैसी मानवीय चुनौतियां भी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस अकेले काम नहीं करता, ये दुनिया भर के बड़े बड़े संगठनों को जैसे स्टेट ऑफ ट्रॉपिक्स अलायंस और कई इंटरनेशनल एनजीओज और पर्यावरण वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करता है। इनका लक्ष्य है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी तरक्की की भी हो हमारी पर प्रकृति की कीमत पर ना हो। तो दोस्तों, आज के दिन दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वैज्ञानिक अपनी रिसर्च शेयर करते हैं और रैलियां निकाली जाती हैं। पर आज के दिन आपसे बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भले ही हम अमेज़न के जंगलों से कितना ही दूर रह रहे हों पर हमारा सुंदरवन और हमारे पश्चिमी घाट इसी उष्णकटिबंधीय जादू का हिस्सा है। तो आज के दिन हमारा फर्ज है कि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, पानी की कीमत को समझें और अगर हो सके तो एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि प्रकृति हमसे नहीं है, हम प्रकृति से हैं। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत जो हमने लिया है फिल्म धड़क 2 से।

0: इस बेहतरीन से गाने के बाद चलिए अब बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। और आज का अब हमारा सेगमेंट है करियर गाइडेंस, जिसमें आज हम बात करेंगे पंख पोर्टल और उस पर मिलने वाली सुविधाओं की। जानकारी देंगी GGIC अयोध्या की प्रधानाचार्य कुसुमलता।
1: आज आप सभी को एक ऐसे पोर्टल के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिससे आप अपने बच्चों की रुचियों के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में जानकर उनके कैरियर के चयन के संबंध में अपने को जागरूक कर सकते हैं। सही समय पर सही कैरियर का चुनाव हमें आर्थिक लाभ ही नहीं देता, हमारे मानसिक सामाजिक विकास का साधन भी बनता है। गलत कैरियर का चुनाव मानसिक कुंठा को भी जन्म देता है। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद अपना मार्गदर्शन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसको ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी राज्य में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक नए पोर्टल का आरंभ किया है। इस पोर्टल का नाम यूपी पंख पोर्टल है। यह पोर्टल विद्यार्थियों को विशेष ध्यान में रखकर बनाया गया है तथा इसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कैरियर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। यह पोर्टल विद्यार्थियों को काउंसलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से यूपी बोर्ड के छात्रों को कई प्रकार के लाभ होंगे। यह योजना सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी को पंख पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और छात्र छात्राएं अपने रुचि के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। इस पोर्टल पर कैरियर से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। छात्र छात्राएं इस पोर्टल से विभिन्न छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उन्हें उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने में मदद करेगी, जिससे कोई भी बच्चा धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस पोर्टल के माध्यम से बच्चे अपनी योग्यता के आधार पर अपने कॉलेज का चुनाव भी कर सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। पंख पोर्टल में कौशल विकास से संबंधित सेवाएं भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई हैं। इस पोर्टल की सहायता से विद्यार्थी अपने कैरियर से संबंधित शंका एवं परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। यूपी पंख पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना होगा, आइए इस बारे में जानते हैं। यूपी पंख पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी वेबसाइट पर जाना होगा, जो है upipankh.in। इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर प्रवेश का ऑप्शन दिखाई देगा। होम पेज पर क्लिक करें, फिर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए छात्र को विद्यार्थी की यूनिक आईडी को जानना होगा। यह यूनिक आईडी विद्यार्थियों की पंजीकरण संख्या है, जिसे वे अपनी कक्षा अध्यापिका से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों का पासवर्ड उनके लिए 123456 है। ये इस पोर्टल के लिए शासकीय व अशासकीय विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को कक्षाएं भी संचालित हैं। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिए नोडल शिक्षक नामित हैं, जो विद्यार्थियों की रुचि एवं योग्यता का परीक्षण करते हुए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर बनाने की सलाह देते हैं। इस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपका कैरियर

डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां से आप कैरियर विकल्प, छात्रवृत्ति व अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। पंख पोर्टल पर एक टेस्ट भी है, ये टेस्ट तमन्ना टेस्ट है। यह NCERT व CBSE द्वारा तैयार किया गया है। ये एक परीक्षा मूलक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इसमें बच्चे के पास या फेल होने का आकलन नहीं किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और क्षमताओं को मापना है, ताकि उन्हें सही कैरियर और विषय चयन में मदद मिल सके। इसके लिए यूपी पंख पर लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड में तमन्ना टेस्ट का विकल्प मिलेगा। यह टेस्ट अलग अलग प्रश्न पत्रों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है। टेस्ट पूरा करने के बाद पोर्टल पर रिपोर्ट या विश्लेषण आता है, जिसमें बताया जाता है कि छात्र किस क्षेत्र में बेहतर है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स या स्किल बेस्ड कैरियर। यह टेस्ट 9 से 12 के बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जिससे बच्चे को यह समझने में मदद मिलती है कि उनकी ताकत व कमजोरियां क्या हैं। आइए अब इसी पोर्टल के माध्यम से हम डिजिटल स्किल से कैरियर के नए अवसर के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन टीचिंग, कोचिंग इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं। वेब ऐप डेवलपर, इसमें मोबाइल ऐप डेवलपर, क्लाउड डेवलपर, बैंक ऐप डेवलपर होते हैं। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस में आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं या अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट राइटर, इन्फ्लुएंसर, मार्केटिंग, यूट्यूब क्रिएशन या ब्लॉगिंग आते हैं। गेम डेवलपर कोडिंग, इसमें AI, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट आदि का व्यवसाय उपलब्ध है। वीडियो एडिटिंग, ये ग्राफिक्स एंड UI/VX डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग व साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैसे व्यवसाय उपलब्ध कराता है। अतः आप कह सकते हैं कि डिजिटल तकनीक ने भी कैरियर की नई राहें खोली हैं। यह तो सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों के लिए कैरियर संबंधी जानकारी थी। इसी कड़ी में हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद भी सभी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को ये बताता है कि वे किस तरह से शिक्षा अर्जित कर कहां और कैसे नौकरी या रोजगार पा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, कहां से अर्हता अर्जित की जा सकती है, चयन के लिए कहां आवेदन कर सकते हैं, किस वर्ग के विद्यार्थी के लिए कहां कहां रोजगार मिल सकते हैं, इसका संपूर्ण समाधान करने के लिए यूपी बोर्ड ने ये संपूर्ण विवरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट, जिसका नाम upmsp.edu.in है, उस पर अपलोड कर दिया है, जिसे विद्यार्थी या उनके अभिभावक या कोई भी देख सकता है। इसे अन्य बोर्ड के विद्यार्थी भी देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। यूपी बोर्ड ने विशेष रूप से इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और कृषि वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर देने के लिए अलग अलग विवरण वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। इसे देखकर कोई भी जान सकता है कि किस वर्ग से विद्यार्थी पढ़ाई कर सकते हैं और उनके लिए कहां कहां रोजगार की संभावनाएं हैं। जैसे कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जानकारी दी गई है कि वे एंटरप्रेन्योर, राजभाषा अधिकारी, कंटेंट राइटर, एडिटर, कोरियोग्राफी, सामाजिक कार्य, फाइन आर्ट्स, पुरातत्व शास्त्री, होटल मैनेजमेंट, अन्य प्रशासनिक एवं राजकीय सेवाओं में अवसर पा सकते हैं। यह भी जानकारी दी गई है कि इनके क्या कार्य होते हैं, इन क्षेत्रों में रोजगार के कोर्स क्या हैं और किस संस्थान से कोर्स किया जा सकता है, उसकी अर्हता क्या है और कौन सी परीक्षा देनी होगी। ये सभी जानकारी upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। इसी तरह विज्ञान विषय के विद्यार्थी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर,
सांख्यिकी सेवा, वायु यातायात नियंत्रक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस।

0: मानव विज्ञान, भारतीय सेना चिकित्सक, वेटरनरी साइंस, फार्मेसी सहित अन्य कई सेवाओं में जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा अर्हता के संबंध में भी विस्तृत जानकारी अपलोड है। इंटरमीडिएट स्तर पर विद्यार्थियों के बेहतर कैरियर विकल्प हेतु एक लघु पत्रिका ब्रोशर का भी निर्माण किया गया है, जिसे कैरियर मार्गदर्शन के लिए देखा जा सकता है।
1: दोस्तों, अभी हमने करियर गाइडेंस सेगमेंट में जाना पंख पोर्टल और उस पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जीजीआईसी अयोध्या की प्रधानाचार्य कुसुम लता जी ने। दोस्तों, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
3: पापा, लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
4: है?
3: ए नहीं, हाँ, सीधे यूपीआई से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए पेन पेपर लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि आ गया है आपका सेगमेंट रोजगार समाचार, जिसमें देते हैं हम आपको रीसेंट वैकेंसीज की जानकारी, जिससे आप कर पाए अपनी योग्यता अनुसार आवेदन। सबसे पहली रिक्ति जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी लास्ट डेट आज ही है, तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। भारतीय सेना ने जनवरी 2027 के लिए 10+2 बीटेक कैडेट भर्ती की अधिसूचना जारी की है और आवेदन की अंतिम तिथि आज ही है। और अधिक जानकारी व आवेदन के लिए आप विजिट करें joinindianarmy.gov.in। दोस्तों, अगला आवेदन मांगा गया है UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त उच्च अधीनस्थ सेवा UPPCS पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 है और आवेदन 25 जून से शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी व आवेदन के लिए विजिट करें uppsc.up.nic.in। उसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन कल से शुरू हो रहे हैं और 29 जुलाई 2026 तक चलेंगे। अधिक जानकारी व आवेदन के लिए आप विजिट करें indianrailways.gov.in। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ISTRAC विभिन्न पदों की परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है और अधिक जानकारी व आवेदन आप कर सकते हैं cdn.digialm.com पर विजिट करके, ठीक है। उसके बाद भारतीय नौसेना ने SSC अधिकारी के विभिन्न पदों की भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि हो जाएगी 27 जुलाई 2026, तो उससे पहले आवेदन जरूर कर दें। और अधिक जानकारी व आवेदन करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं joinindianavy.gov.in। दोस्तों, उसके बाद वैकेंसी आई है अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स

द्वारा ग्रुप बी और सी के विभिन्न गैर फैकल्टी यानी नॉन फैकल्टी पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 3 जुलाई 2026 है और आवेदन के लिए आप विजिट कर सकते हैं aimsexam.ac.in पर। दोस्तों उसके बाद वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने सहायक अनुभाग अधिकारी पदों की भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है और आवेदन की अंतिम तिथि भी 13 जुलाई 2026 ही है, तो इसलिए आवेदन कर दें अपनी योग्यता अनुसार। और हाँ, आवेदन के लिए आपको विजिट करना है इनकी आधिकारिक वेबसाइट recruitment.csir.res.in पर। तो दोस्तों ये थे हमारे इस हफ्ते के रोजगार समाचार और उम्मीद है आपने इन्हें कर लिया होगा अच्छे से नोट और अपनी योग्यता अनुसार लास्ट डेट से पहले आप कर देंगे आवेदन। तो इसी के साथ चलिए मूड को बनाते हैं थोड़ा सा लाइट और सुन लेते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मेट्रो इन दिनों से।

मन ये मेरा गाने के साथ ही अब मेरा भी मन जाने का तो नहीं कर रहा है, पर घड़ी की सुइयां कर रही है इशारा और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पर जाने से पहले बता दे कल के कार्य

0: कार्यक्रम में क्या कुछ है खास? कल चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की। भारतीय इतिहास में है दक्षिणी पश्चिमी गंग वंश और उसके बाद होगा आपका पसंदीदा चक्रव्यूह। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम हुआ यही में समाप्त। इसी के साथ दे दीजिए अब अपनी दोस्त मंजरे सिंह को इजाजत। नमस्कार।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य।

0: जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युव वाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
2: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अरुण कुमार कोरी और साथियों की आवाज में ये
4: लोकगीत। अरे कानावा पे हाला बा उठाए के, अरे कानावा पे हाला।

कनावा पे हलावा उठाई के, अरे कनावा पे हलावा।

पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।

अरे अब तो लागा साल सोलहवा ऐसन रूप खिलाया, हर सिंगार फिर करके गोरिया और सुंदर।

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com, AYODH

0: वाई ए ए के ए एस एच वी ए एन आई एट द रेट gmail.com।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों के लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के

0: खुशीदा की फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: तेरी एक जवानी मेरी दोनों मिले तो बने प्रेम कहानी बुझ जाए दिल की ये
0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदयः च पुरस्कृताः। हरियाणा राजस्थानयोर्मध्ये दशकत्रयेभ्यः विलंबितायाः यमुना जलविभाजन विवादस्य अद्य समाधानं जातम्। सर्वोच्च न्यायालयेन राम मंदिर दान प्रकरणस्य कथित वित्तीय अनियमिततायाः न्यायालय निरीक्षण अन्वेषणस्य त्वरा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन सांप्रतिकाय दशम वर्गाय त्रिभाषा नीतिः नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचना तंत्रं प्रवर्तयति। एसआईआर इति स्वस्तना देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकांतः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बंद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह च अति विशिष्ट सेवा पदकं प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्यः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणः च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मू वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अफ्रीका देशस्य यात्रायाः तृतीय दिने सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरस्थस्य नवशक्ति विनयगर देवालयं गत्वा प्रार्थनां कृतवान्। सः तत्र भारतीय प्रवासिभिः अपि मिलितवान्। पश्चात् अद्य पीस पार्क इत्यत्र स्थितायाः महात्मा गांधिनः प्रतिमायाः उपरि पुष्पाञ्जलिमपि अर्पितवान्। प्रधानमंत्री सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीयं सफलं भ्रमणं समाप्य भारतं प्रति प्रस्थितवान्। इतः पूर्वञ्च प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य समारोहे भागम् अगृह्णात्, यत्र देशस्य स्वतंत्रतायाः 50 समारोहः आयोजितः आसीत्। श्रीमोदी सम्माननीय अतिथि रूपेण उत्सवे भागम् अगृह्णात्। सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी वर्यस्य आमंत्रणे आयोजितेऽस्मिन् भ्रमणे द्वयोः नेत्रोः मध्ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माणं, समुद्रीय सुरक्षा, रक्षा इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारादिषु विषयेषु विस्तृत रूपेण वार्तालापः अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् अस्ति, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगत 15 उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढ विश्वासेन संयुक्त प्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामी 50 वर्षाणि

0: वार्ताः।
1: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या। आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
1: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अमरनाथ यादव और साथियों की आवाज में ये किसानी गीत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: हे बहार, बहार आई जिंदगी।
3: और अब आइए सुनते हैं शीतला प्रसाद वर्मा और साथियों को।

0: कीमती है
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL Gold TMT सरिया।

0: 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

पंचो जय हिंद। पंचो आज अपने चर्चा का जो विषय है स्कूल चलो अभियान। पंचो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का बढ़ावा दिए बरे और गदाहरण का 100% नामांकित करावे बदे ये अभियान शुरू किन गया है। यह उद्देश्य है कि अपने गदाहरण का 100% स्कूल तक भेजा जाए। अब उस 100% तक स्कूल तक भेजे की जिम्मेदारी अगर अपने सब के सरकार उठावे कोशिश में है तो वहां कहूं न कहूं एक अंग अपने सब ही यानी गदाहरण के पीछे उनके परिवार, उनके महतारी बाप, समाज और साथे साथे स्वयंसेवी संगठन, विद्यालय में शिक्षक, किताब, ये सब एक अंग हैं। अब आवश्यकता का है कि अगर अपने सब गदाहरा का स्कूल तक भेजे के पूरा मन बनाए चुका हन तो एकरे उद्देश्य का पूरा करे बदे गदाहरण का जोन ड्राप आउट होगा है यानी जी छोड़ चुका है गदाहरे उन्हों का फिर से स्कूल भेजे तैयार रहे का है और साथ ही साथ यस कुछ करे का है कि जोन गदाहरे पढ़े लायक है उन्हों भेज जाए। दूसर चरण एक है 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाला है और एहमा अपने सबका कक्षा 1 से 12 तक जोन गदाहरे नई कक्षा मा प्रवेश लिए वाला है उन्हों के प्रति जागरूक रहे का है, उनका प्रेरित करे का है, अपने अभिभावक की भूमिका में हुए चाहे समाज में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में हुए या फिर अपने सबका परिवार के मुखिया की भूमिका में हुए हर भूमिका में ईमान के चले का है कि सरकार की मंशा के अनुरूप अपने सबका तमाम इस काम कही जाए का है जौने से स्कूल चलो अभियान अपने आप में सार्थक हुए सही दिशा में सही सफलता प्राप्त करे। अब आवश्यकता का है, आवश्यकता यह है कि जो ड्रॉप आउट दर है वो का कम की जाए, नामांकन ज्यादा से ज्यादा की जाए और साथ ही साथ जहां कहूं गदाहरे के रुचि ना दिखाती है या कहूं उनका विद्यालय से दूरी ज्यादा है या फिर किताब कॉपी के प्रति पहले तो दशा दिशा गड़बड़ रही लेकिन अब जो उन्हें हिसाब के अपन सरकार जो उन कुछ ढांचागत सुविधा दे दिया है कापी किताब देती है वर्दी देती है खाए पिए की व्यवस्था है और साथ ही साथ तमाम संरचनात्मक बदलाव आवा है विद्यालय स्तर पर जौने से गीत गदाहरण का पढ़े लिखे सीखे समझे में हर तरह से के मदद मिले वाली है मिलती है। पंचों आवश्यकता खाली यही बात कह है कि अपने सब ही वहां जौन अपन भूमिका है उसका सीमित न कहके तो कुछ व्यापक बनाए दी। अगर भूमिका अपन व्यापक बनाओ तो अपन गेत गदाहरे आगे बढ़िए। पढ़ाई का मतलब इतने न्याय होते कि सब ही सरकारी नौकरी पाई जाए, ये संभव ना है ना, लेकिन एक सफल इंसान बन जाए हमें लगा सरकारी नौकरी से बढ़ के कहूं कुछ है। तो पंचो हर तरह के प्रयास आपन सफल इंसान बनब हो चाहिए और यही लिए हम तो ये कहब कि भविष्य के सफल नागरिक आपन गेत गदाहरे बने एक लिए आपन भूमिका हमें सबका सीमित ना करे कहे। अगर सीमित कह दिए तो कहूं न कहूं समाज अपने आप को माफ न करे, समय अपने आप को माफ न करे और हम तो कहब कि समय के जो मांग है ना, समय का पुकार है उका भुलाए के ना है ना, उकरे अनुरूप चले का है। यही लिए कि गाड़ी लेट न हो जाए ये लिए अनुरूपता बनाए रखब जरूरी है। समय अपने हिसाब से न चले, अपने सबका समय के हिसाब से चले का है और यही लिए हमारे 2 लाइन कहा भाई कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा, समय की गति को नाप न पाए तो देश भला कैसे सुधरेगा। यानी देश का अगर सही दिशा दशा में अपने सबका ले जाए का है

0: तो वक्त यक्क तरीका है कि जो उन कच्चे घड़ा वाले अपने गियत गिधारा है जयपय शिक्षा दीक्षा के कौनो असर बहिना है ना उनका यही तरह से सजाए संवारे दिन जाए कि वो चमकें। और वो चमक मा आपन भूमिका अपने सबका निभावे का है, अपन सरकार अपने सबके साथ लगी है और स्कूल चलो अभियान यही तमाम प्रयास में से एक प्रयास है। बिल्कुल पंचो चूकक नाय है अपने सबका वो हर प्रयास करेक है जोने से कि आपन समाज परिवार और देश आगे बढ़े। अगर सब कुछ बढ़िया बढ़े तो तय है कि अपने सब माँ खुशहाली आए। लेकिन कुछ और विशेष बात कहीं लेके आएगा ही पंचो अपने ये पंचायती में खरीफ फसलों हेतु खाद एवं उर्वरक प्रबंध काव काव कीन जाए कैसे कीन जाए कौनी मात्रा में कीन जाए एकरे बारे में जानकारी देता है डॉक्टर वेद प्रकाश। उनसे बातचीत करते हैं मंजू मौर्य बहनी, तो आओ यह जानकारी के ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
1: पंचो हम सभी अपनी पंचायती में पंचन का जानकारी देवे बदे डॉक्टर भैया का समय समय पर बुलावा करी थी। ठीक ऐसे ने आज अपनी पंचायती में मौजूद हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जो उनकी सेवा निवृत्त हैं विभागाध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हैं। स्वागत के इनके साथ है। जैसे आज हमारे विषय है कि खरीफ फसलों हेतु खाद एवं उर्वरक प्रबंध, तो सबसे पहले आप हमारे पंचन का बतावें खरीफ के फसल में हमारे पंचे कौन कौन यस फसल लिए और हमन खाद और उर्वरक के प्रबंध कैसे करें बतावत चले।
2: किसान भाई खरीफ में खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से धान और मक्का, दलहनी फसलों में अरहर उड़द मूंग और तिलहनी फसलों में तिल की बुआई करते हैं
1: जी।
2: इन फसलों की अच्छी पैदावार पाने के लिए खाद और उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। खादें फसलों को पोषक तत्वों के साथ साथ ही मिट्टी की भौतिक रासायनिक और जैविक दशाओं में भी सुधार करती हैं। खादों का मतलब गोबर की खादों से है, ये उर्वरक से नहीं। साथ ही जहां किसान भाई ज्यादातर धान गेहूं फसल चक्र अपनाते हैं तो वहाँ गेहूं और धान की फसल के बीच में हरी खाद के रूप में सनई ढैंचा का प्रयोग करना चाहिए अथवा धान की फसल में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद जरूर डालना चाहिए। इससे जो है हमारी पैदावार अच्छी मिलती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। जायद में मूंग की खेती करने से 15 किलोग्राम नत्रजन की बचत होती है।
1: अच्छा।
2: और इसी प्रकार सनई ढैंचा की हरी खाद से लगभग 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत होती है
1: जी। साथ ही साथ और कोई बात ध्यान में रखे हमारे पंचन करें।
2: किसान भाइयों कोई भी फसल उगाना है तो सबसे पहले उर्वरकों के प्रयोग के लिए मिट्टी का परीक्षण बहुत ही जरूरी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उससे बीमारी पता चलती है, इसी तरह मिट्टी परीक्षण से पता चल जाएगा कि हमारी जमीन में कितने पोषक तत्व हैं और जो फसल हम उगाने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व देने हैं। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि अगर किसी कारण किसान भाई ये नहीं करा पाए हैं परीक्षण तो उनको कितना डालना चाहिए, लेकिन ये उसी लिए है कि परीक्षण अवश्य कराना चाहिए।
1: बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर भैया ये तो बात रही माटी के जांच करावे के, जो धान के बात कीन गवा है।
2: धान जो है किसान भाई जो है दो तरह से खेती करते हैं, एक तो रोपाई से करते हैं दूसरा सीधे बुआई करते हैं। रोपाई से जो करते हैं उसमें जल्दी पकने वाली जो जातियां हैं जैसे नरेन 97 है, सरजू 52 है
1: जी,
2: इसके अलावा सुगंधित बौनी किस्में हैं, तो इन सब के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग किया जाता है। इसी तरह मध्यम देर से पकने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनके लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डाला जाता है। किसान भाई आजकल संकर किस्मों का प्रयोग करते हैं जिससे उत्पादन ज्यादा जिसमें होता है, तो इसमें नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम और पोटास 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है।
1: लेकिन ये प्रयोग कैसे कब करे का है यहू का बताओ चला।
2: इसके लिए जो फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा जो है रोपाई से पहले और नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा रोपाई के 7 दिन बाद, एक तिहाई मात्रा कल्ले फूटते समय और एक तिहाई मात्रा बाली बनने की अवस्था पर टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए।
1: अच्छा, और जो सीधी बुआई हमारे पंचे कुछ करते हैं तो वो हमन को नहीं मेरे से डायरेक्ट है यहू का बताओ चला।
2: सीधी बुआई के लिए ज्यादा उपज देने वाली जो प्रजातियां हैं उसमें 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन,

0: 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। देसी जातियों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास। जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां पर भी नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और प्रयोग विधि हमारे पंचायत कब एका करे है, कौन समय करे है, ये होगा बताओ। चलो,
0: प्रयोग की विधि है कि नाइट्रोजन का 1/4 भाग और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा
1: जी
0: बुआई के समय कूण में बीज के नीचे डालना चाहिए। शेष जो बची है नाइट्रोजन उसका 2/4 भाग कल्ले फूटते समय और 1/4 भाग बाली बनने की जो शुरू की अवस्था होती है
1: जी
0: उस पर प्रयोग करना चाहिए। जहां वर्षा आधारित खेती है वहां पे पूरा उर्वरक बुआई के समय बीज के नीचे कूणों में प्रयोग करना चाहिए।
1: इसके अलावा और कैसे कौनी मेर से हमारे पंचन का ऊपर से छिड़काव भी करे का है, अगर कोनो यस है तो पंचन का बताओ। चलो
0: किसान भाइयों, अब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तो मुख्य तत्व हैं, इनके अलावा सल्फर जिसे गंधक कहते हैं
1: जी
0: इसकी भी कमी देखी गई है। इनकी ज्यादातर आवश्यकता तो दलहनी तिलहनी फसलों में होती है।
1: अच्छा।
0: लेकिन धान में भी इसकी कमी देखी जा रही है, तो इसके लिए अगर हम फास्फोरस युक्त उर्वरक सुपर फास्फेट का प्रयोग करें तो उसमें गंधक भी मिल जाता है, अलग से हमें गंधक डालने की जरूरत नहीं होती। पोटास का प्रयोग कहीं कहीं टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे हल्की दोमट जमीन है उसमें आधी मात्रा तो बुआई के समय या रोपाई के समय और जो शेष आधी बची है यूरिया के साथ दो बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में किया जाए अच्छा रहता है। धान की खेती में जहाँ पे पानी रुकता है और उसके निकास की सुविधा नहीं है तो रोपाई के समय ही सारा उर्वरक देना उचित रहता है, और यदि किसी कारणवश यह संभव ना हो तो यूरिया का 2-3% घोल का छिड़काव दो बार कल्ले निकलते समय और बाली निकलने की अवस्था में करना चाहिए। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग से पहले जहाँ पे टॉप ड्रेसिंग करना है खेत में अगर पानी है तो उसको निकाल देना चाहिए, लेकिन जहाँ पर यह संभव ना हो पानी निकालना तो वहाँ यूरिया को उसकी 2 गुनी सूखी मिट्टी और 1/4 गोबर की खाद मिला करके 24 घंटे तक रख देना चाहिए। ऐसा करने से यूरिया अमोनियम कार्बोनेट के रूप में बदल जाती है जिससे रिसाव द्वारा नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा जस्ते की भी कमी देखी गई है, खैरा रोग धान में लगता है तो जस्ते की जहां कमी पहले से मालूम है वहां 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का बेसल रूप में प्रयोग करना चाहिए। अगर खड़ी फसल में खैरा रोग के लक्षण दिखाई दें तो 0.5% जिंक सल्फेट और 2% यूरिया के घोल के साथ छिड़काव करना चाहिए। यहां ध्यान ये देना है कि जिंक सल्फेट का अकेले पत्ती पर छिड़काव नहीं करना है, इसके साथ यूरिया या चूने का पानी लाना जरूरी होता है, नहीं तो ये नुकसान करेगा, पत्तियां जल सकती हैं। जिंक का हम बेसल प्रयोग कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि फास्फोरस वाले उर्वरक के साथ इसका प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो ये जिंक फास्फेट बनाता है और ना जिंक पौधे को मिलता है फास्फोरस। फास्फोरस वाले उर्वरक से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद जिंक का प्रयोग करना चाहिए।
1: मक्का की बात की जाए तो मक्का में कौनी मेयर से कैसे हमारे पंचन का कौनी प्रजाति में कौन हिसाब से ये उर्वरक का प्रयोग करेगा?
0: बताया था आपको कि किसी भी फसल में मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अगर नहीं करा पाए हैं तो जैसे मक्का के लिए है तो देर से पकने वाली संकर किस्में हैं या संकुल किस्में हैं, इनके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालना है। शीघ्र पकने वाली संकर और संकुल जातियों के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा देसी जातियों के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालना है।
1: लेकिन एका कब डारे का है, कौनी मेर से डारे का है, कि प्रयोग कैसे करे हमारे पंचन का अपने खेते में बताओ। चलो,
0: उर्वरकों में बुआई के समय 1/4 नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास कूणों में बीज के नीचे डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 3 बार में बराबर बार मात्रा में टॉप ड्रेसिंग द्वारा बुआई के 25-30 दिन बाद, जब पहले निराई कर लें, दूसरा नर मंजरी निकलते समय
1: जी।
0: और तीसरा जो है नर मंजरी से जब आधा पराग गिरने लगे या गिर जाए तब उसके बाद करना चाहिए।
1: बात की जाए ज्वार के, तो ज्वार में है कौने किस्म कौने मेयर के प्रयोग करे हमारे पंचन का?
0: ज्वार की जो संकर संकर किस्में हैं उसमें नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है
1: जी।
0: इसके अलावा संकुल और देसी किस्में होती हैं, उनमें नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम

0: और पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के लिए नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा खेत में बुआई के समय कुंडों में बीज के नीचे डालना चाहिए तथा नत्रजन का जो शेष आधा भाग बचा है उसको बुआई के लगभग 30-35 दिन बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल ऐसा बात आवत है कि बाजरा के बात की जाए तो भूमन कैसे का करे कहा?
0: बाजरा की जो संकर किस्में हैं उसमें 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से, और अन्य किस्में जिसमें संकुल और देसी हैं उसमें 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है।
1: उर्वरक के बात की जाता अपने सभी नैनो उर्वरक हम सुने में ज्यादा आवत है तो नैनो उर्वरक के प्रयोग हमारे पंचन का अपने खेते में कैसे कौनी मेर से करे का है ये का बताओ चलन और इसे लाभ का है।
0: नैनो तकनीक से तैयार किए गए अत्यधिक कुशल कृषि उत्पाद है नैनो उर्वरक जो फसलों को नाइट्रोजन जैसे नैनो यूरिया आती है उससे मिलता है
1: जी।
0: नैनो डीएपी से फास्फोरस मिलता है
1: जी।
0: इसके अलावा जो है नैनो जिंक, नैनो आयरन ये सब आता है। ये बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में मिलते हैं
1: जी।
0: इसका मुख्य लाभ ये है कि इससे कम लागत पड़ती है।
1: अच्छा।
0: जैसे हम यूरिया या डीएपी डालते हैं तो उसकी तुलना में एक एकड़ में जैसे एक बोरी अगर डालना है यूरिया या डीएपी तो उसके जगह केवल एक बोतल
1: अच्छा।
0: जो आधा लीटर का आता है ये डालना होता है नैनो उर्वरक
1: अच्छा।
0: और उस हिसाब से ये सस्ती पड़ती है
1: अच्छा।
0: और इससे उपज अच्छी मिलती है। ये छोटे कण होने के कारण ये पौधों की पत्तियों पर आसानी से अवशोषित हो जाते हैं जिससे फसल की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ती है।
1: का पर्यावरण के अनुकूल भी हमारे पंचन का कौनी मेर से काकाओ करे
0: ये भी पर्यावरण में अनुकूल है क्योंकि मिट्टी और पानी में इनका नहीं जाता केवल सीधे पत्ती पर पड़ता है
1: अच्छा।
0: तो मिट्टी और पानी में होने वाले प्रदूषण और रिसाव इनसे नहीं होता है। भंडारण में आसानी जैसे बोरी हम खरीद के लाते हैं तो वो वजन होती है
1: जी।
0: और ये आधा लीटर केवल लेना है एक एकड़ के लिए
1: जी।
0: तो ये इसको आने ले जाने में आसान होता है
1: बिल्कुल। और हमारे पंचन का कैसे और कब इस्तेमाल करे का है बताओ चलो।
0: इसका जो है पर्णीय छिड़काव ही पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है। आमतौर पर आधा लीटर नैनो यूरिया को 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव किया जाता है।
1: अच्छा।
0: इसका छिड़काव कल्ले फूटते समय और फूल आने से पहले करना अच्छा होता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर भैया आप सही बताएं कि नैनो उर्वरक खाद के अगर हमारे पंचन का उपयोग करे का है तो जैसे जैसे आप बताएं ठीक वैसे वैसे करिए लेकिन चल चलाता आप हमारे पंचन का अपनी वारी से जो हमसे रह गए हम पंचन के तरफ से बताओ चलें।
0: किसान भाइयों उर्वरकों और खादों में मुख्य रूप से जो है खादों का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए खासकर जहां धान गेहूं फसल चक्र ले रहे हैं तो उसमें जो है गोबर की खाद या सनई ढैंचा हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग हमेशा जो है मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए
1: जी।
0: और ये जो नैनो उर्वरक की बात हुई है ये नैनो उर्वरक अकेले नहीं काम करेगा क्योंकि ये बेसल रूप में नहीं प्रयोग किया जाता
1: जी।
0: तो दोनों हम मिला करके कर सकते हैं कि बेसल रूप में हम और यूरिया डीएपी पोटास इनका प्रयोग करें और टॉप ड्रेसिंग जहां आती है उसके बदले हम इसको स्प्रे के रूप में नैनो उर्वरक का प्रयोग करें तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा लागत भी हमारी कम होगी।
1: बिल्कुल हमारे पंचन का यह वादा रहा था कि लागत कम लागे और मुनाफा ज्यादा हुए। डॉक्टर भैया आप हमारी पंचायती में आए और खरीफ फसलों हेतु खाद एवं उर्वरक का प्रबंध हमारे पंचन का कैसे करे का ये विषय पर पूरा जानकारी दी। आप रहे डॉक्टर वेद प्रकाश सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। आपका पंचायती की वारी से और आकाशवाणी परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचो बत कहीं बढ़िया रही लेकिन कुछ बात अपने सबका गांठ बांध लिए कहे कुछ बात यस यह है जोने पर अपने सबका ध्यान दिए दिए कहे। पहली चीज तो घूरे खाद जेका कंपोस्ट खाद कहत है ई खाद महत्वपूर्ण है। अगर अपने सब धान गेहूं की फसल ली तहन तो हरी खाद कंपोस्ट खाद और यकरे अलावा माटी की जांच पर आधारित जवन कुछ रिपोर्ट अपने सबका मिले वह खेते के माटी के वही हिसाब से जो संस्तुत मात्रा फसल भरे हुए जो डॉक्टर भैया के वो करे आधार पर अपने सब खाद पांच डाई। अगर अगर ये ना करे तो नुकसान का है ज्यादा खाद डाय दहन तो अपच कहिए पूंजी ज्यादा लागे और खाद नुकसान बजाय फायदा करे नुकसान करे कम डाय दहन तो

पता चला अधपेटा, जैसे अधपेटा हुई थे अपने सब वो हाल ही हुई। और रह गए जो बताएं कि नैनो खाद के अगर अपने सबका प्रयोग करे का है, नैनो यूरिया है या नैनो डीएपी, तो हम दोनों का मिक्स प्रयोग करें। जौन अपने पास यूरिया या डाई दोनों खाद या तमाम और उर्वरक जौन है उनके बेसल डोज और साथ ही साथ एक छिड़काव या यहू का समन्वित प्रयोग अगर अपने सब करी थे तो ये अपने फसल के लिए और आर्थिक रूप से अपने सबका सक्षम बनावे के लिए साथ ही साथ कम पूंजी में ज्यादा उत्पादन दिए के लिए काफी कुछ फायदेमंद हुए। उम्मीद है पंचो यही जानकारी से बहुत कुछ लाभ आप सभी उठावा जाए। और इतनी अच्छी जानकारी के बाद अब हमार मन कहता है कि मन मनसाइन हो जाए गीत गौनई, तो गीत गौनई के रूप में प्रस्तुत है मन मनसाइन गीत जो विवाह गीत के रूप में है, आपका खूब आनंद लीन जाए के।

0: पंचो अंजू मिश्रा और उनके सखियन की आवाज में सुने अपने सभी गोने ही मजा आएगी, जीव खुश होएगा। उम्मीद है पंचो तोरे सबका निक लाख हुए, लेकिन अयोध्या मंडी से जो बाजार भाव अपने सबका मिला है एहू को जान लीन जाए। अयोध्या मंडी में जो चाउर कामन रहा पंचो 3,100 रुपया प्रति क्विंटल रहा, गेहूं दाड़क भाव रहा 2,560 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का पीली रही 2,350 रुपया प्रति क्विंटल, उड़द दाल काली एक भाव रहा 9,350 रुपया प्रति क्विंटल, चना देसी 6,480, मसूरी भाव रहा 7,230 रुपया प्रति क्विंटल, अरहर दाल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल, आलू सफेद 860 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज लाल 1,500, टमाटर भाव रहा 2,730, लहसुन 7,220 और तरोई रही 1,300 रुपया, बैगन 2,000 रुपया, हरी मिर्च 2,900, अदरक भाव रहा 9,100, शिमला मिर्च 3,970, भिंडी भाव रहा 1,700, लौकी 1,200, करेला 1,700, केला पका 2,890, नींबू भाव रहा 5,800 रुपये प्रति क्विंटल, पपीता एक भाव रहा 2,800, सेब रहा 12,260 रुपये प्रति क्विंटल, अनार भाव रहा 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, आम 3,600, गुड़ बट्टी भाव रहा 5,230 रुपये और चीनी रही 4,125 रुपये प्रति क्विंटल। लगे हाथ मौसम जानकारी पंचो ले ली जाए। पिछले 24 घंटा जो हाल चाल रहे उसके हिसाब से अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आधा डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता रही 83%, न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता रही 46%, हवा की गति रही 2.9 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा रही दक्षिणी पूर्वी, वर्षा शून्य रही। पूर्वानुमान यह है कि आने वाले 24 घंटा में हल्का से मध्यम बादल छावा रही, कहूं कहूं गरज चमक के साथ हल्की बारिश यानी बूंदाबांदी हो सका था। फिर मिला जाए पंचो यही वादा के साथ, मनोज भैया के देवोन्मति, जय हिंद।
1: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। हमारे आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन, 9:15 पर आपकी बात और 9:30 पर सुनिएगा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:15 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। 8:30 पर प्रसारित होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इसके अंतर्गत आज की बात में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अतिरिक्त डॉक्टर आदित्य प्रताप सिंह की वार्ता होगी, खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत कुछ जरूरी बातें। 9:00 आपके संदेश आपके गीत, 9:30 पर सजीव फोन इन हेलो अयोध्या और 1:00 सुनिएगा फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग 12:30 और गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि का समय होगा 2:00 से। दोपहर 2:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत, इसके अंतर्गत चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर, साथ ही गीत सौंदर्य टिप्स के अलावा संगीता आहूजा की वार्ता होगी अवध में विलुप्त हो रही संगीत और नृत्य विधाएं। शाम 5:00 युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युग वाणी, इसके अंतर्गत चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर, साथ ही गीत चक्रव्यूह के अलावा भारतीय इतिहास से मैं जानिएगा दक्षिणी पश्चिमी गंग राजवंश के बारे में। शाम 5:30 पर लोक संगीत और 6:10 पर शाम सुहानी होगा। 6:30 पर आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लंदन में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। कार्यक्रम किसान वाड़ी का समय होगा 6:45 पर, इसके अंतर्गत चर्चा होगी धान की उन्नत खेती पर, साथ ही लोकगीत बाजार भाव मौसम का हाल के अतिरिक्त डॉक्टर संजीव कुमार यादव से भेंट वार्ता होगी बीज उत्पादन हेतु उगाई जाने वाली फसलों में ध्यान देने योग्य बातें। साथ ही इसी कार्यक्रम में एक और भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी किसान समृद्ध के 12 साल, मधुमक्खी पालन और नर्सरी की तैयारी, वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक विशाल श्रीवास्तव से बातचीत करेंगे राम प्रकाश पांडे। 7:30 पर एक बार पुनः आप सुन सकते हैं ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लंदन में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। ये थी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: दिखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: महात्मा गांधी ने कहा था स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
2: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
1: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की CBI की जांच की मांग भी करेगा।
3: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब जो की भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
4: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
5: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही है।
1: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
6: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जियो जारी किए गए 4/6/2026 को इस जियो में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम विस्तृत बन गए। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जियो उसको हम निरस्त करते हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के ये सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गाँव में खुशी का माहौल है।
7: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें 2 लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, तो यहाँ से रोहित यादव 2 लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
1: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेरा फेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित

परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित

0: पर दादी
1: हाँ?
0: आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो
0: क्या
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम

जयमाला कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की फिल्म का नाम रंग।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और ये है जयमाला कार्यक्रम की अंतिम पेशकश माशूक फिल्म से। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, वो लिखे हैं गौहर कानपुरी ने, संगीत श्याम सुंदर का।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं।

प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष। इसके अंतर्गत एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे और आज की फिल्म है उलझन।

विजय श्री प्रोडक्शन के बैनर तले उलझन बनी फिल्म में जिसने किरदार निभाया था, जिन कलाकारों ने, उनके नाम है संजीव कुमार, सुलक्षणा पंडित, अशोक कुमार, असरानी, रंजीत, फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी।

1975 में आई उलझन फिल्म के निर्माता थे सुदेश कुमार और निर्देशक आर छलानी। सभी गीतों को संगीतबद्ध किया था संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने और बोल लिखे थे एम जी हर्षपत ने।

श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं महावीर सिंघल की लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक आनंद किशोर माथुर।

0: हे राम, कितनी भीड़ है आजकल बाजार में। एक के बाद एक आदमी, महीनों तक चले जाओ दुकान ही दुकान, और हर एक दुकान के अंदर 8-10 ग्राहक, और फिर कहीं कहीं तो क्यों मैं खड़े रहूं।
1: अजी तो आप खड़े ही रहे क्यों में, या कुछ काम भी करके आए हैं? अरे ये क्या, ये दोनों थैले तो खाली हैं।
0: अरे ठहरो भाई ठहरो, मैं देता हूँ सामान। ये पड़ा, ये रहा साबुन तेल, और ये रहा मूंग की दाल, मूंग पापड़ मिर्ची, और ये सब्जियां भिंडी टमाटर।
1: उड़द की दाल लाए? इमली भी नहीं?
0: इमली
1: फिर क्या खाक लाए हो? 5 साल हो गए शादी को, अभी तक बाजार से घर गृहस्थी का सामान लाने का भी होश नहीं है।
0: अरे तो तुम चलती ना मेरे साथ।
1: मुझे मरने की फुर्सत हो तब ना। हर महीने समझा समझा कर भेजती हूँ कि बाजार से ये सामान लाना है वो लाना है, पर
0: अरे पर क्या, गलती तुम्हारी है। मैंने 1000 बार कहा कि जो भी काम मुझसे कराना हो उसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिया करो, एक पर्ची पर लिख देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता।
1: मैं कोई नया सामान तो मंगा नहीं रही हूँ, वही रोजाना का सामान है। गलती खुद करते हो और दोष मुझे देते हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी बाजार जाओ अपनी पुरानी पढ़ाई दोहरा लिया करो।
0: पढ़ाई
1: और क्या, सीधी सी बात है, अ से अरबी, आ से आलू, ई से इमली, ऊ से उड़द की दाल,
2: क से ककड़ी, ख से खरबूजा, ग से गधा, नहीं नहीं, ग से गोभी, च से चमचा, चूना, वाह
0: क्या खूब याद आया है चमचा, छ से खैर जाने दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसे जलेबी, जैसे जगमोहन, जगमोहन।
3: बंदा हाजिर है।
4: कहिए हुजूर, इस नाचीज को कैसे याद किया?
0: जगमोहन, आओ भाई बड़े मौके से आए हो। हाँ
4: हम तो परोपकारी जीव है प्यारे, कहो किस कष्ट में हो? अभी सारी पीड़ा से पिंड ना छुड़ा दूं तो मेरा नाम जगमोहन नहीं।
0: अरे बात यह है कि तुम्हारी भाभी मुझे नए सिरे से पाठ पढ़ा रही है।
4: अच्छा तो इसमें नई बात कौन सी हुई भाई?
1: देखो भैया, दरअसल बात यह है, तुम्हारे दोस्त अपनी आदत से मजबूर हैं। बाजार जाते हैं सामान लेने तो कुछ सामान ले आते हैं और कुछ नदारद कहते हैं कि भूल गया। फिर मैं इन्हें याद रखने की कोई तरकीब बताती हूँ तो तुम ही बताओ क्या गुनाह करती हूँ?
0: अरे गुनाह तो मैं करता हूँ जो तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। अच्छा अब तुम ही बताओ यार, अगर मैं कहता हूँ कि मुझसे जो भी सामान मंगवाना हो उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया करो, तो इसमें क्या गलती करता हूँ मैं?
4: भाभी वैसे बात तो ठीक कहता है मेरा दोस्त।
0: तुमसे ऐसी उम्मीद थी भाई जग्गू।
1: ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी, ये भी हो जाएगा।
0: अरे तो हाथ कंगन को आरसी क्या?
4: इस हाथ लिस्ट और उस हाथ सामान,
1: तो मैंने ही कौन सी कच्ची गोलियां खेली हैं। मैंने पहले ही ब्लैक एंड व्हाइट में लिख रखा है सारा सामान, अभी लिस्ट लाती हूँ।
0: अरे मारे गए यार।
4: अरे मारे क्यों गए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अभी बाजार चलते हैं।
0: अरे मगर तुम इतनी दूर से आए हो, कुछ देर बैठते तो सही।
4: बैठेंगे बैठेंगे, देखो सुनो यहाँ से चलते हैं, पहले रेस्टोरेंट में जाकर बैठेंगे, कुछ इधर की बात होगी कुछ उधर की होगी और फिर काम की बात होगी।
1: ये दो थैले हैं और ये रुपए, और ये लो सामान की लिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में।
4: बहुत अच्छा भाभी, बस हम ये गए और ये आए। उठो राकेश।
0: चलो प्यारे।

0: feeling of the
1: अच्छा जग्गू अच्छा अब बता इन दिनों कैसा चल रहा है
2: ठीक ठाक है बस वो तुम्हारी भाभी की तबीयत जरा नरम चल रही है
1: कैसे
2: अरे बात ये हुई यार कि पिछले दिनों मेरी साली की शादी थी हमें जोधपुर जाना पड़ा अब गाड़ी में आजकल कितनी भीड़ भाड़ होती है कि पूछो ही मत
1: हाँ यार भाई पता नहीं आखिर इसका हश्र होगा क्या
2: और फिर शादी में खाने पीने का मामला जरा अपना ढीला ही रहता है यार
1: अरे भाई किसको परवाह रहती है लेकिन यार ससुराल की शादी की बात थी तूने माल जरूर मारा होगा
2: अरे क्या खाक माल मारा होगा सारा एटमोस्फेयर ही चेंज हो गया
1: अच्छा
2: हाँ।
1: अच्छा हुआ भाई आजकल चेंज की वैसे भी शॉर्टेज है
2: यार तुझे हर वक्त मजाक सूझता रहता है
1: अच्छा अच्छा अब बता ऐसी क्या बात हो गई थी क्या किसी से झगड़ा हो गया
2: अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी लेकिन यार पैसे का पैसा गया और बुद्धू के बुद्धू बने
1: अरे सो तेरे लिए कौन सी नई बात है
2: फिर वही बात
1: अरे सॉरी अच्छा अब बता क्या हुआ
2: होता क्या वही ढाक के तीन बात वही फिल्मी स्टोरी
1: लड़के का बाप कोई फिल्मी प्रोड्यूसर होगा है?
2: अरे फिल्मी नहीं जुल्मी कहो जुल्मी हीरो पर बैठने से पहले उसने एक परवाना ससुर साहब के हाथ में पकड़ा दिया
1: क्या कहा परवाना पकड़ा दिया सुनते हैं परवाने तो मंडराया करते हैं क्या उसने किसी परवाने को पकड़कर आपके ससुर साहब को इनायत कर दिया
3: कैसे दो दिन के बच्चे बन रहे हो
2: अरे परवाने से मेरा मतलब है स्लिप कागज की स्लिप और उसमें ये लिखा कि अगर 2 लाख रुपए उन्हें नकद इसी वक्त नहीं दिए तो वो बारात वापिस ले जाएंगे
1: क्या राइटिंग में मेरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया
2: हाँ जनाब ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हमारा तो सारा मूड ही बिगड़ गया सोचा था कि जोधपुर घूमेंगे कुछ दिन ससुराल में रहेंगे सारे पैसे तो वहां भेड़ चढ़ा दिए और यहाँ आकर छुट्टी और कैंसिल करानी पड़ी
1: हो भाई जग्गू मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है कि तेरा दिल टूट गया लेकिन प्यारे अब ये कॉफी का दिल भी ठंडा हो रहा है इसे मत तोड़ हाँ ले कॉफी ऑफी भी अरे सुना तूने वो वर्मा ने शादी कर ली
2: अच्छा तो इसमें गुनाह क्या हो गया भैया हर लड़का शादी करता है
1: अरे मगर ब्लैक एंड व्हाइट में शादी की है
2: क्या मतलब
1: अरे मतलब वही कि अग्नि को साक्षी मानकर नहीं वर्मा ने सिविल मैरिज की है
2: यानी कि राकेश अब हर बात लिखित में होने लगी जैसे एक दूसरे की जवान में विश्वास ही नहीं रहा कैसा समय आ गया है जबकि आदमी की जवान की साख की कोई कीमत ही नहीं रही
1: और एक वो जमाना था जब जवान से बेटी बेटी तक पराया हो जाया करते थे
2: प्यारे समय ही ऐसा है ब्लैक माने काला और व्हाइट माने सफेद यानी काली रात और सफेद दिन ये रात और दिन का ही तो चक्कर है जो हम सबको चक्कर दे रहा है
1: और हम इसकी चक्की में पिस रहे हैं भाई कबीर ने ठीक ही कहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए और दो बाटन के बीच में साबुत बजाने को अरे अरे पर तू उठ कैसे गया भाई हाँ क्या देर हो रही है
2: हाँ भैया एक जगह जाना है अब सुन यार अब वो बात यह है कि 50 रुपए हो तो दे देना कुछ काम है अब काम नहीं बना तो वापिस कर दूंगा
1: अरे 50 तो नहीं है पर तू ऐसा कर इसमें से 40 रुपए ले ले
2: ना ना 40 दे दे अब कोई बात नहीं अभी 40 चलेंगे अच्छा मैं चलता हूँ टाटा बाय बाय

रुपए लेकर चलता बना। अब मैं जरा वो लिस्ट निकालूं। यहाँ भी नहीं है, इस जेब में देखूं, यहाँ भी नहीं है, शायद घर पे रह गई होगी। पहले घर चलता हूँ, शीला क्या कहेगी, और सामान कैसे लूंगा। हाँ याद आया, पढ़ाई दोहरा लूंगा, आ से अरबी, आ से आलू, ठीक है एक एक किलो ये दोनों ले लूंगा। अरे भैया अरबी देना और आलू देना। खिलौने वाला

0: इंजन, गुड्डा और खरगोश, ये तीनों दे देना। ये ले रुपए। हाँ ये ठीक किया। और हाँ हाँ हाँ ये रसगुल्ले बहुत बढ़िया हैं, और ये सेब दोनों एक एक किलो ले लेता हूँ। र से रसगुल्ला, से सेब। अब बचे 2 रुपए। ठीक है, हो गया बजट पूरा। शीला भी क्या याद रखेगी कि मैंने उसी के पढ़ाए हुए पाठ के हिसाब से सामान खरीदा है। अब घर चलता हूँ। ये लो सामान।
1: अरे बड़ी जल्दी आ गए। पर ये क्या, ये इंजन और ये खिलौने, ये सब तुम्हें लाने को किसने कहा था?
2: तुमने? मैं अपनी मर्जी से कोई सामान नहीं लाया हूँ। हाँ
1: क्या, ये इंजन, गुड्डा, ये घर गृहस्थी है या कोई नुमाइश? और ये मिठाई का पैकेट, ये सेब, ओफो, सारी तनख्वाह चाटने में ही फूंक दोगे क्या? मैं कहती हूँ आखिर तुम्हें समझ कब आएगी। ना अजवाइन लाए, ना नमक, ना हल्दी। जरा लाना तो वो लिस्ट, वो जो मैंने तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में दिया था।
0: वो यही गई होगी। पर प्रिय, तुम अपनी पढ़ाई याद कर लो ना।
1: क्या खाक याद कर लूं? क्या जगमोहन ने भी याद नहीं दिलाया कुछ?
3: मैं अंदर आ सकता हूं जरे?
0: अरे आओ आओ, और अपने दोस्त का जनाजा देखते जाओ। सुना था गए हुए वापस नहीं आते, पर अब तो वो भी वापस आने लगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैठो बैठो, यहाँ बैठो।
3: अरे बैठने नहीं आया राकेश, मैं तो कुछ देने आया हूँ।
0: अरे अरे तो रुपए ही दोगे ना?
3: रुपए? कौन से रुपए?
0: अरे वही जो तुमने मुझसे रेस्टोरेंट में लिए थे।
3: रेस्टोरेंट में? यार देख, मजाक ठीक नहीं है।
0: देख मजाक तो तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी 1 घंटे पहले रेस्टोरेंट में तूने मुझसे रुपए मांगे थे और मैंने दिए थे, और तूने कहा था कि काम चल जाएगा।
3: काम तो चल जाता प्यारे, मगर तुमने रुपए दिए कहाँ? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास?
0: क्या मतलब?
3: मतलब ये कि आपने जो मुझे रुपए दिए उसकी कोई रसीद है? ब्लैक एंड व्हाइट में? कुत्तों घर के सामान की लिस्ट तक ब्लैक एंड व्हाइट में मांगते हो, और पैसे लेने देने के बाद यूं ही फोकट में कर लेते हो? वाह क्या कमाल है
0: यार। एक तो तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, और ऊपर से मुझसे मजाक कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
1: आहा, अपनी याददाश्त तो ठीक नहीं, और दूसरों को कहते हो हर बात लिखित यानी ब्लैक एंड व्हाइट में लिया करो। मैंने घर के सामान की लिस्ट दी थी, वो भी न जाने कहां फेंक दी तुमने।
0: अरे तो मैं क्या करूं, मुझे याददाश्त भी तो भगवान ने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दी। अब रखो तुम घर का सामान और रखो तुम रुपए, मैं तो चला। हाँ
3: अरे अरे मेरे भाई, ऐसे कहा चल गया? अब केवल रुपयों के लिए इतनी बेरुखी? ये लो अपने रुपए।
1: अरे ये तो सामान की लिस्ट है जो मैंने नहीं दी थी।
0: पर ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई जग्गू?
3: इसलिए कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिली, तुमने रेस्टोरेंट में रुपयों के साथ मुझे ये लिस्ट भी दे दी।
0: और तूने इसे ले लिया, और रुपयों का तूने क्या किया बच्चू?
3: उसका तो मैं ये सामान ले आया जो तुम लाना भूल गए। आखिर मैं करता क्या, ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो थी।

हवा महल में आज आप सुन रहे थे महावीर सिंघल की लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक थे आनंद किशोर माथुर। ये झलकी आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने। बीज तो कब के बोती।

0: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गुंजन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित द्विवेदी। दोस्तों, दो दिन से हो रही हल्की फुल्की बारिश ने हमें उमस भरी गर्मी से राहत दी है। जी हां, और मानसून के आने के भी संकेत हो चुके हैं, या कहिए मानसून धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो दोस्तों, बरसात के मौसम में हमें अपना खास ख्याल रखना होगा। बरसात के मौसम में बीमारियों और हादसों से बचने के लिए, साथ ही खान पान में साफ सफाई रखना और कहीं भी पानी को जमा नहीं होने देना है। बरसात के मौसम में कई तरीके की सावधानियां हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो जाती हैं। बहरहाल, लीजिए सुनिए प्रोग्राम का ये पहला नगमा।

तो हम बात कर रहे हैं आने वाली बरसात में स्वास्थ्य और खान पान संबंधी सावधानियों की। दोस्तों, पानी से होने वाले संक्रमण से बचने के लिए हमेशा फिल्टर या उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही पिए। साथ ही स्ट्रीट फूड, कटे हुए फल, जंक फूड और खुली हुई चीजें खाने से बचें बरसात के मौसम में, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया और मक्खियों के पनपने का खतरा ज्यादा होता है। साथ ही घर आने पर हाथ पैर अच्छी तरह साबुन से धोएं। बारिश में भीगने पर तुरंत स्नान करके शरीर और बालों को भी सुखा लें।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: हेलो
3: सुनो टेलीफोन नंबर
4: माय नंबर इज
0: 7376804090 लाइव हेलो अयोध्या।

यह प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: दोस्तों फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हम बात कर रहे थे बरसात में उससे बचने की होने वाली सावधानियों की, तो सबसे पहले तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि पानी को कहीं पर जमने ना दें, जैसे कूलर, गमलों या घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि बरसात में या डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के प्रजनन की जगह होते हैं, जी हां, इससे बहुत मच्छर भी इकट्ठे होते हैं। साथ ही सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और बच्चों को घर से बाहर निकलते समय या आप खुद भी पूरे कपड़े पहनें।

दोस्तों बरसात के मौसम में बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और खुले तारों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। गीले हाथों से किसी भी स्विच या उपकरण को, यानी बिजली के किसी भी उपकरण को न छुएं। साथ ही बारिश के दौरान पानी से भरी सड़कों और गड्ढों और खुले नालों का कभी कभी हमें पता नहीं चलता, इसलिए वहां चलने से बचें या ध्यान पूर्वक चलें। और हाँ, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी है, तो उसकी स्पीड कम रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में अधिकतर फिसलन ज्यादा हो जाती है बारिश की वजह से। और ब्रेक भी अगर आप अचानक लेते हैं तो गाड़ी के गिरने का डर रहता है, जिससे आपको भी चोट आ सकती है। तो थोड़ी सी स्लो ड्राइविंग करें और सुरक्षा

जाने। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गुंजन से दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को। और हाँ दोस्तों 9:30 पर सुनना ना भूलिए सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। नंबर वही पुराना जाना पहचाना 73-76-80-40-90।

0: की बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 9:00 सुनिएगा News@9।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले

0: बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी

0: यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
1: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: www.jiovi.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan west.

0: लेकर 76
1: भरोसे का सिर्फ एक ही नाम
2: RHL गोल्ड टीम टीसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
3: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
4: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
5: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
4: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
5: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
4: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 63-86-90-70-06।
6: आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का
7: और नेहा तिवारी का नमस्कार।
6: नेहा जी,
7: जी
6: आपके चेहरे से लग रहा है कि बाहर का मौसम जो है बहुत खुशगवार हो गया है।
7: चेहरे से पता चल गया?
6: बिल्कुल, ऐसे आदमी हाफते दौड़ते चेहरे पर जो है वो पसीने से भीगा हुआ दौड़ता हुआ आता है, लेकिन आज निश्चित रूप से कुछ बेहतर है जो हमारे किसान भाइयों के लिए भी बहुत बेहतर है।
7: जी बिल्कुल, और ये जो बरसात हुई है ये काफी अच्छी अब लग रही है क्योंकि लगभग एक हफ्ते से गर्मी जो थी बहुत ज्यादा बढ़
6: गई। मानसून आने ही वाला है, उसके पहले के थोड़े से फुहारें जो मन को भिगो गई और हमारी जमीन को भिगो गई।
7: जी,
6: तो किसानों के चेहरे पर जो प्रसन्नता है वो हमारे चेहरे पर भी दिख रही है।
7: जी बिल्कुल,
6: लेकिन श्रोताओं के जो संदेश आए हैं उनसे जो प्रसन्नता बिखेरने वाली है वो हमारे लोगों को बताइए।
7: जी बिल्कुल, जो पहला संदेश हमारे पास तक आया है वो श्री गंगानगर राजस्थान से आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया।
6: क्या कहते हैं बनवारी जी?
7: आप सभी लिखते हैं कि हेलो अयोध्या, अमृत कलश, सुर संगम, आपके संदेश, आपके गीत बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है और फरमाइशी कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगता है, सब हमारे मन को बहुत पसंद है।
6: क्या बात है, अब तो चाहते ही हैं कि हमारे श्रोता जो हैं, जो भी कार्यक्रम यहाँ से प्रेजेंट हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं, उनसे अपने को जोड़ें, हमको भी जोड़ें और खुश रहें।
7: जी, लिखते हैं कि लोक रंग जो अवधि गीत का कार्यक्रम है जो सुनवाए जाते हैं आपके यहाँ से, उसमें तो हम लोग खड़े होकर झूमने लग जाते हैं।
6: कितनी आश्चर्य की बात है, देखिए कितना दूर हमारे बनवारी लाल जी हैं, जो उनकी लोक भाषा कुछ और है,
7: बिल्कुल,
6: लेकिन फिर भी अवधि में जो गीत गाए जा रहे हैं उसको सुनकर खुश होते हैं।
7: आगे लिखते हैं कि सरस्वती पाठक दीदी को दिल करता है कि सुनते ही रहे, आवाज बहुत मीठी शहद जैसी लगती है।
6: सरस्वती पाठक जी जब इंटरव्यू लेती हैं
7: जी,
6: तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनकी आवाज बहुत मीठी है, बाकी तो तमाम कार्यक्रमों की प्रस्तुति रहती है उनकी।
7: जी, हेलो अयोध्या में कोशिश करते हैं मगर फोन मेरा नहीं मिलता, मगर कोशिश हम लगातार कर रहे हैं।
6: बिल्कुल, आपकी कोशिश बरकरार रहे तो आज नहीं तो कल, तो जानती है कि एक फोन लगना है बाकी हजारों का नाम कट जाता है उस लिस्ट से।
7: आगे लिखते हैं कि 1 बजे का कुछ तुमने कहा कार्यक्रम जो है वो आपके यहाँ का नंबर वन कार्यक्रम है, नारी जगत, किसानवाड़ी और अमृत कलश भी जो है बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है।
6: बिल्कुल सही बात है, सबके जैसे कहते हैं ना अपने अपने जो कार्यक्रम है सबके एक नंबर दिखाई देते हैं, क्योंकि जिसकी जो पसंद है वो उसको बहुत अच्छा लगता है।
7: आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या से हम बहुत ही प्यार करते हैं, हर क्षण श्रोताओं को आप मान सम्मान देते हैं और उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं, ये सौभाग्य प्राप्त है हमारा कि आपको आपसे हम जुड़े हैं और हमसे आप जुड़े हैं।
6: क्या बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी, पूरा आकाशवाणी परिवार बनवारी जी और ऐसे ढेर सारे श्रोताओं के साथ प्यार बनाए रखता है और प्यार पाता रहता है।
7: और अगला जो संदेश है हमारे पास वो ग्राम गुदनूपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती से आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अजिता रावत, जया रावत, आशीष रावत, अभय, अकुल और इनके मम्मी पापा।
6: वही पुराने नाम जो लगातार हमारे कार्यक्रमों को सुनते गुनते हैं और अपनी बातें हम तक भेजते रहते हैं, तो ढेर सारा स्वागत है इनका अजिता का।
7: इनका नाम पढ़ने में और सुनने में भी हम लोगों को एक अलग सा आनंद होता है, जरूर आता है। लिखते हैं कि किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को दिल का नजराना पसंद है।
6: क्या बात है, क्या बात है जीता,
7: औरों की पसंद का तो

0: पता नहीं, हमें तो आकाशवाणी अयोध्या सुनना पसंद है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा स्नेह आकाशवाणी अयोध्या पर बरसाने के लिए। आगे क्या लिखती हैं?
0: जी आगे लिखती हैं कि सोमवार को अमरजीत सर की प्रस्तुति शाम सुहानी गीत गुंजन महफिल गजल हेलो अयोध्या बहुत ही अच्छी लगी। बुधवार को लोक सुरमाला प्रोग्राम इनको वंदना गुप्ता जी द्वारा किया गया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रवार को गीत गुंजन हेलो अयोध्या प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगा। शुक्रवार को युवाड़ी प्रोग्राम में दिशा श्रीवास्तव की प्रस्तुति इनको बहुत पसंद आई। शनिवार को शाम सुहानी एक ही कलाकार महफिल गजल हेलो अयोध्या प्रोग्राम गिरिजेश जी के द्वारा किया गया, जो इनको बहुत पसंद आया। और रविवार को भी इनको हेलो अयोध्या कुछ तुमने कहा प्रोग्राम आराधना श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया। इनको सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी।
1: बिल्कुल सही बात है, कितने अच्छा से इन्होंने अपनी बातें जो है हम तक अपने खतों किताबत के माध्यम से पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजिता जी, ऐसे ही आपकी खतों किताबत जो है आकाशवाणी के साथ जारी रहेगी, ऐसे ही आपका प्यार बरसाना जारी रहेगा, ये उम्मीद करते हैं हम
0: जी। और अगला जो संदेश हमारे पास तक आया है वो रणजीत सिंह का आया है गोरखपुर से।
1: हाँ
0: जी, लिखते हैं कि 15 जून 2026 को शाम 5:30 पर लोक संगीत और इसी दिन रात में 9:15 पर आपकी बात और 17 जून को सुबह 10 आकाशवाणी अयोध्या की स्थापना दिवस पर 33 साल बेमिसाल कार्यक्रम सुना, बेहद पसंद आया।
1: धन्यवाद कार्यक्रमों को सुनने गुनने और अपनी बातें हम तक तो पहुंचाने के लिए, जो ढेर सारे अन्य श्रोता भी सुन रहे हैं। ऐसे ही आप अपना संदेश हम तक भेजा करें, यही उम्मीद करते हैं।
0: अगला संदेश हमारे पास तक आया है गुजरात से, जिला वलसाड़।
1: लिखने वाले कौन है?
0: लिखने वाले हमारे श्रोता ने अपना नाम नहीं लिखा है, बाकी अपने सभी दोस्तों का नाम लिखा
1: क्या
0: है।
1: क्या बात है, तो उस दोस्तों के नाम के साथ उस अनाम श्रोता को आकाशवाणी की तरफ से ढेर सारा स्नेह, इस उम्मीद के साथ कि आगे अपना नाम जरूर लिखेंगे
0: जी। इनके जो दोस्त हैं उनका नाम है अजीम भाई, चीकू भाई, और जिन्होंने संदेश लिखा है उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा मगर संदेश बड़ा प्यारा लिखा है कि हम आपका कार्यक्रम रेगुलर सुनते हैं और अपने साथ साथ लगभग 8-10 लोगों को और सुनाते हैं।
1: क्या बात है,
0: और अब तो मेरा पूरा मोहल्ला सुनने लगा है आकाशवाणी अयोध्या को।
1: यानी इनका परिवार गुजरात में इतना समर्थ है कि तमाम सारे लोगों को हमारा ये कार्यक्रम सुनाता है और आकाशवाणी की महिमा वहां तक पहुंचाता है।
0: मोबाइल ऐप के जरिए ये सभी लोग कार्यक्रम सुनते हैं। शुरुआत में तो मैं अपने परिवार के साथ सुनता था, अब मैंने अपने आसपास मोहल्ले वालों को भी बताया है कि आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम बहुत अच्छे आते हैं और आप भी सुनिए। और लगभग इस समय 10-12 परिवार ऐसे हैं जो आकाशवाणी अयोध्या रेगुलर सुनते हैं।
1: तो अजीम भाई के नाम से ही मैं इनको संबोधित करके ये धन्यवाद देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आगे जब उनके संदेश आएंगे तो उनके अपने नाम जरूर लिखे होंगे, जो भूल बस छूट गया है नेहा जी।
0: अगला संदेश हमारे पास तक आया है ग्राम सूरा सराय पोस्ट बीकापुर जिला अयोध्या धाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं प्रदीप कुमार तिवारी, नेहा तिवारी, अनन्या तिवारी, शिवांश तिवारी।
1: देखिए नेहा इसमें भी आ गई, नेहा कहीं आपने तो नहीं अपना संदेश दे दिया है? नहीं, क्या लिखते हैं प्रदीप भाई?
0: ये हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता हैं और कभी कभी हमें इनके मैसेज कुछ तुमने कहा के प्रोग्राम में भी मिलते हैं और आपकी बात में भी इन्होंने कई बार खत लिखा है और इस बार फिर से हमें इनका खत मिला है।
1: तो ढेर सारा स्वागत एक बार फिर।
0: जी लिखते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे सुर संगम, प्रणाम अयोध्या, आपके संदेश, आपके गीत, बातें आसपास की, लोक रंग, हेलो अयोध्या, कुछ तुमने कहा, गीतांजलि, नारी जगत, युवाड़ी, लोक संगीत, शाम सुहानी, किसानवाड़ी, गीत गुंजन, सभी कार्यक्रमों के नाम,
1: सारे कार्यक्रम इनको अच्छे लगते हैं जो आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होते हैं।
0: यहाँ तक कि इन्होंने समाचार भी लिखा है कि इनको समाचार भी अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम।
1: बिल्कुल, देखो नेहा जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि श्रोता समाचार के बारे में नहीं बताते हैं जबकि समाचार सुनने की इच्छा सबकी रहती है।
0: बिल्कुल,
1: और जब समाचार आता है तो सभी बहुत ध्यान से सुनते हैं, वाकई वो हम सबका, मैं खुद अपना बताता हूँ कि मैं खुद भी बहुत पसंद करता हूँ।
0: तो इन्हें सभी कार्यक्रम आकाशवाणी अयोध्या के बहुत अच्छे लगते हैं और इसी तरीके से आप कार्यक्रम करते रहें, यही इनकी गुजारिश है।
1: धन्यवाद प्रदीप जी, आगे भी ऐसे ही खतों किताबत आपकी जारी रहेगी।
0: जी अगला जो संदेश है रघुनंदन शर्मा बस्ती से आया है हमारे पास तक। लिखते हैं कि आकाशवाणी ने स्थापना दिवस पर जो विशेष कार्यक्रम रखा उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। नेहा तिवारी और विवेकानंद पांडे ने संचालन किया जो कि बधाई के पात्र हैं। हम पुनः इस स्थापना दिवस पर आकाशवाणी को ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। रघुनंदन शर्मा, बस्ती, यूपी।
1: रघुनंदन जी बहुत ही संक्षिप्त और बहुत सधा हुआ पत्र लिखते हैं, आपने आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रघुनंदन जी। और आगे भी आप अपना संदेश, जो कुछ भी आपको पसंद आता हो, इस हम लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी। अगला संदेश मिल्कीपुर अयोध्या से आया है। लिखने वाले मेरे श्रोता हैं शिवानी मिश्रा। लिखती हैं कि रेडियो सुनना मेरे लिए सिर्फ आदत नहीं बल्कि दिन भर के कामों के बीच एक अच्छा साथ जैसा है। आकाशवाणी अयोध्या से एक अपनापन सा जुड़ गया है। स्थापना दिवस पर प्रसारित एक घंटे का विशेष कार्यक्रम सच में बहुत अलग और खास था।
1: बिल्कुल।
0: पूरे कार्यक्रम में अयोध्या की पहचान, उसकी परंपरा, आकाशवाणी की यात्रा को बड़े ही सधे और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। सुनते सुनते ऐसा लगा जैसे पुराने समय की यादों और आज की नई ऊर्जा दोनों का मेल एक साथ महसूस हो रहा।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने।
0: जी, आगे लिखती है कि ऐसे कार्यक्रम श्रोताओं को सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़ने और मजबूत करने का भी एक माध्यम है।
1: सही बात, बिल्कुल।
0: बाकी रोज आने वाले कार्यक्रम भी इनको बहुत पसंद आते हैं, इनकी दिनचर्या का हिस्सा बने हुए हैं। नेहा जी और विवेकानंद जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक बात भी जाननी थी कि पोस्टर में प्रस्तुति सरस्वती पाठक के नाम से थी और प्रस्तुत नेहा जी और विवेकानंद जी ने किया, क्या नाम गलत हो गया था पोस्टर में या कोई और कारण है?
1: नहीं, दो चीज समझना होगा आपको। एक तो जिनके स्वर जाते हैं
0: जी,
1: और एक जो कार्यक्रमों का संयोजन करता है संपूर्ण कार्यक्रमों का, तो जो प्रोग्राम अफसर होता है
0: जी,
1: यानी सरस्वती पाठक, वो सारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करती हैं। लेकिन उन कार्यक्रमों को जिनकी आवाज में आप सुन रहे होते हैं उनका नाम वहाँ अवश्य रहता है। यही भेद है उसमें
0: जी। और उसी को लेकर आगे भी इनका संशय बना हुआ है। लिखती हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि नाम किसी का होता है और प्रस्तुत कोई और करता है, इसे समझा दे प्लीज।
1: हाँ, तो मुझे, मैं समझता हूँ कि अब ये समझ गई होंगी कि जो प्रस्तुत करता है वो पीछे से उस कार्यक्रम का संयोजन करता है, लेकिन जिनकी आवाजों में आप कार्यक्रमों को सुनते हैं वो प्रत्यक्ष रहते हैं।
0: जी, आगे लिखती है, बाकी आकाशवाणी अयोध्या सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है। सभी को एक बार फिर से नमस्ते।
1: नमस्कार और धन्यवाद आपको इतना सुंदर ढंग से अपना संदेश आकाशवाणी अयोध्या तक पहुंचाने के लिए।
0: अगला संदेश हमारे पास आया है स्वाति सिंह का, गोंडा से।
1: स्वाति जी क्या लिखती हैं?
0: लिखती हैं कि मैं रोज घर के काम करते करते आकाशवाणी अयोध्या सुनती हूँ और सच में ये मेरे दिन का बहुत ही खास हिस्सा बन गया है।
1: देखो नेहा, पहले भी समय में भी लोग कहा करते थे कि आकाशवाणी ही वो माध्यम है, यानी रेडियो ही वो माध्यम है जो हमारी किसी काम में कोई व्यवधान न उत्पन्न करके भी हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करता है, जो कि अभी उन्होंने कहा
0: जी,
1: कि काम करते करते हम सुनते हैं
0: जी। आगे लिखती हैं कि रोज आने वाले कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे अमृत कलश में नेहा मैम की आवाज में जो मिठास और भक्ति भाव है वो दिल को बहुत सुकून देता है।
1: बिल्कुल सही बात कहा आपने।
0: और नेहा, आपने तारीफ सुनके थोड़ा सा
1: अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगेगा? कौन जात बसम लोग के मुखे पिंडे ने पूछता, ऐसा कौन है जिसके मुख में पिंड दिया जाए यानी खाने को दिया जाए तो उसे प्रसन्नता नहीं होती है।
0: आगे लिखती हैं, युवाड़ी में मंजली मैम की आवाज की चहक और खनक सच में बहुत प्यारी लगती है।
1: बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल सही बात कहा स्वाति जी आपने।
0: आगे लिखती हैं कि दोनों मैम की आवाज तो जैसे आकाशवाणी अयोध्या की जान है।
1: अब जो मुझे कहना था वो आपने ही कह दिया।
0: आगे लिखती हैं कि स्थापना दिवस पर एक घंटे का जो स्पेशल कार्यक्रम आया था वो बहुत ही सुंदर और मन को छू लेने वाला था। नेहा मैम और विवेकानंद सर की प्रस्तुति इतनी सौम्य और सुकून देने वाली थी कि सुनकर बहुत अच्छा लगा। आराधना श्रीवास्तव मैम के कार्यक्रम भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसके अलावा मुझे दीपिका मैम, प्रियंका मैम, नाजिम सर, अमरजीत सर और सदक सर, विवेकानंद सर और युवाड़ी से दिशा श्रीवास्तव, मंजली और जीनत, इन सभी के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: नेहा, कुछ समझ में आया कि इन्होंने कार्यक्रमों को कितना शिद्दत के साथ सुना है। और सबकी आवाज की खनक और सबकी प्रस्तुति का ढंग इनको बहुत अच्छे से पता है। इस प्रशंसा के लिए आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी प्रस्तोताओं को इनकरेज किया है, बढ़ावा दिया है कि वो अपने कार्यक्रमों को और सुंदर ढंग से कर सके।
0: आगे लिखती हैं कि लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा मैम नेहा मैम है।
1: हाँ?
0: मुझे लगता है पत्र मिला कार्यक्रम करने का, ये मुझे एक इनाम सा मिला है।
1: बिल्कुल, नेहा जी को हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पसंद किया है।
0: हाँ, मैं उन्हें फेसबुक पर भी फॉलो करती हूँ और जिस दिन वो अपने कार्यक्रम का अपडेट डालती हैं मैं उनका प्रोग्राम जरूर सुनती हूँ। हेलो अयोध्या में एक बार मेरी बात भी हो चुकी है जो मेरे लिए बहुत खास अनुभव था। कुल मिलाकर आकाशवाणी अयोध्या के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे, सुकून देने वाले और दिल से जुड़े हुए लगते हैं। आप सभी ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम लाते रहें, यही शुभकामनाएं।
1: स्वाति जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी परिवार की तरफ से इतना सुंदर और लंबा खत लिखने के लिए। आगे इस उम्मीद के साथ कि ऐसे ही आपकी खतों की दावत और आपका स्नेह आकाशवाणी परिवार के साथ जुड़ा रहेगा। नेहा जी, इन सारी प्रशंसाओं के बीच देखिए घड़ी हमें इशारा कर रही है, तो लेते हैं हम लोग अगले कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम तक के लिए विदा और श्रोताओं से कहते हैं
1: नमस्कार।
2: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: ఊహలు అయోధ్య.
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय. 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है. कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22.
2: DLED, BTC, DHP, D-Pharm, B-Pharm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है. संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर. प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838.
0: जी हाँ दोस्तों, शुरू हो चुका है वो प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार, यानी हेलो अयोध्या. प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से स्टूडियो में आपके साथ मैं हूँ शोभित द्विवेदी. कंट्रोल रूम से हमारे साथ लगातार बने रहेंगे स्वप्निल मिश्रा. तो इस लाइव फोन प्रोग्राम में कॉल कीजिए, नंबर आप सबको याद होगा, वही पुराना जाना पहचाना 7376-8040-90. जी हाँ, नंबर मिलाते ही आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या के साथ ऑन एयर और हम आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के नगमे. होंगी बहुत सारी मस्ती धमाल और मनोरंजन क्योंकि प्रोग्राम ही है हेलो अयोध्या. और हमारे आज के पहले कॉलर कौन बने हैं? हेलो.
3: हेलो,
0: नाम बताइए सर, कहाँ से फोन लगाया है?
3: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं ग्राम अकबरपुर तहसील जिला विदिशा मध्य प्रदेश से.
0: क्या हाल चाल है हारून भाई?
3: बस बहुत अच्छे हाल चाल है. आपके हाल चाल कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ, लेकिन हमें लगता है आप थोड़ा सा रेडियो से दूर हो जाइए, आपकी आवाज जो है बैक हो रही है.
3: जी मैं तो दूर हूँ.
0: क्या करते हैं हारून भाई?
3: मैं खेती बाड़ी करते हूँ.
0: खेती बाड़ी विदिशा का क्या मौसम कैसा है?
3: जी मौसम अच्छा है, लेकिन बारिश थोड़ी बहुत कम हो रही है, बारिश नहीं हो रही है हमारे इधर. और आपके इधर?
0: नहीं, हमारे तरफ भी बारिश तो एक दो दिन हुई है, लेकिन हमें लगता है मानसून चल चुका है, आगामी तीन चार दिनों में शायद बारिश.
3: लेकिन जी मैंने भी सुना है, कई जगह सुना है बारिश अब किस साल कम होने की संभावना है.
0: कहाँ सुना है आपने?
3: नहीं रेडियो पर सुना. अच्छा, है इससे 5 बजे भी सुना था मैंने. हमारे गांव में भी बात है, अब बातचीत लोग कर रहे थे,
0: करते हैं. हाँ, गांव
3: ज्यादा भी बारिश हो सकती है, कम कम कम भी बारिश हो सकती
0: जी,
3: है.
0: हमने देखा है गांव वाले बहुत सटीक अनुमान लगा लेते हैं.
3: जी नहीं, विज्ञानों की सुना है मैंने.
0: जी जी, तो हारून भाई गाना कौन सा सुनेंगे आज?
3: संग्राम का सुना देना.
0: संग्राम फिल्म का सुना दें?
3: जी पैसा भी चला देना, सभी अच्छे हैं.
0: चलिए हम गाना सुनवा रहे हैं संग्राम फिल्म का, और कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका.
3: जी धन्यवाद आपका.

0: चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है। हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से फोन लगाया है?
1: सर मेरा नाम है राहुल शर्मा, ग्राम गालीपुर, पोस्ट मेघू काटा, सुहावल।
0: सुहावल से। तो राहुल भाई क्या करते हैं?
1: सर ये ट्रेंडिंग का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, कहाँ? वही सुहावल में ही?
1: हाँ सर।
0: तो गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: सर दिले बेताब का जी।
0: चलिए गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। कॉल करने के लिए धन्यवाद हमें
1: जी सर।

0: भाई देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताइए।
1: सर नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कहाँ से फोन लगाया है, नाम क्या है?
1: नाम सर मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से मनोहर लाल मेहर बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया सर, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी नहीं आ रहा है।
0: पानी तो नहीं आ रहा है, बरसात नहीं हो रही है?
1: हाँ बरसात नहीं हो रही सर, हमारे आस पास तो हो रही है पर हमारे हमारी गर्मी हो रही है।
0: आस पास कहाँ हो रही है? आस पास
1: हमारे आस पास इधर सरोद शामगढ़ हो रही है और हमारे यहाँ तक नहीं हो रही है मंदसौर इधर।
0: ऐसा क्यों
1: ये पता नहीं क्या है सर, क्या हो रहा है आस पास तो बहुत पानी गिर रहा है।
0: हाँ लेकिन जहाँ मनोहर लाल रहते वहाँ पानी नहीं गिर रहा है।
1: हम पानी का इंतजार कर रहे हैं सर, वो फसल बोने का इंतजार कर रहे हैं।
0: अच्छा फरहान, नहीं बिल्कुल बिना पानी के तो खेती भी सही कह रहे हैं आप, नुकसान होगा।
1: बिना पानी के सर खेती कैसे होगी सर?
0: जी बिल्कुल हम समझ रहे हैं। तो मनोहर भाई बारिश के लिए, जी बारिश के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो हम जल्दी बारिश होगी, मानसून चल चुका है
1: तो सर भगवान के हाथ में सर।
0: जी बिल्कुल हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, आपकी पसंद का गाना हम सुनवा सकते हैं। बताइए कौन सी फिल्म का सुनेंगे?
1: सर फिल्म का नाम है सन्यासी और गाने के बोल है चल सन्यासी मंदिर में।
0: चलिए गाना सुनवा रहा है, आपके पीछे से कौन बोल रहा है या रेडियो खुला हुआ है?
1: ये सर ये तो बातें कर रहे हैं।
0: कौन है
1: ये? उधर है मोहल्ले में पास में।
0: अच्छा मोहल्ले के लोग बातें कर रहे हैं आपस में, वहीं से फोन मिलाया है आपने?
1: सर बाहर ही बैठे हैं सर, गर्मी लग रही है, पानी नहीं आ रहा है।
0: चलिए गाना सुनवा रहे हैं बहरहाल मनोहर लाल जी।
1: ठीक है सर, धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हेलो
1: जी सर।
0: जी सर, नाम बताइए अपना।
1: सर मेरा नाम है लोकेश सैन, मैं सवाल करने वाला हूँ।
0: क्या करते हैं लोकेश
1: सर? मैं टीचिंग करता हूँ।
0: टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं आप?
1: जी सर।
0: कहाँ पे पढ़ाते हैं? स्वाहौल में ही? हाँ जी,
1: स्वाहौल में ट्रिंस क्लासेज।
0: अच्छा, तो लोकेश भाई और पढ़ाने के अलावा क्या करते हैं, क्या शौक हैं आपके, खाली समय में क्या करते हैं?
1: सर खाली समय में क्रिकेट खेलते हैं। और गाना सुनते हैं कभी कभी।
0: गाना वाना सुनते हैं कभी कभी।
1: जी सर।
0: तो क्रिकेट में कौन सा प्लेयर आपको पसंद है?
1: सर रोहित शर्मा।
0: रोहित शर्मा, तो आप क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं?
1: सर बैटिंग।
0: बैटिंग करते हैं
1: जी सर।
0: लोकेश भाई गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: सर गाना दिलवाले मधु सुना दीजिए।
0: दिलवाले का गाना?
1: जी सर।
0: कौन सा गाना दिलवाले का?
1: सर कोई भी सुना दीजिए, सब बढ़िया है
0: उसमें। सब बढ़िया है। चलिए एक दिलवाले का गाना सुनवा रहे हैं लोकेश। फोन करने के लिए धन्यवाद जी।

0: जो हमारे नए दोस्त हमारे नए कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए हम एक बार नंबर अपना फिर से बता दें 7376804090। जी हाँ, यही वो नंबर है जिसे मिलाएंगे आप और हम आपसे कहेंगे हेलो।
1: जी सर नमस्कार।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
1: सर मेरा नाम तौहीद अली है, बस्ती जिला सरैया तिवारी से बोल रहा हूँ।
0: हाँ, क्या हाल है तौहीद भाई?
1: सर बस बहुत अच्छा है, आज दो दिन से बारिश हुआ, थोड़ा जो आनंद हुआ गर्मी से राहत मिला।
0: हाँ, गर्मी से थोड़ा राहत मिला है, दो दिन से बारिश हुई है और उम्मीद है आगामी तीन चार दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।
1: ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है।
0: नहीं, हम गारंटी नहीं ले रहे तौहीद भाई, नहीं बाद में हमसे ये बारिश ना हो तो आप ही बोले रहे हो। मतलब हमें उम्मीद है, ऐसा लग रहा है।
1: आप खुदा है?
0: हाँ बिल्कुल, हम खुदा है ना आप खुदा है। और बताइए
1: सर, बस आप सबके दुआएं हैं, सबके आशीर्वाद हमारे साथ है।
0: क्या बात कर रहे हैं, दुआ
1: बताइए कैसी हाल चाल है।
0: हमारा भी आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद है। जी हम यहाँ बैठे हुए हैं आपकी दुआ से,
1: किसी उम्मीद से बैठे थे कि कभी आप तक आप बैठेंगे तभी हम फोन करेंगे, उसके बाद कॉल नहीं लगाएंगे।
0: ऐसा क्यों?
1: आपकी आवाज में हमें मिठास बहुत मिलती है सर।
0: तौहीद भाई चढ़ा रहे हो बहुत ज्यादा?
1: नहीं सर।
0: पक्का?
1: जो मैं कहता हूँ सो पक्का।
0: हाँ हम बताओ हम क्या करेंगे, शर्माएंगे ना हम तो।
1: नहीं सर, आप ये बात मत कहिए, मैं शर्मिंदा हूँ।
0: अरे क्या बात कर रहे हैं तौहीद भाई, तो इस समय कहाँ है तौहीद भाई, घर पे होंगे?
1: हाँ सर घर पे हैं, क्या करूँ,
0: खाना पीना हो गया,
1: क्या करें, मजबूर।
0: जी जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: राज फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: राज फिल्म का कौन सा गाना सुनेंगे?
1: गुनगुना के बताएं?
0: अरे बिल्कुल बताइए एकदम।
1: तुम अगर सामने आ भी जाया करो रात में, देख तुम मुझसे पर्दा करो, अपनी शादी कभी अब नहीं दूर है, मैं भी तर पा करूं तुम भी चल पा करो।
0: बिल्कुल तौहीद भाई एक बात

0: बताइए, शादी हुई है कि नहीं आपकी?
1: नहीं सर, हुई है शादी।
0: शादी हो गई है? तो मैडम कहाँ, पत्नी कहाँ पर है आपकी? साथ में है?
1: पत्नी जहाँ घर पास में है।
0: साथ में है, सुन रही है ये चीज आपको?
1: जी जी
0: सुन रही है ना? चलिए ठीक है, गाना सुनवा रहे हैं आपका।
1: ठीक है सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
3: सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: आप सुन रहे हैं शुभ विधि के साथ आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: सर किरण निषाद, जिला अयोध्या चौरे बाजार।
0: कैसे हैं किरण?
1: मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छा हूँ। है कि नहीं? हम भी बढ़िया, आप भी बढ़िया, सुनने वाले भी बढ़िया। किरण करती क्या हैं आप?
1: आवाजें कट कट के आ रही
0: है। आवाजें कट कट के आ रही है तो थोड़ा नेटवर्क में आइए आप। क्या?
1: हाँ बोलिए, अब सुनाई पड़ रहा है।
0: कहाँ पे थी आप, आवाज नहीं आ रही थी?
1: बस बाहर में है, गर्मी हो रही है, बाहर ही में तो घूम रहे हैं।
0: अब आवाज सही आ रही है?
1: हाँ एकदम सही आ रही है।
0: तो हम पूछ रहे थे क्या करती है किरण?
1: बस कुछ नहीं, घर पे रहते हैं, एक बाबू है उसको ध्यान रखते हैं, स्कूल भेजते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, सुबह फिर आता है खाना देते हैं।
0: घर का काम करती हैं?
1: जी सर।
0: तो आज घर का काम अब खत्म हो गया?
1: हाँ क्या करना रहता है, बस मांजो धो लो, खाना बना लो, खा लो।
0: रोज
1: पापा हैं, हम हैं,
0: बस रोज का यही काम है ना,
1: परिवार है हमारा।
0: जी तो किरण गाना कौन सा सुनेंगी आज?
1: सर राजा और रंग चित्र का सुनवा दीजिए।
0: कौन सा गाना सुनवा दें बताइए?
1: कोई भी राजा रंग चित्र का गाना सुनवा दीजिए।
0: बढ़िया जो हो।
1: हाँ
0: चलिए, बढ़िया गाना हमें लगता है यही वाला है। हैं तो बहुत सारे गाने,
1: बस फिल्मी फिल्म वाला ज्यादा नहीं अच्छा लगता है। बढ़िया गाना इसे संस्कारी जैसे रहता है ना, सभ्यता वाला, वही अच्छा लगता है।
0: अच्छा चलिए, नहीं राजा और रंग का ही गाना सुनवा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
1: हाँ जी सर, आपके स्टेडियम में कॉल लगी है, हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी हमको भी बहुत खुशी हो रही है किरण, आपसे हमारी बातें हो रही है।
1: आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते
0: हैं। सुनती हैं आप?
1: जी सर, हम मोबाइल से सुनते हैं, हमारे पास रेडियो नहीं है, क्योंकि हम मोबाइल से सुनते हैं।
0: मोबाइल पे सुनती हैं, ऐप पर आप सुनती हैं?
1: जी
0: ठीक है किरण, गाना सुनवा रहे हैं राजा और रंग फिल्म का।
1: जी सर
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: दोस्तों हेलो, अयोध्या का आधा सफर आधा पड़ाव पूरा हो चुका है। उठाइए फोन और डायल कीजिए 73-86-40-90। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए अपना।
1: जी नमस्ते सर, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है।
0: तिवारी जी कहाँ से फोन लगाया है
1: जी? हमने अयोध्या से लगाया है, मवई कला गांव से।
0: मवई कला गांव से?
1: यस सर।
0: तो मवई कला गांव का क्या हालचाल है?
1: बस सर सब कुछ अच्छा है।
0: सब कुछ अच्छा है?
1: हाँ सर।
0: और आपका क्या हाल है?
1: मेरा भी बस सही है, गर्मी बहुत हो रही है, बस आनंद ले रहे हैं गर्मी का।
0: गर्मी बहुत हो रही है, नहीं हर मौसम का आनंद लेना चाहिए तिवारी जी।
1: हाँ सर ये तो
0: है कि नहीं,
1: देश में रहते हैं जहाँ पर हम हर मौसम का आनंद ले सकते हैं।
0: हाँ, गर्मी का भी, ठंडी का भी, बरसात का भी।
1: जी सर।
0: तो क्या करते हैं आप?
1: सर हम स्टडी करते हैं, इस टाइम हम एमएससी कर रहे हैं।
0: एमएससी कर रहे हैं?
1: यस सर।
0: जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: सर ये दुश्मन न करे दोस्त ने।
0: वो काम किया है।
1: यस सर।
0: कुछ ऐसा है क्या, कोई दोस्त है ऐसा?
1: नहीं सर, दोस्त नहीं, बस ये दिल को छू जाता है।
0: हाँ,
1: ना?
0: गाना अच्छा लगता है बस।
1: क्या सर?
0: बस ये गाना अच्छा लगता है।
1: हाँ सर, गाना मुझको पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं सर ना।
0: पुराने गाने तो मुझको भी बहुत अच्छे लगते हैं।
1: आपको भी?
0: और का?
1: सेम पिंच सर।
0: क्या जी?
1: सेम पिंच।
0: सेम पिंच। वाह तिवारी जी। चलिए ठीक है, गाना सुनवा रहे हैं आपको, दुश्मन न करे दोस्त ने। ठीक है।
1: यस सर।
0: और कुछ कहना चाहते हैं?
1: बस सर फोन मिल गया हमारा, पहली बार बहुत खुशी हो रही है। हमारा पूरा परिवार इस प्रोग्राम को सुनता है बहुत मन लगा कर।
0: चलिए ठीक है, मन लगा के सुनिए और मन लगा के एमएससी भी कीजिए। ठीक है
1: जी सर।
0: ओके, थैंक यू।

0: हाँ जी, देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़ चुके हैं लाइन पर। हेलो।
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: ठाकुर बसरा यादव कसतपुर बस्ती से बोल रहे हैं सर।
0: यादव जी, क्या हालचाल है?
1: बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपका बताइए।
0: मेरा भी बहुत बढ़िया है। क्या करते हैं?
1: जरूरी है
0: जी, बिल्कुल। क्या करते हैं आप
1: सर? किसानी का काम कर रहे हैं।
0: किसानी का काम कर रहे हैं। तो बस्ती में क्या हालचाल है? बारिश हुई आजकल में वहाँ की? नहीं।
1: हाँ, बारिश हुई है, दो दिन से बारिश हो रही है।
0: दो दिन से बारिश हो रही है, आगे उम्मीद है बारिश होने की?
1: हाँ।
0: तो ठाकुर प्रसाद यादव जी, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: नदिया के पार सुना दीजिए सर।
0: कौन सा सुना दे? नदिया के पार का।
1: कौने दिशा में लेके चला रहे बटुखिया।
0: कौने दिशा में लेके चला रहे बटुखिया। तो गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का यादव जी। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, अहले अयोध्या का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: सर वैशाली तिवारी।
0: वैशाली, कहाँ से फोन लगाया है?
1: सर ये मिल्कीपुर से।
0: मिल्कीपुर से, क्या करती है वैशाली?
1: सर पढ़ाई करते हैं।
0: पढ़ाई करती हैं?
1: सर
0: कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हैं ये बताइए।
1: क्या सर?
0: पढ़ाई किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं इस समय आप?
1: सर गवर्नमेंट एग्जाम टीचिंग की। सर
0: टीचिंग की पढ़ाई कर रही हैं?
1: यस सर।
0: और पढ़ाई के अलावा और क्या करती हैं खाली समय में?
1: सर बस घर का काम करते हैं।
0: तो
1: घर इस समय तो फोकस केवल पढ़ाई पर है।
0: नहीं बिल्कुल, पढ़ाई पे फोकस बिल्कुल करना चाहिए। तो वैशाली गाना कौन सा सुनेंगी आज आप?
1: सर मुझे घर द्वार पिक्चर का गाना सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना सुनेंगी?
1: सर कोई भी सुना दीजिए।
0: कोई भी सुना दें
1: सर। किसी का प्यार न छूटे सर।
0: किसी का प्यार न छूटे, और बताइए एक आध लाइन और गाइए।
1: सर ये भी ये सुना दीजिए। सुंदर।
0: हाँ, स्वर्ग से सुंदर।
1: सुंदर सपनों से ज्यादा।
0: नहीं वैशाली, ये तो हमको नहीं दिख रहा है इस फिल्म में।
1: तो सर कोई भी अपना सुना दीजिए।
0: कोई भी अपना सुना दें। चलिए देखते हैं, ये गाना हम घर द्वार फिल्म का चला रहे हैं आपके लिए। ठीक है वैशाली, और कुछ कहना है? हेलो।
1: नहीं सर।
0: ओके, बाय बाय।
1: ठीक है सर, नमस्ते।

0: कैसे बच।
1: भाई देखते हैं अब हमारे अगले कॉलर अगले साथी कौन है लाइन पर। हेलो हेलो बोलिए जी।
2: नमस्कार सर, मुन्ना बोल रहे हैं सर, फरमा वाले।
1: मुन्ना
2: जी सर।
1: मुन्ना फरमा वाले
2: जी सर। सुहावल से।
1: सुहावल से, सुहावल की बहुत कॉल आज लग रही है हमारे पास
2: सर। हमारा तो बहुत दिन बाद लगा सर।
1: सुहावल वालों की कॉल आ रही है। तो मुन्ना बताइए, फर्मा का काम करते हैं आप, आपने बता ही दिया
2: जी सर।
1: गाना बताइए कौन सा सुनेंगे।
2: पापा के ऊपर कोई सा सुना दीजिए।
1: किसके ऊपर?
2: पापा के ऊपर। पापा,
1: पापा के ऊपर। मुन्ना पापा के ऊपर।
2: कयामत से कयामत सर।
1: कयामत
2: कह देते बड़ा नाम भैया।
1: अच्छा ठीक है। हाँ ये वाला गाना सुनवा दे रहे हैं मुन्ना। तो प्रोग्राम हमारे सुनते हैं आप
2: जी सर? हमारी तरफ से सारी आपके लिए सर।
1: हाँ बिल्कुल इरशाद है
2: सर। कापी न किताब न कलम से सीखा है।
1: वाह।
2: कापी न किताब कलम से सीखा है, जिंदगी का हुनर अपने बाप से सीखा है।
1: अरे वाह बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो मुन्ना पापा कहते हैं, ये गाना सुना रहे हैं आपको। पापा कहाँ हैं आपके?
2: सर हमारे पापा खेत काम करते हैं सर, यहाँ पर क्या नाम नवे पूंजी आस पास सर।
1: अच्छा
2: जी सर।
1: चलिए गाना सुनवा रहे हैं हम, और कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।

0: हमारे कार्यक्रम में आइए, देखते हैं कौन साथी जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो सर
0: जी, नाम बताइए अपना।
1: मेरा नाम है सर सुनील कुमार।
0: कौन से कुमार?
1: सुनील कुमार। सुनील कुमार सर।
0: सुनील कुमार।
1: हाँ सर।
0: कहाँ से फोन लगाया है?
1: हम सर भदावल से लगाए हैं फोन।
0: कहाँ से?
1: भदावल। भदावल
0: भदावल
1: बस्ती तहसील हरैया।
0: अच्छा, बस्ती से तहसील हरैया लगती है।
1: हाँ, तहसील हरैया है, ग्राम भदावल, पोस्ट भदावल भी है।
0: क्या करते हैं सुनील जी?
1: भदावल।
0: जी
1: कला भदावल।
0: हाँ हाँ, समझ गए हम। क्या करते हैं आप?
1: सर यही घर पे रहते हैं सर।
0: घर पे रह के क्या करते हैं?
1: घर पे बच्चों को देखभाल कर रहे हैं सर।
0: अच्छा।
1: काफी दिन से हम फोन मिला रहे थे, लेकिन आज ये लग गया फोन आपसे।
0: कितने दिन हो गए फोन मिलाते हुए?
1: अरे सर, साल भर से फोन मिलाते हैं।
0: साल भर से फोन मिला रहे हैं आप? घर पे रहते हुए साल भर से फोन नहीं मिला सुनील भाई? ऐसा कोई जादुई नंबर तो है नहीं हमारा?
1: नहीं सर, कभी कभी बिजी रहता है हमेशा।
0: बिजी तो रहता है।
1: सर
0: तो गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: सर तिरंगा का सुना दीजिए सर।
0: तिरंगा का सुना दें?
1: हमारे लड़के का नाम है धीरू।
0: हाँ।
1: और रिया है।
0: हाँ।
1: और मिसेज सोनी।
0: अच्छा, तो तिरंगा का कौन सा गाना सुनेंगे?
1: ये तिरंगा का कोई भी गाना सुना दीजिए सर।
0: कोई भी गाना सुना दें
1: सर।
0: चलिए ठीक है, तिरंगा का गाना सुनवा रहे हैं सुनील भाई। और कुछ कहना चाहते हैं? कुछ और कहना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में?
1: हाँ, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत तरीका से सुनते हैं।
0: चलिए, तिरंगा फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए।
1: ठीक ठीक
0: नमस्कार।

0: दूसरा प्रोग्राम हेलो अयोध्या का सफर लगभग खत्म होने वाला है, फिर भी देखते हैं हमारे नए साथी। हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी, जल्दी से नाम बताइए।
1: सर मेरा नाम हेमंत है।
0: कहाँ से हेमंत फोन किया है?
1: सर जी माधव कला पोस्ट कोर्स है जिला अयोध्या।
0: हेमंत भाई हम गाना नहीं सुना पाएंगे आपको क्योंकि समय नहीं है हमारे पास।
1: जी सर
0: क्या करते हैं, क्या करते हैं माधव भाई? हेमंत भाई
1: सर मैं पढ़ाई करता हूँ, आपकी ट्वेल्थ क्लास है।
0: मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है?
1: जी सर, ये एक सवाल था सर।
0: सवाल का जवाब किसी और दिन किसी और शो में। हेमंत भाई समय नहीं है हमारे पास।
1: चलिए ठीक है, थोड़ा सा मतलब
0: एकदम थोड़ा सा भी समय नहीं है हेमंत भाई। हमने आपसे बात ही कर ली, ये आपका कॉल लग गया तो इसीलिए, ठीक है? किसी और दिन किसी और शो में बात होती है, एक नहीं कई सारे सवाल आप पूछ के रखिएगा। नमस्कार।
2: करके दिखला देंगे अपनी धरती के आगे, हम सारा गगन झुका देंगे।
0: सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या का सफर आज बस यहीं तक, लेकिन हम आपको बता दें हमारे साथ कंट्रोल रूम से लगातार बने हुए थे स्वप्निल मिश्रा। उड़े हवाओं में शहरे जमीन नहीं पहुंचे, जहां पहुंचना था हमको वहीं नहीं पहुंचे। जाने किसकी उम्र लग गई थी पैरों को, जाने किसकी उम्र लग गई थी पैरों को, तमाम उम्र चले और कहीं नहीं पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा

देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीब आबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।